0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था से। आस्था आपको नमस्कार।
1: नमस्कार। शुक्रवार जिस 10 जुलाई की तारीख है, प्रथम समाचारों में स्वागत है आप सभी का। मॉरिशस में पर्यटकों की संख्या में इस वर्ष अब तक हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि जून महीने में आगमन में गिरावट देखने को मिली। जनवरी से जून 2026 के दौरान मॉरिशस में 6,78,471 पर्यटक मॉरिशस आए। ये पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 1.5% की बढ़ोतरी है। मॉरिशस में अर्थव्यवस्था में वृद्धि का सिलसिला जारी, लेकिन इसकी रफ्तार पहले के मुकाबले धीमी पड़ गई है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा 30 जून को जारी ताज़ा आर्थिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 की पहली तिमाही में देश में आर्थिक वृद्धि दर 2% रही। पिछले वर्ष की समान अवधि में ये 3.4% रही। कुछ सेक्टरों में अब भी अच्छी प्रगति देखने को मिल रही है, जबकि निर्माण और कपड़ा उद्योग जैसे सेक्टरों में गिरावट दर्ज की गई है। महंगाई का असर मॉरिशस में लोगों की जेब पर अब भी बना हुआ है। जून महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा 7 जुलाई को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जून में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 111.9 से बढ़कर 112.2 अंक पहुंच गया, यानी इसमें 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। राष्ट्रसभा की बैठक आज दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। फिर से इस दौरान डोमेस्टिक अब्यूज बिल पर बहसें जारी रखी जाएंगी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान के लगभग 90 सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जबकि ईरान का कहना है कि पिछले 2 दिनों में 16 लोगों की मौत हो गई है। और अब चले जानते हैं मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का असर जारी रहेगा। पूर्वानुमान है कि आज सुबह के दौरान देश के पूर्व और ऊंचाइयों पर रह रहकर बरसात होगी और बादल भी घिरे रहेंगे। अन्य जगहों पर मौसम सुहाना रहेगा। रात को देश भर में मौसम कुछ ऐसा ही रहने वाला है। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम साहिली इलाकों पर 19 से 22, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:46 पर, सूर्यास्त 5:44 पर।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत। भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।

0: प्रणाम शुभ प्रभात श्रोतागण, घड़ी मिलाते चलिए समय, सुबह के 6:04 हो चुके हैं। ये एमबीसी रेडियो मॉरिशस का सीधा प्रसारण है, साथ निभा रही है पूजा। श्रोताओं, कहा जाता है कि जीवन स्वयं एक गुरु है। हर रोज हर दिन कुछ न कुछ हमें अवश्य सिखाती रहती है, इसे ध्यान से सुने, परखें और समझें भी, ये हमसे कुछ न कुछ कहती है और इसी से हमारी वृद्धि भी होती है। आइए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सुधा वृष्टि से हिंदू महासभा की ओर से आचार्य गिरीश जी की प्रस्तुति में आइए इसे सुनते हैं।
1: हिंदू महासभा द्वारा आइए सुनिए सुधा वृष्टि।
2: हरि ओम तत्सत् लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुत्थमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचन्द्राय नमः, श्रीरामदूताय नमः, श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरिनारायण। हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबाजी गिरीश शर्मा आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। फ्राइडे 10 जुलाई 2026 के इस सुधा वृष्टि कार्यक्रम में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पावन योगिनी एकादशी है। सनातन धर्म में योगिनी एकादशी का अत्यंत महत्व माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी के व्रत, उपवास एवं श्री हरि विष्णु की आराधना से मनुष्य के समस्त पापों का क्षय होता है तथा उसे पुण्य, सुख और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि योगिनी एकादशी का पुण्य 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान है। यह एकादशी हमें संयम, सदाचार, सेवा और भगवान के प्रति अतूट भक्ति का संदेश देती है। अतः आज के दिन यथाशक्ति व्रत, जप, ध्यान, दान और श्रीहरि के नाम स्मरण का विशेष फल प्राप्त होता है। जहां तक पूजा विधि की बात है, सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें, श्रीहरि विष्णु जी को पीले वस्त्र और चंदन अर्पित करें, भोग में तुलसी पत्ता और मौसमी फल शामिल करें, घी के दिया प्रज्वलित करें, योगिनी एकादशी व्रत कथा सुने या पढ़ें और कल शनिवार 11 जुलाई को

सही समय पर व्रत का पारण कर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा आदि देकर अपने व्रत को पूर्ण करें। तत्पश्चात श्रोताओं, आगामी 15 जुलाई से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष का आरंभ होगा। 15 जुलाई से शुक्ल पक्ष का आरंभ होगा तथा इसी दिन से आषाढ़ गुप्त नवरात्र प्रारंभ होगी। आषाढ़ मास के इस नवरात्र में मां दुर्गा की शक्ति उपासना का विशेष विधान है। विशेष रूप से 10 महाविद्याओं की साधना एवं आधारणा की जाती है। वर्ष भर में आदिशक्ति मां भगवती की उपासना हेतु 4 नवरात्रियां आती हैं, 2 प्रकट यानी उदय नवरात्र और 2 गुप्त नवरात्र। चैत्र एवं आश्विन मास की नवरात्रियां उदय नवरात्रि कहलाती है, जबकि आषाढ़ मास एवं माघ मास की नवरात्रियां गुप्त नवरात्र के नाम से जानी जाती है। इस वर्ष आषाढ़ गुप्त नवरात्र 15 जुलाई से 22 जुलाई तक 22 जुलाई तक मनाई जाएगी। आषाढ़ मास के शुक्ल द्वितीय तिथि अर्थात गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन, उस दिन से भगवान जगन्नाथ जी की विश्व विख्यात रथ यात्रा भी प्रारंभ हो रही है, जो 9 दिनों तक चलकर आषाढ़ शुक्ल दशमी तक संपन्न होगी। यद्यपि यत्र रथ यात्रा का मुख्य आयोजन भारत के उड़ीसा राज्य स्थित श्री जगन्नाथपुरी धाम में होता है, तथापि हम जहां कहीं भी हो भगवान जगन्नाथ जी के इस महान उत्सव को श्रद्धा एवं भक्ति के साथ मना सकते हैं। रथ यात्रा के दिनों में भगवान जगन्नाथ जी की विशेष पूजा अर्चना करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दर्शन एवं सेवा 100 यज्ञों के फल के समान माना गया है। अक्षय तृतीया से भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र एवं देवी सुभद्रा के रथों का निर्माण आरंभ होता है। रथ श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। आध्यात्मिक दृष्टि से रथ बुद्धि, चित्त और अहंकार का प्रतीक है तथा इस रथ रूपी शरीर में आत्मा रूपी भगवान विराजमान है। इस प्रकार रथ यात्रा शरीर और आत्मा के दिव्य मिलन का संदेश देती है तथा हमें आत्मदृष्टि बनाए रखने की प्रेरणा प्रदान करती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी के विषय में एक मान्यता यह है कि श्री हरि विष्णु अपने धामों की यात्रा करते हुए उत्तर में बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम में द्वारका में वस्त्र धारण करते हैं, पूर्व में जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर युग के पश्चात श्री कृष्ण जगन्नाथपुरी में निवास करने लगे और जगन्नाथ अर्थात जगत के स्वामी कहलाए। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ बड़े भ्राता बरभद्र तथा भगनी सुभद्रा देवी के साथ विराजमान है। पुराणों में इस धाम को पृथ्वी का वैकुंठ कहा गया है। यह पुरुषोत्तम श्री हरि विष्णु की आराधना होती है। कुछ परंपराओं में पुरुषोत्तम श्री हरि विष्णु को भगवान राम का स्वरूप भी माना गया है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार भगवान श्री राम ने विभीषण को अपने कुल देवता भगवान जगन्नाथ जी की आराधना करने का उपदेश दिया था। भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति, इनकी अनेक विशेषताएं हैं। यह काष्ठ यानी लकड़ी से निर्मित होते हैं और निश्चित अवधि के पश्चात नवकलेवर संस्कार के अंतर्गत नई मूर्ति स्थापित की जाती है। उनके विशाल नेत्र ज्ञान, करुणा और कृपा के प्रतीक है। हाथ पैरों का ना होना उनकी सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमानता का संकेत माना जाता है। इन विशाल नेत्रों के विषय में एक लोकप्रिय कथा

था प्रचलित है। एक बार माता रोहिणी द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का वर्णन कर रही थी। सुभद्रा, बलराम और स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी द्वार पर खड़े होकर कथा सुनने लगे। कृष्ण प्रेम की उस अद्भुत लीलाओं को सुनकर तीनों भाई बहनों की आंखों आश्चर्य और प्रेम से अत्यंत विस्तृत हो गई। उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंचे और उन्होंने इस अनुपम स्वरूप का दर्शन कर प्रार्थना की, भगवान की इस रूप में कलयुग के भक्तों को दर्शन देने की। तभी से भगवान जगन्नाथ, बलराम तथा सुभद्रा इसी दिव्य स्वरूप में पूजे जाते हैं। हाथ पैर ना होने की एक अन्य कथा भी प्रसिद्ध है। राजा इंद्रद्युम्न के अनुग्रह पर स्वयं विश्वकर्मा भगवान की मूर्तियों का निर्माण कर रहे थे। उन्होंने शर्त रखी थी कि जब तक कार्य पूर्ण ना हो जाए कोई भी कक्ष के द्वार नहीं खोलेगा। कुछ दिनों बाद भीतर से कोई ध्वनि न आने पर राजा चिंतित हो गए और द्वार खोल बैठे। शर्त भंग होने पर विश्वकर्मा जी अदृश्य हो गए और मूर्तियां अधूरी अवस्था में ही रह गई। वही दिव्य मूर्तियां आज भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के रूप में पूजित है। श्रोताओं, गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी से जुड़े एक अत्यंत मार्मिक कथा भी प्रसिद्ध है। जब बाबा तुलसीदास जी जगन्नाथपुरी पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि बिना हाथ पैर वाले इस विग्रह में उनके आराध्य श्री राम के दर्शन कैसे हो सकते हैं। वे मंदिर के बाहर आकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी एक दिव्य बालक उनके लिए महाप्रसाद ले आए। बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि वे अपने इष्ट देव को भोग लगाए बिना कुछ ग्रहण नहीं करते हैं। बालक मुस्कुराकर बोले, हे बाबा, यह प्रसाद आपके इष्ट देव ने ही भेजा है। तुलसीदास जी कहने लगे, मेरे प्रभु श्री राम तो धनुष बाण धारी है और यहां दारू विग्रह में मेरे इष्ट नहीं हो सकता। तभी बालक ने गोस्वामी जी से कहा कि बाबा, आपने स्वयं श्री रामचरितमानस में उनके इस स्वरूप का वर्णन किया है। तुरंत बाबा तुलसीदास जी को मानस की प्रसिद्ध चौपाई स्मरण आ गई, बिनु पद चलई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। यह सुनते ही उनके नेत्रों में आंसू धारा बह निकली। अगले दिन जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ के स्थान पर श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी के साक्षात दर्शन हुए। भगवान ने अपने भक्त की भावना पूर्ण कर दी। इस वर्ष भगवान श्री जगन्नाथ जी की पावन रथ यात्रा 16 जुलाई, 16 जुलाई से प्रारंभ होकर के 24 जुलाई तक चलेगी। इस दौरान हम सभी भक्त जो है प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ जी, बलराम जी एवं माता सुभद्रा जी की विशेष पूजा अर्चना करें। प्रतिदिन जगन्नाथ जी के निमित्त घी के दीपक प्रज्वलित करें, पान फूल चढ़ाएं, श्री जगन्नाथ अष्टक का पाठ करें तथा भगवान जगन्नाथ जी की आरती करें। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं माता सुभद्रा का यह दिव्य स्वरूप भाई बहन के प्रेम, स्नेह, सम्मान एवं पारिवारिक एकता का अद्भुत प्रतीक है। इनकी आराधना से परिवार में प्रेम, सद्भाव और सौहार्द की वृद्धि होती है तथा भाई बहन के संबंध सदैव मधुर और सुदृढ़ बने रहते हैं। रथ यात्रा हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन रूपी रथ को धर्म, भक्ति और सदाचार के मार्ग पर चलाना चाहिए। जिस प्रकार भक्तगण मिलकर भगवान के रथ को खींचते हैं, उसी प्रकार परिवार और समाज की उन्नति के लिए हमें भी प्रेम, सहयोग, सेवा और एकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब हमारे जीवन के रथ का सारथी भगवान बनते हैं तब जीवन की यात्रा मंगलमय, सफल और कल्याणकारी बन जाती है। कार्यक्रम के अंत में तुलसीदास जी की चौपाई आपको स्मरण करा दूं। बालकांड की दोहा 118 में गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान जगन्नाथ के निमित्त बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित रस सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बर जोगी। परब्रह्म परमात्मा बिना पैर के चलते हैं, बिना कानों से सुनते हैं, बिना हाथों के असंख्य कार्य करते हैं, बिना मुख के सभी रसों का आस्वादन करते हैं और बिना वाणी के भी महान वक्ता है।
आज के इस कार्यक्रम को मैं यहीं पर

0: राम देता हूं आपके ध्यान के लिए। बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्र अर्पणमस्तु, साधुवाद, जय श्री हरि।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदू महासभा द्वारा सुधा वृष्टि।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा चंद विज्ञप्तियां सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सबसे पहले क्लियाफों वाकवा के रहने वाले निवासियों को खासतौर पर रेन गलियों में क्लियाफों मोन मोहद्यून मोहथवा और रेंडिपेंडेंस एवेन्यू ईव ब्रेल्यू एवेन्यू और ब्रांसेक्वा एवेन्यू सिमिट्री रोड आंध्र माउटेन एवेन्यू महंत कबीर टेम्पल रोड सुबाही लेन आर्य मदिल लेन के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 12 जुलाई 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और फिर हैं वाकवा के ही रहने वाले निवासियों को खासतौर पर मोसन मोवियरस बिल्टेया के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 12 जुलाई 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। और फिर हैं क्लियाफों वाकवा के रहने वाले निवासियों को खासतौर पर क्लियाफों नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इंडिपेंडेंस एवेन्यू ईव ब्रेल्यू एवेन्यू ब्रांसेक्वा एवेन्यू सिमेट्री रोड आंध्रे माउटेन एवेन्यू महान कबीर टेम्पल रोड सुबाही लेन आर्य मंदिर लेन के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 12 जुलाई 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। और फिर हैं वाकवा के ही रहने वाले निवासियों को ग्लेन पार्क के रहने वाले निवासियों को खासतौर पर ग्लेन पार्क के कुछ हिस्सों में और एवेन्यू दिव्यागु के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 11 जुलाई 2026 को सुबह के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। और फिर हैं अयोता के रहने वाले निवासियों को खासतौर पर अयोता ब्रांच रोड डेल्फी लेन कोना कॉल्डवेल और गाजाबाली लेन के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 11 जुलाई 2026 को 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और फिर हैं मुसलमान इगामिया कोथोदो के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 12 जुलाई 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और फिर अंत में हैं बिल्टेविलाज के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 12 जुलाई 2026 को 11 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई को सामान्य रूप पर लाई जाएगी। श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा चंद विज्ञप्तियां सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है।
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुबह के 6:22 हो चुके हैं और आप रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े हुए हैं। साथ निभा रही हैं पूजा। श्रोताओं, कहा जाता है कि जीवन में हमारे दो साथी हैं, एक सुख और दुख। ये दोनों साथी बनकर चलते भी हैं और जीवन की सीख भी दे जाते हैं। आइए जसबाल सिंह द्वारा एक सुंदर सा गीत हम सुनते हैं।

श्रोताओं साथ रहिए, 6:30 बजे आप पूरा समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार हम फिर से मिलेंगे सुबह का नजराना कार्यक्रम में। तब तक पूजा की ओर से आप सभी को शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सुबह के ठीक 6:30 बज रहे हैं, समाचार सुनिए। शुक्रवार 10 जुलाई का दिन है, ये नया दिन हम सभी के लिए शुभ हो। शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। इस वर्ष की पहली तिमाही में मॉरिशस में पर्यटकों का आगमन बढ़ा, हालांकि जून महीने में पर्यटकों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2026 की पहली तिमाही में मॉरिशस की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार धीमी पड़ी है, लेकिन अर्थव्यवस्था में विस्तार का सिलसिला जारी। जून महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, एक वर्ष के आधार पर महंगाई की रफ्तार धीमी हुई है। राज्यसभा की कार्यवाही आज दोपहर 3 बजे से फिर से शुरू होगी, डोमेस्टिक अब्यूज बिल पर बहसें जारी रखी जाएंगी। पोंजुसाक के चर्चित दोहरे हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट पहले ये तय करेगा कि डीपीपी को बरी किए गए आरोपी के खिलाफ अपील करने का अधिकार है या नहीं। विदेश स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच हमलों का सिलसिला जारी है, जबकि हुर्मुज समुद्री मार्ग पर जहाजों की आवाजाही में तेज गिरावट दर्ज की गई है। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। मॉरिशस में पर्यटकों की संख्या में इस वर्ष अब तक हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, हालांकि जून महीने में आगमन में गिरावट देखने को मिली है। जनवरी से जून 2026 के दौरान मॉरिशस में 6,78,471 पर्यटक मॉरिशस आए, ये पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 1.5% की बढ़ोतरी है, यानी इस साल 9,562 अधिक पर्यटक मॉरिशस पहुंचे। हालांकि सिर्फ जून में पर्यटकों की संख्या जून 2025 की तुलना में 8.4% कम रही, ये आंकड़े स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस ने कल जारी किए। इन आंकड़ों पर बात करते हुए पर्यटन मंत्री शौजीवाल ने कहा कि जून का महीना दुनिया के कई पर्यटन स्थलों के लिए कठिन रहा है। पर्यटन मंत्री शौजीवाल को सुनती है विवरण रजनीकर।
2: मंत्री ऋषभ जुवाल ने कहा, सभी पर्यटन गंतव्यों को अभी भी मध्य पूर्व में चल रही लड़ाई का प्रभाव झेलना पड़ रहा है। ये भी समझना चाहिए कि बहुत से लोग 2-3 महीने पहले से ही अपनी यात्रा की तैयारी कर लेते हैं, अतः लड़ाई के बीचों बीच संभवतः लोगों ने अपनी बुकिंग नहीं की, इसीलिए कहीं न कहीं लोगों में यात्रा पर जाने का डर बना हुआ है। साथ ही ये भी देखना चाहिए कि जून महीने में विश्व कप की शुरुआत हुई तो ये भी स्थिति के साथ जुड़ जाता है, चाहे इसका मूल्यांकन करने के लिए अच्छे विश्लेषण की जरूरत होगी।
1: मॉरिशस की अर्थव्यवस्था में वृद्धि का सिलसिला जारी है, लेकिन इसकी रफ्तार पहले के मुकाबले धीमी पड़ गई है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा 30 जून को जारी ताज़ा आर्थिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 की पहली तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर 2% रही, पिछले वर्ष की समान अवधि में ये 3.4% थी। कुछ सेक्टरों में अब भी अच्छी

0: गति देखने को मिल रही है, जबकि निर्माण और कपड़ा उद्योग जैसे क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की गई है। अभ्युदय,
1: जीडीपी का मतलब है किसी देश में बनी चीजों और सेवाओं से पैदा हुई कुल संपत्ति। साल 2026 की पहली तिमाही यानी कि जनवरी से मार्च के बीच मॉरिशस की जीडीपी लगभग 180.7 बिलियन रुपए रहने का अनुमान है, जो 2025 की पहली तिमाही 169.2 बिलियन रुपए की थी। परंतु अगर असली विकास यानी कि रियल ग्रोथ रेट की बात करें तो अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हुई है। ये 2% की दर से बढ़ी है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 3.4% की दर से बढ़ी थी। कौन से क्षेत्र अर्थव्यवस्था को संभाल रही है ये जानना जरूरी है। इस विकास को मुख्य रूप से इन क्षेत्रों से सहारा प्राप्त हुआ। पहला है वित्तीय सेवाएं यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज, होटल और रेस्टोरेंट, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट और व्यापार, और साथ ही साथ कृषि तथा आईटी। किन क्षेत्रों में गिरावट आई है ये भी जानना जरूरी है। कुछ क्षेत्रों ने आर्थिक प्रदर्शन को नीचे खींचने का काम किया है, जैसे कि निर्माण सेक्टर, इसमें 4.3% की गिरावट आई है। टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र उद्योग, इसमें 14.9% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसमी परिवर्तन को हटाकर देखें तो पिछले तिमाही की तुलना में आर्थिक गतिविधियों में 0.2% की मामूली गिरावट आई है। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है, परंतु इसकी रफ्तार पहले से ही धीमी हो गई है और यह केवल कुछ प्रमुख सेक्टरों पर ही निर्भर है।
0: हम आपको बता रहे थे बुलेटिन की शुरुआत में कि स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा 7 जुलाई को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जून में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 111.9 से बढ़कर 112.2 अंक पर पहुंच गया है, यानी इसमें 0.3% की वृद्धि नोट की गई है। हालांकि एक वर्ष के आधार पर महंगाई की रफ्तार धीमी हुई है, लेकिन रोजमर्रा के खर्च का बोझ अब भी लोगों पर बना हुआ है। अभ्युदय,
1: जून 2026 में साल दर साल महंगाई दर घटकर 3.7% हो गई है, जो पिछले साल की इसी समय में 5.4% थी। इसका मतलब ये नहीं है कि चीजों के दाम कम हो रही है, कीमतें अभी भी बढ़ रही हैं, परंतु जून 2025 की तुलना में थोड़ी धीमी गति से। दूसरा ध्यान देने योग्य आंकड़ा यानी कि स्टैटिस्टिक्स पिछले 12 महीनों की औसत महंगाई दर का है, जो 4.1% तक पहुंच गई है, जबकि पिछले साल की तुलना में यही 2.9% की रही। अर्थशास्त्री एरिक निंग के अनुसार इस लगातार बनी हुई महंगाई के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले ईंधन यानी कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, मई से बिजली के बिल में 15% की बढ़ोतरी, कुछ सेवाओं के खर्च में इजाफा। उनका यह भी मानना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय मंडी में कच्चे तेल के दाम बहुत ज्यादा नहीं गिरते हैं तो साल के अंत तक औसत महंगाई दर 5.7% तक पहुंच सकती है। एक और चिंता की बात यह है कि को इन्फ्लेशन यानी कि बुनियादी महंगाई अभी भी 6.5% के उच्च स्तर पर बनी हुई है। इसी से यह भी पता चलता है कि महंगाई अब सिर्फ ईंधन या फिर खाने पीने की चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था के अन्य हिस्सों में भी फैल गई है। इसका आम जनता और व्यवसायों पर क्या असर पड़ेगा यह भी जानना जरूरी है। रोजमर्रा के खर्च बढ़ेंगे और उनकी जेब यानी कि उनकी खरीद क्षमता पर बोझ बढ़ेगा। जहां तक कंपनियों या फिर व्यवसाय की बात है तो वहां पर उत्पादन की लागत बढ़ने के कारण वे भी अपनी चीजों के दाम फिर से बढ़ा सकते हैं।
0: राष्ट्रीय सभा की बैठक आज दोपहर 3 बजे शुरू हुई। इस दौरान डोमेस्टिक अब्यूज बिल पर बहसें जारी रखी जाएंगी। हम आपको बता रहे थे कुछ देर पहले कि 2018 में फोंजिसाक में पिता और बेटे की हत्या के चर्चित मामले में कानूनी प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में पहले ये तय करना होगा कि डीपीपी को उमेश कुमार बाबूलाल के बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने का अधिकार है या नहीं। इसके बाद ही मामले की आगे सुनवाई होगी। 8 जुलाई को चीफ जस्टिस बीबी रेहाना मंगली गुलबुल और 2 अन्य जजों ने इस मुद्दे पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। बचाव पक्ष का कहना है कि संविधान के तहत डीपीपी हर बरी किए गए व्यक्ति

0: के खिलाफ अपील नहीं कर सकता। वहीं डीपीपी का कहना है कि संविधान उसे आपराधिक मामलों में अपील का अधिकार देता है। उमेश कुमार बाबूलाल को इस मामले में बरी कर दिया गया था, जबकि उनके भाई रितेश कुमार बाबूलाल को बिना इरादे के हत्या के दो मामलों में 38 वर्ष जेल की सजा सुनाई गई थी। स्थानीय स्तर की खबरों में ही मंगलवार को मौसमालू निकलने के बाद 2 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। ये दुखद घटना एक बार फिर छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर ध्यान आकर्षित करती है। एक ऐसी त्रासदी जो दम घुटने की स्थिति में तुरंत सही कदम उठाने को लेकर उचित जानकारी रखने के महत्व पर जोर देती है और अधिकारी लोग ये आगाह करते हैं कि मौसमालू गमी कैंडी लॉलीपॉप आदि के साथ साथ लीची अंगूर लोंगान जैसे फलों को लेकर भी सावधानी रखनी चाहिए। बच्चे को इनका सेवन बड़ों की निगरानी में ही करना चाहिए। याशना मिश्रा।
1: मार्शमेलो, कैंडी, लॉलीपॉप, चॉकलेट, मूंगफली और साथ ही कुछ फल जैसे लीची और लोंगान, ये सभी चीजें बच्चों की पसंदीदा होती हैं, लेकिन यदि इन्हें उनकी उम्र के अनुसार न दिया जाए या बिना निगरानी के खाने दिया जाए तो ये गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।
2: Pour les petits enfants de en dessous de 2 ans, quand nous commençons cette alimentation, nous devons faire bien attention. Il bande noix, c'est pistache, amandes, etc. Il faut jamais donner aux enfants en entier. Si nous avons une bande noix, nous devons écraser, nous devons moulu en forme de poudre, nous garder dans notre alimentation.
1: 2 साल से कम उम्र वाले बच्चों को नट्स देना हो तो उसे कुचल कर पाउडर के रूप में दें। अंगूर आसानी से गले में अटक सकते हैं, मार्शमेलो आदि आसानी से गले में चिपक सकते हैं।
2: Par exemple, nous gagne la gomme guimauve, c'est qui n'arrivait malheureusement, il y a un aliment qui est facile, il est assez gros et qui a collé dans la gorge, c'est pas descendre facilement.
1: दम घुटने के शुरुआती लक्षणों को तुरंत पहचानना बहुत जरूरी है।
2: Si un enfant commence à étouffer n'importe quel âge, il est capable de tousser.
1: जब बच्चे का दम घुटता है तो उसे खांसी होती है, उसे खांसने देना चाहिए। यदि वो बेहोश होने लगे, रंग बदलने लगे तो तेजी से कदम उठाना चाहिए। ऐसी स्थिति में शुरुआती सेकंड्स में क्या किया जाए?
2: Bon, ce sont des mouvements brusques et rapides qu'il faut faire. Okay? Et si là aussi l'enfant n'arrive pas à expulser ce qui fait cause le blocage, on retourne la tête ici, on tourne là la tête vers le bas, okay? Et là pareil, nous tapons la tête vers le bas, il nous donne un coup assez rapide sur le dos ici, okay? 5 fois, d'accord, jusqu'à ce que l'enfant ait réussi à expulser ce qui fait bloqué. Et bien sûr, si l'enfant perd connaissance à ce moment-là, là nous commençons une mesure de CPR avec l'enfant. Et n'appelle les secours toujours en attendant. Donc c'est 1, 2 et on remonte. C'est plus fort à l'intérieur et en forme de J. Ok, c'est un mouvement. Et si là aussi l'enfant n'a pas de récif, au bout de 5 fois, il n'est pas entier. Donc on fait l'enfant vers l'avant. On met une armée anti-homoplate, okay, en ce disque là. Et là, nous tape 5 fois rapide. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Disposé, crache-les.
1: भोजन के दौरान बच्चों पर लगातार नजर रखना, उन्हें सही तरीके से बिठाकर खिलाना, उनकी उम्र के अनुसार खाना पीना देना दम घुटने के खतरों को काफी हद तक कम कर सकता है, क्योंकि जब किसी बच्चे का दम घुट रहा हो तो हर एक सेकंड बेहद कीमती होता है और सही समय पर उठाया गया सही कदम जान बचा सकता है।
0: और अब चलिए जानते हैं कि स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा। हमारे इलाके पर हल्की से सामान्य हवा की लहरों का असर है। पूर्वानुमान है कि आज सुबह के दौरान देश के पूर्व और सेंट्रल प्लेटों पर रह रहकर बरसात होगी और बादल भी घिरे रहेंगे। रात को देश भर में मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा, पर अन्य इलाकों पर मौसम सुहाना रहेगा। हवा हल्की बहेगी पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 20 से 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम शहरी इलाकों पर 19 से 22 अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्योदय 6:46 पर, सूर्यास्त 5:44 पर।
3: तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। टेक्निकी सहायक हमारे साथ

0: रहे कादिर, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। शास्त्री रोड बुआपियोली में 65 साल की 65 ईयर्स ओल्ड की इंद्रावती बिहारी की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम चतुरी, लोग उन्हें रानी के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दोपहर बाद 2 बजे उनके बेटे पूरब कुमार सिंह बिहारी के मकान बुआपियोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोंगबॉक की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM पालमा का चोबोन में 65 साल की 65 ईयर्स ओल्ड की मानती रामदेव सिंह की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम निया, लोग उन्हें गीता के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज सपहर के 3 बजे उन्हीं के मकान का चोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM मुसलमान गफरी लोशे तेरूश में 79 ईयर्स ओल्ड के श्री अचाना अपाना की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें बाला अपाना के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज दिन की 1 बजे उनकी पत्नी सिनेमा येदलुब अपाना के मकान तेरूश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भोले वाली देपात की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM रॉयल रोड क्रेव क्यू में 66 साल की 66 ईयर्स ओल्ड की मेधा धनु की मृत्यु हो गई है। पैदाइश राम बर्टन, लोग उन्हें मेधा के नाम से अधिक जानते थे और वे पहले रजिस्ट्रो ऑफ एसोसिएशन में एक्टिंग डेप्यूटी का पद संभाल चुकी है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके पति सम्राज सिंह धनु के मकान क्रेव क्यू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM ब्रांच रोड लालमाटी में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के विनोद माथुर की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 12 बजे उनकी पत्नी अंजनी माथुर के मकान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लालमाटी की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून रॉयल रोड सेत्यामिल ट्रियोली में 66 साल के 66 ईयर्स ओल्ड की आवे दानांदन सोमी की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें बाबू के नाम से ज़्यादा जानते थे और वे पहले कोगो हैंडलिंग में काम किया करते थे। उनके अर्थी आज दोपहर बाद 2 बजे उन्हीं के मकान थ्रियोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए SSO लेन क्रिमेशन ग्राउंड की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM सनफ्लावर स्ट्रीट मापू में 82 ईयर्स ओल्ड के 82 साल के सुंदरा दत्त मुहेश की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें सूर्या के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके बेटे विशाल मोहिस के मकान सनफ्लावर स्ट्रीट मापू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाऊची पेटी गाफरे की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM रेलवे रोड सैन मिशेल बेलिया रिविया सेश में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के सूर्या नारायण रामदू की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें नंदा के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 11:30 बजे उन्हीं के मकान बिलेरी वैसर्ष से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दुफ्रिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:30 AM SSO स्ट्रीट पीटोमी 47 ईयर्स ओल्ड के 47 साल की 47 ईयर्स ओल्ड के विकास चुलन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें मुन्ना के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनकी माता स्वस्ति चुलन के मकान पीतों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM कैट्रोबोन में 44 साल की 44 ईयर्स ओल्ड की नारायण दत्त कुमार धनुक चंद की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें चंदन के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान का ट्रिबून से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोदगौर की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM काली माता रोड लालमाटी में 66 साल के इंद्रदेव पुनाय की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें ईश्वर के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उनकी पत्नी विदुला पुनाय

0: है कि मकान लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी रोड लालमाची की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 11 AM। पॉइंट पी मॉमी 52 ईयर्स ओल्ड की उमा भूला की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नामझरी उनकी अर्थी आज दिन के 10:30 बजे उन्हीं के मकान पॉइंटपी मॉ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्रियोले की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 10:30 AM। राउल रिवेट स्ट्रीट मोरोश बोबासेमे 79 ईयर्स ओल्ड की वेदावदी नारायणन की मृत्यु हो गई है। वेदावदी नारायणन की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम कादियावालू, लोग उन्हें पुष्पा के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उन्हीं के मकान मोहोश बोबासा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिवैल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 2:30 PM। नंबर 78C राहुल रिवेट स्ट्रीट पोर्ट लुमी 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड की गोविंदन चनुसामी की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें सादा के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे उन्हीं के मकान पोटली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोंगबो की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट नून। रुतो बोशेरी पेटी वेजे सेंट पियामे 71 साल की 71 ईयर्स ओल्ड की कमलावती लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम मोहादुआ, लोग उन्हें शोभा के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थे आज दिन के 1:30 बजे उनके पति ईश्वरदत्त लक्ष्मण के मकान सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोसों सैंपिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 1:30 PM। इंग्लैंड में 76 ईयर्स ओल्ड के 76 साल के अनिरुद्ध कुमार चमरू की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी इंग्लैंड में ही आज दिन के 1:30 बजे उठाई जाएगी। 10 एवेन्यू विल्सन बेलरोज में 92 साल की 92 ईयर्स ओल्ड की सरोजिनी तिलक की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम गोपाल, लोग उन्हें जेनी के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थे आज दिन के 1:30 बजे उनके बेटे देवानंद तिलक के मकान बेलरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रियानों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 2:30 PM। रॉयल रोड वाली दे प्रेत में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड की मुखराम हुकुम की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें सुनील के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी कल दिन के 10 बजे उन्हीं के मकान वाली दे प्रेत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भोले वाली दे प्रेत की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 10 AM। पायंकर रोड मोसलमा सेंट एंटोन गुडलैंड्स में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की जगवंती राजकुमार की मृत्यु हो गई है। पैदाइश राम जुदवा, लोग उन्हें इंद्रानी के नाम से ज़्यादा जानती थी। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे विमल राजकुमार के मकान गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहोची की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस स्पोर्ट्स न्यूज़।
1: सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। किलियान एम्बापे के सामने मोरोको को बाप रे बाप कहना पड़ा। फ्रांस की टीम पहुंची वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, मोरोको को 2-0 से हराकर लुब्लु चले वर्ल्ड कप जीतने। जैसा मेसी करता है वैसा ही एम्बापे करता है। फर्स्ट हाफ में एम्बापे पेनाल्टी पर स्कोर नहीं कर पाया। इजिप्ट के खिलाफ मेसी की भी यही कहानी थी, पर सेकंड हाफ में एम्बापे का एक गोल, कुछ ही मिनट बाद एम्बापे के पास पर देम्बेले का गोल, 2-0 की आसान जीत। मोरक्को को टाटा बाय बाय। क्वार्टर फाइनल तक आए, बहुत नए फैंस बने, पर सबकी उम्मीदों को खलास किया फ्रांस ने। पिछले वर्ल्ड कप की तरह इस बार भी मोरक्को की हार 2-0 से, उस बार सेमीफाइनल में, इस बार क्वार्टर फाइनल में। लियोनेल मेसी की तरह किलियान एम्बापे के पास 8 गोल हैं। गोल्डन बूट रेस अंत तक होगा, शायद फाइनल तक, क्योंकि अगर फ्रांस और अर्जेंटीना मिलेंगे तो ये फाइनल में ही हो सकता है, इससे पहले नहीं। सेमीफाइनल में फ्रांस का सामना स्पेन या बेल्जियम से होगा। मॉरिशस में भी वर्ल्ड कप का जादू छा गया है। घर बैठे एमबीसी स्पोर्ट्स 11 पर एमबीसी प्ले ऐप पर फ्रांस की जीत का जश्न मनाया गया। कई जगहों में बड़े पर्दे जैट स्क्रीन पर मोरक्को की हार का शोक मनाया गया। फ्रांस के फैंस भी आए हुए थे जश्न मनाने फ्रांस की जीत। आज का मैच 11 बजे स्पेन वर्सेस बेल्जियम, लॉस एंजेलिस के सोफी स्टेडियम में यूरोप के दो चैलेंजर आमने सामने। यूरोपियन चैंपियन है स्पेन, पिछले 35 मैचों में अपराजित, 35 मैच अनबीटन स्ट्रीक रेगुलेशन टाइम में। लाहोगा एक मिसाल है, मॉडल ऑफ डिफेंसिव डिसिप्लिन, अभी तक एक भी गोल कंसीड नहीं किया है। केप वर्दे के खिलाफ 0-0 ड्रॉ के बाद सऊदी अरेबिया को 4-0 से पछाड़ा, यूरिगो को 1-0 से, ऑस्ट्रिया को 3-0 से और 1-0 से पोर्टुगल पर जीत। लुइस डेला फ्वेंटे की टीम का स्क्वाड बैलेंस्ड और सेटल्ड है। लामिन यमाल, मिकेल ओयोज़ाबाल, कुकुरेला, पेड्री, रोड्री, ओल्मो डराने वाले नाम है। उधर बेल्जियम के रेड डेविल्स 18 मैचों में अनबीटन अपराजित। ग्रुप स्टेज में धीमी शुरुआत रही थी, पर राउंड ऑफ 16 में यूएसए को 4-1 से सुधारा। गोलकीपर कूटवा, फिर चिलेमैंस, डोकू, डेब्रुइन, थोसा, लुकाकू जैसे अनुभवी स्टार खिलाड़ी हैं। इन दोनों के बीच हुए मुकाबलों में हर बार स्पेन की जीत हुई है, इसीलिए आज भी स्पेन को हराना पेनफुल होगा। ओप्टा सुपर कंप्यूटर ने स्पेन को फेवरेट बनाया है, 59.3% रेगुलेशन टाइम में जीत और 69.5% ओवरऑल चांस। बेल्जियम केवल 18.3%। फुटबॉल पंडितों का मानना है कि ये एक लो स्कोरिंग टाइट टैक्टिकल मैच होगा। स्पेन वर्सेस बेल्जियम, जो जीतेगा सेमीफाइनल में फ्रांस से लोहा लेगा। इस वीकेंड में फुटबॉल ही फुटबॉल। आज रात स्पेन वर्सेस बेल्जियम लाइव एमबीसी स्पोर्ट्स 11 पर और एमबीसी प्ले ऐप पर भी। फिर संडे सुबह 1 बजे नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड, ये मैच भी आप देख पाएंगे एमबीसी स्पोर्ट्स 11 और एमबीसी प्ले ऐप पर। और सोमवार सुबह 5 बजे अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड, पहला सेमीफाइनल लाइव एमबीसी टीवी पर मंगलवार 11 बजे, दूसरा सेमीफाइनल बुधवार 11 बजे, थर्ड प्लेस मैच शनिवार सैटरडे सुबह 1 बजे और द बिग वन महाफाइनल संडे 19 जुलाई को 11 बजे। क्वार्टर फाइनल के 3 मैच, सेमीफाइनल के दोनों मैच, थर्ड प्लेस मैच और फाइनल सब लाइव एमबीसी स्पोर्ट्स 11 और

0: बीसी प्ले ऐप पर आप लोग देख पाएंगे। नॉर्वे के खिलाफ मैच में इंग्लैंड का डिफेंडर मार्क व्यू शायद नहीं खेल पाएगा, हैमस्ट्रिंग इंजूरी है, आज फिटनेस टेस्ट होगा। राइट बैक रिकी जेम्स वापस आ गया है, डेक्लेन राइस बीमार है, ट्रेनिंग नहीं कर पाया। अर्लिंग आलोन नाम का टोर्नाडो आ रहा है, टोमास टुगेल को अपने डिफेंस को मजबूत बनाना होगा। लिवरपूल के पूर्व मैनेजर यर्गन क्लॉप ने कहा कि लिवरपूल किलियान एम्बापे को साइन करने के बहुत करीब था, इसे मोस्ट एक्सपेंसिव नॉन ट्रांसफर कहा। एक प्राइवेट जेट भेजा गया था, खाना पीना साथ में, एम्बापे के पूरे फैमिली को हवा में दावत दी गई थी, खूब खिलाया पिलाया, बहुत कोशिश की, पर एम्बापे बाद में पेरिस सेंट जर्मेन चला गया, उतना खर्च बेकार में गया, ऐसा यर्गन क्लॉप ने कहा। टेनिस, विंबलडन ओपन में कोको गोव की हार हुई मुचोवा के खिलाफ 6-2 1-6 7-6 से। फाइनल में मुचोवा का सामना नुस्कोवा से होगा, नुस्कोवा ने कोस्टुक को हराया 6-4 6-4 से। आज लड़कों की बारी, सेमीफाइनल फेरी वर्सेस विरेव और सीनर वर्सेस जोकोविच। क्रिकेट, टीम इंडिया की हार, एक बार फिर से हार, लगातार 5वीं हार। इंग्लैंड ने चौथे T20 मैच में 9 विकेट से जीत हासिल की, इस तरह 3-0 से इंग्लैंड सीरीज जीत पाया, एक मैच खेलना बाकी है। वैभव सूर्यवंशी केवल 15 पर आउट हुआ, 10 गेंदों में एक चौका एक छक्का। श्रेयस अय्यर 80 नॉट आउट, 80 नॉट आउट। इंग्लैंड के लिए फिल सोल्ट 59 नॉट आउट, हैंस ब्रूक 79 नॉट आउट। भारतीय टीम की फिर से हार। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही, चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें। फ्रांस की टीम पहुंची वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, 2-0 से मोरक्को को रोका, मोरक्को को टोका, इस तरह लिब्लू आगे बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

0: नमस्कार श्रोतागण, घड़ी मिलाते चलिए। इस समय यह 7:06 हो चुके हैं और सुबह का नजराना कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती है पूजा। इसे कहा जाता है जीवन आज में है, जो बीत गया सो बीत गया, अपने आने वाले कल के लिए अपने आज को संवारिए। आइए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं, चिंतन से इसे सुनते हैं श्रीमती डॉक्टर लक्ष्मी जमन जी की प्रस्तुति में।
1: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: इंद्रियों के निग्रह से, राग द्वेष की विजय करने से और प्राणी मात्र के प्रति अहिंसक रहने से साधक अमरत्व प्राप्त करता है।

0: राहों पे रहने वाला ये मुसाफिर गेरूलाल सफर करते करते एक बार दूर दराज के पहाड़ों में जाकर रुक गया।
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: जिंदगी तो चलती ही रहती है, पर चलना आवश्यक है, क्योंकि रुकना लाजमी नहीं। इस सफर में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, जो गिराएंगे भी और कोई उठाएगा भी, पर बिना मतलब के। कोई किसी को नहीं उठाता, मतलब ये दुनिया है, 2026 में हम जी रहे हैं, जहां मतलब से ही लोग रिश्ते भी जोड़ते हैं। बिना मतलब का कोई किसी का नहीं। जो भी लोग

0: अभी सुबह का नजराना कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, पुराने दौर के गीत आप सभी के नाम लेकर आए हैं, साथ दे रही हैं माला सुमारू जी और साथ में हैं मदालबिया से अनीता लाल जी और शैला जी हैं गौनगव्या से देसते, लीला जी हैं बौशेरी से, आप सभी का स्वागत है। और जो भी लोग अभी सफ़र कर रहे हैं, काम की ओर बढ़ रहे हैं, उन सभी को कहेंगे बुकवार। और पुराने दौर के गीत यूं ही हमने कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, क्योंकि इन गीतों में छुपा है जीने का राज। जी हाँ, कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे बोल, कुछ ऐसे लाइन जो जीना सिखा देते हैं, है ना?
1: सिखाओ किस तरह का रखे
0: ऐ दिल है मुश्किल। जॉनी वॉकर जी कॉमेडियन थे और अपने गीतों के साथ और फिल्मों द्वारा बहुत कुछ सिखा दिया।

0: श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा चंद विज्ञप्तियां सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सबसे पहले औसे और त्याकासे प्रोविडेंस फिशरीज बाम्बू वेरियू और बुआ दे जामुगत के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार 10 जुलाई 2024 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और फिर हैं क्यूपिप के रहने वाले निवासियों को खास तौर पर इन गलियों में लीसा कोमेसांसें और लाक्रोसें विक्टो हुगोसें बैसाक्सें और ऑनरी एपास मेग्रो दुक्रेसें दुपेसें और आसपास के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 12 जुलाई 2024 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और फिर हैं बिलेया के रहने वाले निवासियों को खास तौर पर पों लॉजे रूट रॉयल लासोसी बिलेया और मोसलमा लाश्रमिने बेलरोज और क्लेमेंसिया के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 11 जुलाई 2024 को सुबह के 8:15 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और फिर हैं मोसेलमा से फ्लैनफी कंफ्लाक के रहने वाले निवासियों को खासतौर पर इन गलियों में एवेन्यू दे पेरुश एवेन्यू दे मेल एवेन्यू दे क्रेसेरेल ओआजी एवेन्यू दे पायोंके के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 11 जुलाई 2024 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक। और अंत में हैं नुवेल डेकुवेर्ट के रहने वाले निवासियों को खासतौर पर इन गलियों में बामा रोड राजा बाली रोड बिला रोड और रॉयल रोड नुवेल डेकुवेर्ट स्कूल लेन शिवाला रोड शुमें लापलेन और स्पीड लेन के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 11 जुलाई 2024 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई को सामान्य रूप पर लाई जाएगी। श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा चंद विज्ञप्तियाँ सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है।
1: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
0: भाई, बड़े प्यार से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इंदिरा लोटन जी हैं अपने पूरे परिवार के साथ मौदाल बिया से हमारे प्यारे प्यारे गीत जो हैं वो सुन रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ दे रही हैं हाल में बाबू से लक्ष्मी जी और साथ दे रही है अनीता जी फिका फ्लैग से, धनी जी हैं बुआ शेरी से। गीता जी हैं पोफिया से। भाई, इतने प्यार और अपनेपन के कारण ही हम चले आते हैं आप सभी के मनोरंजन के लिए। कहते हैं सच्चा यार सच्चा प्यार, ये दोनों अगर सच्चा ही मिल जाए तो ज़िंदगी का सफ़र आसान हो ही जाता है। आइए बालासुब्रमण्यम जी द्वारा प्यारा सा गीत आप सभी के नाम सागर फिल्म से।

0: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।
1: जिंदगी एक पहेली है और इस पहेली को सुलझाते सुलझाते हम कितना कुछ सीख लेते हैं और इसी सीख से
2: जिंदगी
1: जीवन में सुधार आता है।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: झलकियां
2: झलकियां चलिए एक नज़र डालते हैं आज के रेडियो कार्यक्रमों पर। अभी आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना कार्यक्रम। 8 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम और 8:50 पर हमारी धरोहर कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। किरण जानकी जी द्वारा फिर आप सभी के नाम एक भोजपुरी गीत चलाएंगे। 9 बजे समाचार होंगे। समाचारों के उस पार आज की चर्चा कार्यक्रम। 10 बजे आप फिर से समाचार सुन पाएंगे 10:03 पर भक्ति धारा कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी रोशनी और इसी में आप शास्त्र नवनीतम कार्यक्रम सुन पाएंगे। 11 बजे समाचार होंगे। समाचारों की इस बार 11:03 पर उर्दू कार्यक्रम सायदा की तरफ से। 12 बजे आप तेलुगु भाषा में कार्यक्रम सुनेंगे। तमिल कार्यक्रम आप सुन पाएंगे RC द्वारा दिन के 1 बजे। 1:45 पर रंगारंग कार्यक्रम गुजराती भाषा में रत्ना द्वारा। 2 बजे आप चाइनीज कार्यक्रम सुन पाएंगे होंग होंग के साथ। आपकी पसंद कार्यक्रम लेकर आएगी सुमिता। 2:30 बजे आपके ही पसंद के गीत 4:02, 8:05 पर आप अपना रिक्वेस्ट अपना फरमाइश अपनी जो फरमाइश है आप हम तक पहुंचा सकते हैं। दोपहर के 3 बजे आप फिर से समाचार सुन पाएंगे। समाचारों की उस पार आपकी पसंद कार्यक्रम जारी रहेगा। 3:45 से लेकर शाम के 4:40 पर उर्दू कार्यक्रम अनवर की तरफ से। गीत और गजल कार्यक्रम परवेजा की तरफ से। शाम के 6 बजे पूरा समाचार बुलेटिन।

0: आप सुन पाएंगे समाचारों के उस पार 6:20 पर चंद फिल्मी गीत आप सभी के नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। सारे 6 आप चाइनीज कार्यक्रम सुन पाएंगे जिन की ओर से और रात के 7 तमिल भाषा में आप कार्यक्रम सुनेंगे। 7:30 तेलुगु भाषा में विश्वा जी द्वारा आप कार्यक्रम सुन पाएंगे। 7:50 पर गीत और गंगा कार्यक्रम मराठी भाषा में बापू की ओर से, भक्ति कार्यक्रम मलका जी की ओर से रात के 8:10 पर भजले प्रभु का नाम, महफिले शब अपर विजा की तरफ से 8:40 पर भोजपुरी तड़का भोजपुरी के गीत आपके ही फरमाइश पर सुरेखा जी प्रस्तुत करेगी रात के 9:00। 11:00 आप कुछ पुराने दौर के गीत जहां कुछ सुनहरे पल आपको ले जाएगी के निशा, और रात के 12:00 से लेकर सुबह के 6:00 तक चंद प्यारे पुराने गीत आप सभी के नाम।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस,
1: झलकियां,
2: झलकियां।

भाई जिंदगी कैसे भी हो इसे गले लगाना ही पड़ता है। अर्किता जी हैं क्यूपिप से साथ निभा रही हैं, आपका स्वागत है। और सूरज शर्मा सज्जादा जी आपका भी स्वागत है। तो चलिए आप सभी के नाम सुरेश वाडकर जी के आवाज में सुनते हैं। इसे सुधारना या बिगाड़ना आपके ही हाथों में है। हर दिन एक खेल है, ध्यान से खेलिए।

वहीं हम तो कहेंगे गुनगुनाते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि 8 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार फिर से मिलेंगे गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में। वही जिंदगी खेल है, खिलाड़ी बनिए, एक ऐसी खिलाड़ी जिसको कोई हरा नहीं सकता और कोई गिरा नहीं सकता। जीवन को खेलने के लिए एक हुनर चाहिए और सब में वो हुनर है, और खेल ऐसा खेलिए कि इंसान को चोट ना पहुंचाइए, सुधार लाइए पर इंसानियत को समझें।

चलिए ये शो था इसी के साथ हम बढ़ेंगे अभी 8 बजे के भोजपुरी समाचार की ओर और संता लिगाया जी अपना जन्मदिन मना रही हैं, पूरे उनके पूरे परिवार की ओर से उनको ढेर सारा शुभकामनाएं और जो भी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं उन सभी को पूरे एमबीसी टीम की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: फजर के ठीक 8 बजे तक सुना भोजपुरी में समाचार।

0: नमस्ते, सुनो भोजपुरी में समाचार। ये बरिस मॉरिशस में पर्यटक लोग के संख्या थोड़ा बदलल बा। बकीर जून महीना में पर्यटक कम आयल, जनवरी से जून 2026 ले 6,68,471 पर्यटक मॉरिशस आयल। ई पिछल का बरिस के यही समय से 1.5% जस्ती बा, मतलब 9,562 जस्ती पर्यटक आयल। हालांकि खाली जून महीना में पर्यटक के संख्या 8.4% घटल बा। ई आंकड़ा स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस जारी कर ले बा। ई पर पर्यटन मंत्री किशोर जुवाल बोलन कि जून महीना दुनिया के कई पर्यटन जगह खातिर मुश्किल रहल। मॉरिशस के अर्थव्यवस्था आगे बढ़त बा, बकेर रफ्तार आगे से धीमा पड़ गल बा। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के ताज़ा आंकड़ा के मुताबिक 2026 के पहला तिमाही में आर्थिक बढ़ोतरी 2% रहल। पिछल का बरिस से यही समय ई 3.4% रहल। कुछ सेक्टर में बढ़िया काम हुआ था, बकीर निर्माण और कपड़ा उद्योग में गिरावट देखल गल। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के ताज़ा आंकड़ा के मुताबिक जून महीना में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 111.9 से बढ़ के 112.2 पर पहुंच गल, मतलब 0.3% के बढ़ोतरी भइल। हालांकि बरिस भर के हिसाब से महंगाई के रफ्तार कुछ कमती भइल बा, बकी रोज के खर्चा अभियो लोगन पर भारी पड़त बा। राज्यसभा के बैठक आज दोपहर 3 बजे फिर से शुरू हुई। इस दौरान डोमेस्टिक अब्यूज बिल पर ही आगे बहस आगे बढ़ावल जाए। 2018 में फौजीसाक में बाप बेटा की हत्या वाला मामला अभियो अदालत में बा। सुप्रीम कोर्ट पहले ई तय करी कि डीपीपी उमेश कुमार बाबूलाल की बरी होके के खिलाफ अपील कर सकेला के नहीं। 8 जुलाई के चीफ जस्टिस बीबी रेहाना मंगली गुलबुल और दूगो जज दोनों पक्ष के दलील सुनलन जा। बचाव पक्ष के कहना बा कि डीपीपी के ई अधिकार नहीं बा, जबकि डीपीपी के कहना बा कि संविधान ओकरा के ई अधिकार देला। उमेश कुमार बाबूलाल बरी हो गल रहल, जबकि उनकर भाई रितेश कुमार बाबूलाल के 38 बरिस के जेल के सजा मिलल। दूसर देश के खबर में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गल बा। अमेरिका के दावा बा कि ऊ लगभग 90 सैन्य ठिकाना पर ही हमला कर ले बा। उधर ईरान के कहना बा कि पिछल का 2 दिन में 14 लोग के जान गल बा। जवाब में ईरान कुवैत बहरीन और कतर में अमरीकी ठिकाना पर ही हमला करे के दावा कर ले बा। तो ई रहल हमनी के भोजपुरी में समाचार, हमनी के सुन ल जा। धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: Mousselement boulet rouge, flaque me. 69 years old के 69 ओं के करण गजाधर गुजर गल हवन। उनकर माटी काल दिन के 2 बजे उन्हीं के घरे फ्लक से उठा के अंतिम संस्कार खातिर ब्रह्मस्थान के शमशान भूमि ले जावल जाए। शास्त्री रोड बुआपियोले में 65 बरिस के 65 ओं के इंद्रावती बिहारी गुजर गल हवन। पैदाइश नाम चतुरी। उनकर माटी आज दिन के 2 बजे उनकर बेटा पूरब कुमार सिंह बिहारी के घरे पुआपियोले से उठा के अंतिम संस्कार खातिर थोंगबो के शमशान भूमि ले जावल जाए। पालमा काठोबोन में 65 बरिस के 65 ओं के मंत्री रामदेव सिंह गुजर गल हवन। पैदाइश नाम निया। उनकर माटी आज सपहर 3 बजे उन्हीं के घरे काठोबोन से उठा

कि अंतिम संस्कार खातिर गांधी पार्क में के शमशान भूमि ले जावल जाए मोसल मगाफ्रेलोशेतेरूज में लोशेतेरूज में 79 के 79 वों के अचाना अपाना गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 1:30 बजे उनकर पत्नी सिनामा येडलुप अपाना के घरे तेरूज से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सिपाही भूले वाले दिप्रत के शमशान भूमि ले जावल जाए रॉयल रोड क्रेव क्यूमे 66 बरिस के 66 के मेधा दनु गुजरगल हवन पैदाइश नाम बर्तन उन कर माटी आज दिन के बल्कि कल 11 जुलाई के फजर के 11 बजे उन कर पति सोमराज सिंह धनु के घरे क्रेव क्यू से उठा के अंतिम संस्कार खातिर क्रेव क्यू के शमशान भूमि ले जावल जाए ब्रांच रोड लाल माथी में 67 बरिस के 67 के विनोद माथू गुजरगल हवन उनकर माटी आज दिन के 12 बजे उनकर पत्नी मिसिस अंजनी माथू के घरे लाल माथी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लाल माथी के शमशान भूमि ले जावल जाए रॉयल रोड सेत्या मिल ट्रियोली में 66 बरिस के 67 के श्री आवेदना देन सोमी गुजरगल हवन उनकर माटी आज दिन के 2 बजे उनकर घरे त्रियोली से उठा के अंतिम संस्कार खातिर SSS लेन क्रिमेशन ग्राउंड के शमशान भूमि ले जावल जाए सनफ्लावर स्ट्रीट मापू में 82 बरिस के 90 के सुंदर दत्त मोहिस गुजरगल हवन उनकर माटी आज दिन के 12:30 बजे उनकर बेटा विशाल मोहिस के घरे सनफ्लावर स्ट्रीट मापू से उठा के अंतिम संस्कार खातिर दाऊची पे चिराफ्रे के शमशान भूमि ले जावल जाए रेलवे रोड सैन मिशेल बेले रिवर सेश में 67 बरिस के 67 के सूर्या नारायण रामदू गुजरगल हवन उनकर माटी आज दिन के 11:00 बजकर 15 उन्हीं के घरे बेले रिवर सेश से उठा के अंतिम संस्कार खातिर दोपहर के शमशान भूमि ले जावल जाए SSO स्ट्रीट पीटो में 67 बरिस के बल्कि 47 बरिस के 47 के विकास चुलन गुजरगल हवन उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उन्हीं के घरे से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पीटों के शमशान भूमि ले जावल जाए अवेन्यू बेतु कंपासी कटरोबोन में 44 बरिस के 47 के नारायण दन कुमार धनुकचंद गुजरगल हवन उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उन्हीं के घरे कटरोबोन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर कोदगौद के शमशान भूमि ले जावल जाए काली माता रोड लाल माथी में 66 बरिस के 67 के इंद्रदेव पुनाय गुजरगल हवन उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर पत्नी विदुला पुनाय के घरे गांधी रोड काली माता रोड लाल माथी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गांधी रोड लाल माथी के शमशान भूमि ले जावल जाए कॉन्सिपियों पॉइंट ऑफ पीमा में 52 बरिस के 57 की उमा भूला गुजरगल हवन पैदाइश नाम जरी उनकर माटी आज दिन के 10:30 बजे उन्हीं के घरे पॉइंट ऑफ पीमा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर त्रियोली के शमशान भूमि ले जावल जाए राहुल रिवेट स्ट्रीट मोरोश बोबासमी 79 की वेदावती नारायण गुजरगल हवन पैदाइश नाम कादियावालू उनकर माटी आज दिन के 2:30 बजे उन्हीं के घरे बोबासे से उठा के अंतिम संस्कार खातिर शेबल के शमशान भूमि ले जावल जाए राहुल रिवेट स्ट्रीट पोर्टलुई में 75 बरिस के 75 के गोविंदन कनुसामी गुजरगल हवन उनकर माटी आज दिन के 12 बजे उन्हीं के घरे पोर्टलुई से उठा के अंतिम संस्कार खातिर थोंग बुआ के शमशान भूमि ले जावल जाए रुट बुआशेरी पेटी व्याजे सैंपियामे 71 बरिस के 71 के कमलावती लक्ष्मण गुजरगल हवन पैदाइश नाम महादुआ उनकर माटी आज दिन के 1:30 बजे उनकर पति ईश्वर दत्त लक्ष्मण के घरे सैंपिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सैकोस्तों सैंपिया के शमशान भूमि ले जावल जाए इंग्लैंड में 76 बरिस के 67 के अनिरुद्ध कुमार चमरू गुजरगल हवन उनकर माटी इंग्लैंड में ही आज दिन के 1:30 बजे उठावल जाए 10 Avenue विल्सन बेलरोज में 52 बरिस के 92 के सरोजनी तिलक गुजरगल हवन पैदाइश नाम गोपुल उनकर माटी आज दिन के 2:30 बजे उनकर बेटा देवानंद तिलक के घरे बेलरोज से उठा के अंतिम संस्कार खातिर 93 के शमशान भूमि ले जावल जाए रॉयल रोड वाली दिप्रेत में 68 बरिस के 68 के

0: मुकाम हुकुम गुजर गलहवन उन करमाटी काल दिन के 10 बजे उन्हीं के घरे वाली देवखत से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सिपाही भूले वाली देवखत के शमशान भूमि ले जावल जाए। पायों के रुद मोसलमान सेंट अंतोन गुडलैंड्स में 77 बरिस के 77 सेतों के जगवंती राजकुमार गुजर गलहवन पैदाइश नाम जुदवा उन करमाटी आज बल्कि काल 11 जुलाई के दिन के 11 बजे उनकर बेटा विमल राजकुमार के घरे गुडलैंड से उठा के अंतिम संस्कार खातिर दाऊथी के शमशान भूमि ले जावल जाए। शोकग्रस्त परिवार संगे हमनी सहानुभूति प्रकट करत हैं जा।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: गर्मा गर्म नाश्ता।
1: सभी को प्यार भरा नमस्कार। गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती हैं पूजा। आपके ही अपन अपने जो कार्यक्रम में गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपको डायल करना है 4028085 पर 4280085 पर। तो चलिए पहला सवाल कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुने। संसार का सबसे बड़ा हथियार क्या है? संसार का सबसे बड़ा हथियार क्या है? 4028085 पर, नहीं तो आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं 5250।

0: चलिए लाइन पर एक श्रोता है, आइए उनको सुनते हैं कि उनके पास क्या जवाब है और उनका स्वागत करते हैं। हेलो, नमस्कार आशा जी। हेलो
1: हेलो, नमस्ते पूजा जी।
0: नमस्ते आशा जी, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ और आपके गीतों को सुनकर और अच्छी हो जाती हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज का जो प्लेलिस्ट है आपको पसंद आई है। और अभी हाल में गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में आप भाग ले रही हैं और सवाल कुछ इस प्रकार हैं, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार क्या है?
1: पता नहीं पूजा जी सही है या गलत, बस एक कोशिश कर रही हूँ। मेरे ख्याल से वो शब्द होते हैं, हमारे शब्द।
0: हमारे शब्द
1: जी, क्योंकि हम किसी को यदि अब शब्द जान के शब्दों का वार कभी कभी सहा नहीं जाता है, किसी को अब शब्द कहने पर दिल टूटता है। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा हथियार है।
0: नहीं, प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार क्या है। मान लीजिए किसी ने आपको दर्द दिया है, किसी ने आपको चोट पहुंचाया है, तो सबसे बड़ा हथियार क्या है? क्षमा कीजिए, हथियार क्या है उस दर्द से गुजरने के लिए, उस दर्द से बाहर निकलने के लिए सबसे बड़ा हथियार क्या है?
1: हमारे साहस।
0: साहस और हथियार। हथियार
1: साहस, हिम्मत, साहस, हमारे फिलहाल के लिए तो अभी के लिए बस।
0: कोई बात नहीं, आप कोशिश कर, आपने कोशिश की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। और आपको कहेंगे शुभ दिन।
1: आपको भी कहूँगी शुभ दिन पूजा जी,
0: धन्यवाद, बाय। आइए एक और श्रोता है लाइन पर, उनको हम सुनते हैं कि उनके पास क्या जवाब है। हेलो
2: हेलो पूजा जी, नमस्कार।
0: नमस्कार वीना जी, कैसी हैं आप?
2: मैं अभी फिलहाल ठीक हूँ। मौसम का तकाजा है कि कभी तबीयत खराब हो जाती है, थकान लगती है, दर्द वगैरह ये सब तो लगा रहता है। वैसे ठीक हूँ।
0: चलिए भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप यूं ही ऐसे स्वस्थ रहें।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। आप ठीक है ना?
0: मैं ठीक हूँ। और अभी आप भाग ले रही हैं गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में सुबह सुबह, शायद आपके पास सही जवाब होगा जो है, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार क्या है हमारे पास, जो हम हर किसी जो मुश्किल आता है, जो जो भी कठिन स्थिति आता है उससे हम आती हैं, जो
2: निपटते हैं,
0: हाँ निपट सकते हैं, वो क्या है हथियार?
2: मेरा दिमाग कहता है शायद वो प्रेम है या प्यार है।
0: प्रेम और प्यार, आप बहुत करीब हैं, पर ये गलत जवाब है। फिर भी आपने कोशिश की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार और शुभ दिन। चलिए एक और श्रोता है लाइन पर, उनको हम सुनते हैं कि उनके पास क्या जवाब है। हेलो
3: नमस्ते पूजा जी।
0: नमस्ते जी, कैसी हैं आप देवी जी?
3: हाँ जी ठीक है।
0: ठीक है। और इतनी ठंड कैसा है वहाँ पर हाईलैंड्स में?
3: आज मौसम सुहाना है।

0: मजेदार हवा है ना बारिश है।
1: स्थिर है। चलिए बताइए आपके पास क्या जवाब।
0: तो मेरे विचार से उस दर्द को खामोशी से सहने की शक्ति।
1: और वो शक्ति कौन देता है? और वो शक्ति कौन देता है?
0: हम खुद, हमारा मन।
1: मन मन में क्या है?
0: अंतर्मन। अंतर्मन,
1: अंतर्मन में क्या है?
0: मन में विश्वास है।
1: मन में विश्वास है। चलिए पर ये गलत जवाब है, आप बहुत ही करीब थी, फिर भी आपने कोशिश की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कहेंगे शुभ दिन, बाय।
2: मेरा नाम है कैलेंडर। क्या है?
1: कैलेंडर नहीं, गर्मा गर्म नाश्ता। चलिए अभी लाइन पर एक और श्रोता है, उनको सुनते हैं कि उनके पास क्या जवाब है। हेलो।
3: हेलो
1: बसंती जी, नमस्ते।
3: नमस्ते पूजा जी,
1: कैसी हैं आप?
3: मैं ठीक हूँ पूजा जी।
1: बताइए क्या आपके पास जवाब है।
3: भगवान पर भरोसा करना।
1: सही जवाब दिया है आपने बसंती जी।
3: थैंक यू पूजा जी।
1: आपको कहेंगे बधाई हो और भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बसंती जी। शुभ दिन आपको।
3: आपको भी पूजा जी।
1: चलिए दुनिया का सबसे बड़ा हथियार क्या है? और वो है ईश्वर, भगवान। राम का नाम लेना, परमात्मा का नाम लेना मन को शांति देती है और पार भी करवा देती है। और व्हाट्सएप के ज़रिए भी बहुत सारे लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, किसी ने कहा है भगवान और आपने सही जवाब दिया है और वो है माला जी, और किसी ने कहा है हिम्मत। हिम्मत तो नहीं पर ये परमात्मा है। चलिए एक और प्रश्न आप सभी के नाम। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? 4028085 पर।

0: चलिए सुनते हैं एक श्रोता को कि उनके पास क्या जवाब है। हेलो
1: हेलो पूजा जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, आपका शुभ नाम?
1: स्वस्ति।
0: स्वस्ति जी कहाँ से बोल रही हैं आप? काठोबोन से आपका स्वागत है स्वस्ति जी।
1: धन्यवाद।
0: और आप कैसी हैं?
1: मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे?
0: मैं भी ठीक। चलिए बताइए कि आपके पास क्या जवाब है।
1: केले के पेड़।
0: केले का पेड़, चलिए आप श्योर हैं?
1: जी 100%
0: 100% श्योर हैं, तो भाई आप ले जाइए सही जवाब। आपको बधाई हो जी।
1: बधाई
0: और आपको शुभ दिन कि आपने भाग लिए। अच्छा जी, नमस्ते।
1: बाय
0: बाय।

केले के पेड़ में ना उनका पत्ता, ना केला, ना कुछ भी नहीं फेंका जाता है उसमें। सब कुछ हम जो है प्रयोग करते हैं। चलिए बंबई से गई बूना, हम तो कहीं जाएंगे नहीं, अभी तो आप जुड़े हुए हैं गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में। चलिए बताइए, वह क्या चीज़ है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक

0: सजना नहीं बस जवाब चाहिए। चलिए लाइन पर एक श्रोता है, उनको सुनते हैं। हेलो,
1: नमस्ते पूजा जी।
0: नमस्ते शोभा जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हो?
0: मैं भी ठीक। सुनाइए, आपके पास क्या जवाब?
1: मैं कोशिश कर रही हूँ। जन्म पत्र?
0: जन्म पत्र नहीं।
1: हमारी आईडी?
0: नहीं, ये भी गलत जवाब है। कोई बात नहीं, भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी।
1: धन्यवाद आपको भी।
0: धन्यवाद, बाय बाय। चलिए एक और श्रोता को हम सुनते हैं। हेलो,
2: हाँ पूजा, नमस्ते।
0: नमस्ते श्यामा जी, कैसी हैं आप?
2: अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं भी ठीक। और आपके पास क्या जवाब?
2: वो पानी है।
0: पानी? नहीं, बहुत करीब है।
2: आग और पानी दोनों है।
0: नहीं नहीं, ये भी गलत जवाब। कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा जी। शुभ दिन आपको।
2: हाँ जी, अच्छा तो मैं प्रतीक्षा करूंगी कि आपका जवाब क्या है।
0: चलिए बताती हूँ।
2: हाँ, ओके।
0: वह क्या चीज है जो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक काम आती है? किसी ने व्हाट्सएप के जरिए सही जवाब दिया है। चलिए मैं उनको धन्यवाद कहूंगी और साथ में बधाई भी। और वो है देवी जी, और उन्होंने कहा है लकड़ी। वो लकड़ी ही है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक काम आती है। चलिए बताइए एक और सवाल। आप सभी के नाम आपको मुझे बताना है कि शत्रु पर विजय पाने के लिए सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? शत्रु पर विजय पाने के लिए सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? 4028085 पर। चलिए बताइए शत्रु पर विजय पाने के लिए सबसे बड़ा अस्त्र क्या है?

0: रानी चा।
1: असलम भाई तो नहीं, चलिए देखते हैं कौन सा भाई हैं आ गए हैं हमारे इस शो में भाग लेने के लिए। नमस्ते जी।
2: नमस्ते,
1: कैसे हैं आप?
2: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ।
1: और आपका शुभ नाम?
2: से अली भाई।
1: अली भाई असलम नहीं, अली भाई जी आ गए हैं। अली भाई आपके पास क्या जवाब है?
2: जवाब है प्यार।
1: प्यार, और आपने सही जवाब दे दी, उसके लिए बधाई हो आपको। और आपको कहेंगे शुभ दिन।
2: शुभ दिन आपको।

तो चलिए टीकू जी हमारे साथ दे रही है, उनका हम स्वागत करते हैं, यूं ही सुनते रहिए माधुरी पछुता। चलिए एक और करेगी सवाल आप सभी के नाम।

संसार का सबसे बड़ा योद्धा कौन है? संसार का सबसे बड़ा योद्धा कौन है? 4028085 पढ़ रहा।

0: तो चलिए लाइन पर एक श्रोता है, उनको हम सुनते हैं कि उनके पास क्या जवाब है। हेलो,
1: दिल से प्यार भरा नमस्कार मेरी प्यारी प्यारी लवली सी पूजा जी, कैसे हो जी?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं गीता जी?
1: बिल्कुल ठीक, फिट एंड फाइन। आपकी आवाज़ सुन के अब तो बढ़िया हो गई।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपके पास क्या जवाब है?
1: मन,
0: हमारा जो है मन। सही जवाब दिया आपने, आपको बधाई कहती हूँ।
1: शुक्रिया, शुभ दिन।
0: शुभ दिन आपको भी, बाय जी, बाय। और इसी के साथ हम कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं।
2: गर्मा गर्म नाश्ता,
0: चलिए साथ रहिए, अभी हम बढ़ेंगे हमारी धरोहर कार्यक्रम की ओर किरण जानकी जी द्वारा। फिर आप सभी के नाम एक भोजपुरी गीत और 9 बजे समाचार होंगे, समाचारों के उस पार आज की चर्चा कार्यक्रम। और तब तक के लिए पूजा को अनुमति दीजिए। मेरी ओर से सभी को नमस्ते, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।
3: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
4: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हमने एगो शक्कर प्रतिष्ठान पर ध्यान देव जा, एगो शुगर एस्टेट और ऊह डोमेन दुलाबुदू ने हुआ के इतिहास पर ध्यान देव जा। और ये देखब जा कि एगो शक्कर प्रतिष्ठान में और कौन कौन चीज रहत रहल। लाबुदूने की जो डोमेन बा ओके बहुत सुंदर रूप से संरक्षित करा गल बा, और हुआ पर के जो एगो विशेषता बा ऊ हुआ के एगो शातु है। और ई जो शातु है ई 18वीं सदी में बनल रहल। हियाँ पर जो इतिहास बा उसे कब्जा बोले 250 बरिस पुराना है, काहे कि हियाँ पर जो पहला कोसेसियों चलल रहल उ 1714 में हो रहल। फिर ई संपत्ति के विकसित करल गल और कितने मालिक इस संपत्ति के हासिल करलन सा एक के बाद एक, जब तक कि 1848 में ई व्ये परिवार के मिलल। श्रीमान व्ये ई डोमेन के मालिक बनलन

पहला हला और फिर उ ब्याह करलन। हियाँ के जन कहानी बा उ थोड़ा कॉम्प्लिके बा, आगे बहुत परिवार में आपस में ब्याह होवे और उ लोग इस संपत्ति के मालिक बनत रहलन सा, विभाजित भी करत रहलन सा संपत्ति के, और एक ट्रांसफर भी होवत रहल हस्तांतरण। लेकिन 1848 में जाके ये परिवार इस संपत्ति के मालिक बनल और इ मेजो कॉलोनियल 1856 में उ बनवैलन। इ रहल प्रोप्रिएटे सुक्रिय शक्कर प्रतिष्ठान के मेजो कॉलोनियल। इ रेजिडेंस हियाँ के चारों ओर के आबिटेशन जोन कौन रहल ओकर देखरेख करे होला मैनेजर और मालिक लोग खातिर रहल, जहाँ कितने जना रहे, कितने गतिविधि हुआ पर चलत रहल। नहीं चाहे भुलाए के कि एगो कृषि जमीन, एगो ते एग्रीकल हियाँ पर रहल, हियाँ ईख के खेती होवे और लाबूदों ने सबसे सुंदर पोपियते सुक्रिय शक्कर प्रतिष्ठान के रूप में मशहूर रहल। क्रिश्चियन व्ये इ तरह से हियाँ पर एगो महल बनवैलन और उ मोमजू कोंसेई लेजिस्लाटिव भी रलन, एगो महत्वपूर्ण हस्ती रलन और लाशाम दागिकुल्चर के प्रेसिडेंट भी बनलन। सोसाइटी रॉयल दे जा एड सियंस के भी उ प्रेसिडेंट रलन और उनकर बड़ा व्यक्तित्व उनकरा एगो खास किसान के रूप में हमेशा देखलन, एगो खास प्लांटर के रूप में, और वो अपन डोमेन और उ डोमेन से जुड़ल कृषि के विकास करलन। उ फ्रांस से एगो माली बुलवैलन इ बाग के सवारे खातिर। ला रेनियों से एगो हॉर्टिकल्चर के बुलवैलन जे फल के गांछी के ग्रिफ शुरू करलन। हियाँ एगो शानदार व्याजे भी बनल, एक तरफ ईख के खेती तो दूसर बगल एगो बागीचा, बड़ा बागीचा। आज ई एगो कलेक्शन बन गल बा जेकर सैर करल जाला। व्याजे कलेक्शन के अलावा एगो व्याजे प्रोजेक्शन भी बा, जहाँ पर फल के रस पेड़ के ओकर से जूस बनावल जाला, कॉफीचिया बनावल जाला, मुरब्बा बनावल जाला और पत दे फ्रुई भी, जेके मॉरिशन लोग बहुत पसंद करे लंजा और ख़ास तौर पर जब पर्यटक लोग आवे लंजा तो एकर खरीदारी ज़रूर करे लंजा। क्रिश्चियन व्ये भविष्य के ध्यान में रखते हुए विकास करलन। उनकर उत्तराधिकारी जो दिसौदा लोग रलन सा ई मशाल के उ लोग आगे बढ़े लन सा। पिता और पुत्र दोनों कृषि से ही जुड़ल रहलन सा और ई डोमेन के संरक्षण करलन सा जोन आज एगो सुंदर प्रतिष्ठान है। लेकिन हमी अब चीनी पैदावार नहीं करीला सा, किसान लोग अपन पैदावार के जीवेसिफिये करलन सा, विस्तृत करलन सा। आज भी जब डोमेन लाबूदोने के ओकर फल, ओकर जोन जूस बा, ओकर जोन पैदावार बा वो बहुत मशहूर बा, लेकिन एकर इतिहास देखा कितना पुराना बा। आज यहाँ के फैक्ट्री, डिस्टिलरी और कौची देसिया जब देखबा त आपके अतीत के एगो झलक लौकेला कि कैसे सकल रहल ई जगह आगे रहे। और यहाँ पर बहुत अच्छा तौर पर संरक्षण कार्य होलबा, एकर इस्तेमाल करल जाता। जब एगो पुराना जगह के संरक्षण करबा तो ये बहुत ज़रूरी है कि ओकर प्रयोग करल जाए, और लाबूदों ने जोनबा ओकर संरक्षण और ओकर प्रयोग बहुत अच्छा से हुआ था। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला, बहुत धन्यवाद। नमस्ते।

0: आइए मिलते हैं आस्था से, सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। नमस्कार आस्था।
1: नमस्कार। नमस्कार सभी को। मॉरिशस में पर्यटकों की संख्या में इस वर्ष अब तक हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि जून महीने में आगमन में गिरावट देखने को मिली। जनवरी से जून 2026 के दौरान मॉरिशस में 6,78,471 पर्यटक मॉरिशस आए। ये पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 1.5% की बढ़ोतरी है। यानी इस साल 9,552 अधिक पर्यटक मॉरिशस पहुँचे। हालांकि सिर्फ जून महीने में पर्यटकों की संख्या जून 2025 की तुलना में 8.4% कम रही। आपको बता दें कि ये आंकड़े स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस ने हाल में जारी किए हैं। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था में वृद्धि का सिलसिला जारी, लेकिन इसकी रफ्तार पहले के मुकाबले धीमी पड़ गई है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा 30 जून को जारी ताज़ा आर्थिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 की पहली तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर 2% रही है। पिछले वर्ष की समान अवधि में ये 3.4% थी। कुछ सेक्टरों में अब भी अच्छी प्रगति देखने को मिल रही है, जबकि निर्माण और कपड़ा उद्योग जैसे क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की गई है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा 7 जुलाई को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जून में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 111.9 से बढ़कर 112.2 अंक पहुंच चुका है। यानी इसमें 0.3% की वृद्धि हुई है। हालांकि एक वर्ष के आधार पर महंगाई की रफ्तार धीमी हुई है, लेकिन रोजमर्रा के खर्च का बोझ अब भी लोगों पर पड़ रहा है। राज्यसभा के कार्य आज सुपहर 3 बजे से फिर से जारी रखे जाएंगे। इस दौरान डोमेस्टिक अब्यूज बिल पर बहसें जारी रहेंगी। विदेश की खबरें जो आज सुर्खियों में, उनमें अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव जारी है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान के लगभग 90 सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जबकि ईरान का कहना है कि पिछले 2 दिनों में 14 लोगों की मौत हुई है। तो इस समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। हमें आगे दीजिए। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. Welcome to RM2.
3: Musty Mornings, Radio Musty.

0: सभी दर्शक लोग की विदिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज की चर्चा कार्यक्रम में स्वागत बात हलो के। जैसे कि आप लोग जानत हवा कि हर शुक्रवार की हमने की जो कार्यक्रम बा एकर संगे हमनी जो कानून बा एकर में जो लालवा बा एकर बारे में हमने बतियाला जा। और हमेशा की तरह हमने की आज की जो मेहमान हुआ हमने के वकील कपिल देव रघुनंदन जी हमने के संगे हुआ। चलो उनका स्वागत करे जा। कपिल देव जी नमस्ते।
1: नमस्ते जी।
0: तो कार्यक्रम में आज हमने के जो दर्शक लोग श्रोता लोग हवन जा लोग जाने को जत बन जा कि हमने आज कौन विषय लेकर आ नहीं जा। तो जैसे जानत हुआ कि हमेशा जब हमने बात करी ला जा बंटवारा के लापौताज के तो ढेर कोई अपन हक नहीं जाने ला ढेर कोई नहीं जाने ला कि चाहे ना ऐसा ऐसा चीज बाजी कर पर सकियन जा अपन हक के लिए लड़ाई करे। लेकिन उकरले पहले हमने बता दिला जा कि पिछले हफ्ते हमने जुनबा चेंज ऑफ नेम जुनबा ई विषय के साथ आ रही जा। देखो छोटा को ना जे हमने रिकाप कर दिला जा हमने के श्रोता लोग जे तनि कुन कुछ गाती कर देले हुए अंजा तक।
1: हाँ अली पहला चीज हमने देखला से एगो आदमी क्योंकि मन हुई सौंसे करे चेंज ऑफ नेम जिसे हमने बोलिया सा या उकर पैनो हो या कोशियनो हो ओके मन बा सौंसे करे के तो का करे के चाहला ओके जाए के चाहला एगो फोम बा अन मन है मिनिस्टर दे जस्टिस में ओकर बीरो सहरुआ में जेब हुआ हजार गो रुपया पे करब उ गौपली करब उ लोग प्रोसेस करेला एगो ऑफिसिये बा उ में जो देखल करेला और हुआ से कब देखेला कौन कौन चीज गौपली कर ले वो फोमवा में जे देखा था तोहर कुमार जेगो आदमी ओकर रेजों जब सौंसे करत हुआ तोहर नाम कि उ वालिद बा तो का करे एगो लेट देवेला तोरा एगो है के कि मजा कोरेक बा अब का करी तू लेतवा में ओके बोली कि ई आदमिया के चाहला जाए के कुमा जा पिबलिए करे के एगो है जूनाल में एगो है के गवर्नमेंट के आ होने दू बग के है प्रिवे के कुमा जला गाजेट में कब ऊ प्रिवे हो जाए तो काहे ई लगाजित में डाल जाला ताकि कोनो आदमी के मन हो ऑब्जेक्टे करे के कि ई नमुआ नहीं अच्छा बा या कुछ मजा कारण हो
0: नमुआ की दिजा कोई बा
1: हाँ या कुछ कोनो कारण हो तो उस सखी ऑब्जेक्टे करे। जब ऑब्जेक्टे करेला तो हुआ से ऊ जाए हुआ फिन से पपियवा उगर बिरवा में आई तो ऊ पढ़ के देखेला ई ऑब्जेक्शवा जो पब्लिकवा कर ले भाई हो फैमिली हो या कोई भी हो इसकी वालिद बा कि नहीं बा जब वालिद नहीं हो तो ओके दे तो विजाशियो एक कुमा जे है पिबलिए है पिबलिए कर दे इस संखी सौंझे करे तब एगो लेट दे ऊ लेता सिविल के जो नदमिया मांग कर ले बात सौंझे करे के जाए लेता सिविल के देखे लेता सिविल हुआ बस ओके कुमा जे हाँ एगो चेंज हो सर्टिफिकेट अब चेंज मिलेगा गाड़ियाँ तो उस सर्टिफिकेट अब चेंज लेके जाला बस हुआ कर नाम कुमा जे सौंझे करे के लेता सिविल में जाए लेता सिविल के हुआ तब का करी ओकर है के कुमा जे ओकर लाग देने सांस में जो नमुआ सौंझे ऊ सब करे के चाहिए तो ऊ करके तब एक कुमा जे उस की सर्विस करे ऊ में एगो लेत रही एगो पापिया उ लोग एगो दाई रही बा जोन जोन सांझे हो रहा नमुआ ऊ नमुआ के

0: सारा कि यही से हम नहीं सब स्वीव कर लें इस आइला का बाप रही तो कर बेटा की दे कर बेटा रही तो कि ऐसे ये उत्काजिशो हो गल अपन अपन जोन से मिनवा के अभी जोन तभी कोनो एक बार बेचला तो कहाँ कर लन सन तिकलन से उलो कब फिने हो गल तो ऊ ले पोकवा में मजे अब कम लगल घर खनी बनाई के तो का कर लग दादा पर दादा ऊ ओके एक बार अभी तो बहुत मुश्किल बा कोतरा ही नहीं बने ले रलन सन अभी तक देखो आदमी के बोलब ना आलबा आल तोर बीरो में मांगत है वो कोसे ही कभी को कोसे ही मांगत है तो पहला चित्तू तो बोलब अच्छा तोहर है वो था दादा जमीन केरल दादी के बोले नहीं मर पर दादा पर दादी के रल तन भी पूछा साहब जिस तो बातो अरे वो कोतरा बोले नहीं बा तन बोले नहीं बा यहाँ लाफिदा भी दे सक्सेशन नहीं बा कुछ नहीं बा तो कैसे सकब बोले इस जमीन हुआ कि तोहर एरिटाज में मिली अभी आप दिवस एरिटाज में तो यहाँ कैसे तोहरा बोल बा सक मिले एक बान कोई बा आज मॉरिशस में है कि देखब उ लोग के दादा पर दादा या दादी पर दादी से बगल से बा जमीन हुआ वो की पे भी करते वनसन में कोथरा नहीं बा
1: ऐसे में कुछ
0: हाँ यहाँ गो बड़का मुश्किल हो जा हमें अभी आप सर वो में बड़ी मुश्किल हो जाला पता से करे कि तब लेको चित नहीं रही कैसे रही अभी देखते हैं वो नवा आयल तो तू यही रह अभी कौजरे करके अब तुम जानते हैं कि वो लोग तो वह तोहर नाम में बा अब कल तोरा मन बा बेचे के हाँ कौन तरह बा बस वो लोग तो वह तोहर नाम में बा सकबा बेचे अरे को बोली कि नहीं रह तो कहाँ सकब उलट हुआ बेचे तो देख ला जमीनों भी ऐसने एगो है हा कि मुश्किल हो जाला कभी को कोतरा नहीं बहु आदमिया के तब तभी ही से मजे का कर लनसन पहले तब बोलन सन नहीं चल प्रिस्क्रिप्शन कर अब सर तो प्रिस्क्रिय कर दे बोलन सन तब पोपित कर बने लनसन तब अपन बाँटी अनसन अपन से अब का होल दादा पर दादा मजा कुछ ना कुछ बनाई हो घर हो जमीन हो तो का कर लग ओकर लैका होल पहले के तो जाने लग बान लैका है एगो एगो परिवार के 15 गो लैका रहल 10 गो लैका रहल तो उ लोग में कुमा जे अपता से करे अरे एगो बोली के का कर लन सन दादा पर दादा दे देलक एगो बेटुआ के अब उ बेटुआ के जेने राशियों ही देखबा आज के लैका लोग तो पोपीतेर हो गल वन सन जमीनों के हो गल बा बिजनेस के हो गल बा कमर्शियल के हो गल बा सब चीज किन बा शे बा कंपनी में बड़का बड़का कंपनी में देखबा पसी का एगो लैका ऊ करो मिलेला लीजिन हो या कुछ हो या वो कंपनी हो एगो बिजनेस हो तो ओकर लैका की तो मिलबे करी ना कुल देख ल कहाँ से अली स कहाँ से कहाँ अब बड़ा बड़ा कुमा जे जोन भाई बेटी सब जोन कुमा जे होल घाजी होल तो अपन अपन चीज खरीद लन सन अब उ लोग हो गल बा फोपी के जो अभी उलोक बनाई ले बागते कहाँ कर ले वनसन एगते कर लनसन अपन दादा पर दादा से तो देखे लिया जोन जोन है लैका जोन अवकर रहल अपन लैका के जब छोड़ दे बा तो ऊ दिखिला सा एगो जेवी छे बन गल बा आज मुविस में देख बहुत सा आदमी जोन धनवान हो गल बा जोन के एगो पोजिशन हो गल बा जोन एगो कर लावी जैसे बन सको लिमन में बा ई एगो कुमा जे ओकर भाई भाग रहल कि ओकर दादा पर दादा से एगिते करके उ लोग आज ई में जमीनवा के पोवितर बन गल वैसा तो देखे ला मैं अब ई कब हुए ला तो हमने देखे ला सर कि सब जोन बा उमें एगो चीज रहल एगो लेपो का रहल पहले तो नहीं रखल है कुमा जे एगो है कोथरा बनाई के तो का करल गुवेन में अनलग एगो कुमा जे एगो है ब्यू एनरजिस्ट्री में सब जो आदमी जोनो के मन हुई किने के या बेचे के तो जाके हुआ अपन एगो कोथरा मिली हुआ से कोथरा हुआ से अपन नोतेर उसे बना दी तो जाके हुआ ओके मिले ला एगो कोथरा मतलब नोतेर बना हुए ला एगो कोथरा जब एगो आदमी खरीदे ला एगो बेचे ला एगो जमीन के विषय में आले ई तो देखी ला सर हमने के कैसे एगिते कर ली सर एविताज हमने के कुमार जा कैसे हमने के
1: जमीनवा कैसे हाँ
0: हाँ कैसे प्रोप्रिएटर बन ली सर हमने के दादा पर दादा से मैं अब उही के एविताज हुआ के उही हमने देखब सर कौन प्रॉब्लम बा इपोताज में आजकल तो बड़का समस्या है जहाँ देखब बीरो भरल आदमी से कहाँ अलग कहाँ कहाँ कहाँ सकल जाप करे चाचा वो बोली हम आल तोरा देखे एगो जमीन के विषय में हम ली कौन चाह हम बोली पहताश करे के अब यही अब आल बा ओके पहताश करे के से पूछो लैका हो कितना लैका हो कोनो कितना लैका माफ करिए नहीं बा तो सामा करे के चाहना यहाँ तो नहीं
1: जगह चाहिए सकन दे
0: हाँ हाँ ओके जगह खुशी रही मैं अब एगो बोली के हमने अभी देखब सर कि पहताश के प्रॉब्लम का है तो हिया एक बार देखिला सर कब पहताश हुए ला एगो आदमी ओके एगो बाप है बा और बा से बो दो तीन गो लैका बा तो बड़ी खुशी आली से एगो पता सकेला उ बपुआ दे बिना ओकर तराकाली बिना के पैसा बिना जाए के आबू आबू का के देखे के या

0: मिलिकल नहीं हो ये आलू समझ लो ना नहीं यार की उपजे है इसी वजह बहन हुई तो कि पाछे मिले की हमनी के सोसाइटी में ये बिगाड़ दिले वंशन मजे चारों बगल के आदमी बोले नहीं हमके तो चाहे तो बड़ा भाई है हमके आगे चाहेला मिले के ना ये सब कुछ लिखल
1: नहीं ये भी बोलेला कि जोन छोटा बेटा बा ओके चाहला हम जोन घरवा बा ओके चाहला हुआ रहे के माँ बाप के संगे रहे के
0: हाँ
1: ये भी आगे से चल रहे बाकी जो सबले छोटा बा ओके चाहला माँ बाप के संगे रहे के
0: हाँ तो देखे ला ये सब नहीं है अभी तो आज के लड़का कहाँ माँ बाप संगे रहता है बोली के खूब बोल रहा सही मैं एगो ट्रेडिशन यार आवे है मैं पहले तो का करे आदमी ने बोले ये बेटी के अरे तू का करबे तू तो दूसरे फर या ध्यान भी दूसरे के खेबे तो के नहीं चाहेला माँ बापुए करे इसे है माँ बापुए नहीं देवे अपन बिटिया के पस बिटिया तो कोई सीनियर सेकंड सिटीजन को मजा वो लोग एक मजा हाँ जगह तेनी ऊ मजा है कौन तो नहीं है मैं कभी देखब जब से सबसे बड़ा मजा है मैं बेटा और बेटी में बेटिए ज्यादा अपन परिवार के कौन लेवेला ये कोई कुछ बोलेगा मेरे को दिबा सकब से करी मैं को बोली के तो देखब ऊ लैकुआ ओकरो हक बा और हम के कानून में बोले ला का पता सुला चाहे ला एक किताब तो हु ले ला हो एगो कुमा जे 10 पेज के हम के कुमा जे मिला था एगो है 4 पेज के तो यहाँ का पम पतिया जाला उ कुमा जे मिजरी करेला को रगापो करेला तो बोले ला एकर 10 पेज वा के कौन इतना वाले बा और हो 4 पेज वा के कौन वाले बा 4 पेज वा के जोन के वाले कम बा हो जोन के 10वा मिला था ला डिफरेंस सा लो के पे ये करे के ई एगो लिख दे वाला ओकर रगापो में है पस के कभी गोवा वो का या वो पढ़ी तो जान जाए बोले तोरा तो 4 ही पेस मिला था बोले हरी कैसे मर भई वा के मिला था 10 पेस और हम के 4 पेस तब बोले हाँ देख ली मन से कोथरवा में और पंथरवा लिख दे बा कि तोहर वाले ज्यादा कम बा ओकर वाले ज्यादा बा तो ई में तोरा कुमा जब पैसा ओके दे के चला एक नाम हमने बोला सा शुल्क एस ओ यू एल टी तो देख ला जे सब चीज को मजे अमिकाब से हुई आमियाब से हुई डाकू से हुई तो कोनो जिस्पित नहीं बा एगो डाकू बा मैं बहुत सा देखिला सा हमने प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बा कब हुए लंसन जमीन के बंटवारा में जमीन के पताज में जीविचिए जो नेविते कर ले बा जब पताज कर ले बा तब जनब कि ई हमर भाई कौन ई हमर बहन कौन छ कभी तो देखब कुत्ते में कुत्तो चलेला गाड़ी उ सब चलेला लड़ाई हो रेला बोन हुई देखब है भाई से बहन से लड़ाई करी बोले कैसे तोर बाप ऐतिल के दे देला इतना हम कि तोरा इतना कम तिल बा ई सब हो एगो बड़का समस्या है तो हिया देख ला पताज कब हुए ला तो सुबह हमने देखे ला सा एगो प्रॉब्लम हुएला बस कि का हुएला एगो भैया एगो बहनवा बोली हमके चाहेला हई घरवा ई तो पापा छोड़ के चल गए रहा एगो बोली के तो हमके हम एगते हमू तो एगोता जाए कैसे तो के घरवा मिली और हमके नहीं मिला था ये भी है तो देख बगो या उमे लसाम हुई तो बोली चार लसाम तोर चाम लसाम हमर या ऊ तो बोली नहीं हमके मन नहीं बात हो कि तू ही घरवा में रही बे देखे ला एक बांध को ये एक दूसरा हुई एगो भैया बोली हम तो बना दिले ये घरवा हमके चाहेला यही घरवा मिले के मिसलमा कानून है जो भी बनाइले हो अपने पैसा से तो ओके तो मिलबे करियो
1: लालवा बोले ला कि आज कोई अपन पैसा डाल के घरवा बनाइले बा पाला माँ बाप नीचे रहता ऊपर में भाई अपन घर बना दिले बा तो ओकर हक हो घरवा में रहे
0: जरूर मठियो चाहेला के दे के घर मठियो दोनों ओकर पोतरा में ये लिखल कानून है हमने के हई में बस एक बात बोले रन सन हम यहाँ लिखते उसकर वालेर में तो यहाँ देख पाओ ओके मिलता घर यहाँ तक मजे बहनिया के को बोली कि मजे एगो कही ज्यादा कम मिला था कि नहीं मजे अनमन घरों मिला था अब यहाँ वो घर एगो बाचीमा हुई या कुछ हुई बाचीमा मतलब एगो लोत्याज के हुई एगो तो भाई वा बोली नहीं हम नीचे चाहते तू ऊपर जो तू रहिए हुआ बस बपवा तो छोड़ दे एगो घर जो तीन चार के है बा और हो सकेला दू गो है भाई बहन है वनसन एगो घर बा या गो फ्लैट बा ये बता हम हई सिमुआ यहाँ लेब हाउ बोली नहीं हम हई मजे हई जो जहाँ आगे हई गिरी वो हम लेब तो देख ले कौन समस्या कौन प्रॉब्लम होला पताज माँ बाप छोड़ दिले बाहियाँ मैं देख लैका का करता बेटा लोग बेटी लोग का करता एगो बड़का है झगड़ा और हियाँ अब एगो चीज है जैसे हमने बोल सा जमीन के स्वाजगी करे के जाने ना कितना क्यों बोला जो आगे जमीन वहाँ वो चाहे ला एगो बड़का के दे के कहाँ बा लिखल है ओके दे के और दूसरा हियाँ का होता एगो जमीन वहाँ तक बहनिया के बोली तू पाछे रहिए अब ओके एगो बोली के पाछे रही तो ओके सीमा वो शब्द के देखब सर सीमा के प्रॉब्लम का तब हियाँ नहीं सकी ओके पताश करे अब हो जाए सब चीज कोनो तो बोली देख हमके मन नहीं बा पताश करे के जो माँ बाप छोड़ के कल बा आले तो के तो उतना बड़ा नहीं मिलल बा अच्छा हमार परवा जो मिले के चाहें हम तुर से बिद देवत हैं कोनो तो भाई बहन बड़ी अच्छा बा बोली अरे हम के
1: तब बहन के बहन के आज शादी हो गल बा बहन कहीं और रहता त मान ला अजे 10 पैसा

0: माटी बा और ओकर में भाई के घर बा तो जोन प्लास्ट में वो मटिया कोई और से बेची भईवे से बेच दई।
1: हां ये भी होवेला। हां नहीं कोनो जालू भईवा कोनो भी बा हमने के बोली ला स एगो आकोगिते गिर जाऊ जमीन में का करबा बेच बोले नहीं हम हमके मन बार जमीनवा रखे के वो रखबे नहीं वो रखे को जाता बेचे नहीं को जाता अपन भईवा से और भईवो के भईवा बोले हो कि जोन वालियर के बा फिक्र नहीं करिए तू हम तो के देव अब के मन है नहीं बा को से बस कि यहाँ साइड ओढ़ के होलाशों जोन दोनों के बा यहाँ ठीक नहीं बा भाई बहन में तो जनबे कर कभी लड़ाई होवेला तो यहाँ अब के मन नहीं बा दे के ओकर है बहनिया के ओकर से नहीं बेचिए बोली हम दूसर से बेच दे दूसरा चीज है देखो पताश के माँ बाप छोड़ के चल गल बा जमीन खाली माँ बाप के नाम में बा हिया तो पताश कर ले नहीं बा मैं अब हिया पताश करे के खोजता मैं जगीचिए ज्यादा बा से बोसो चार गो जगीचिए बा यहाँ पाँचे पैस है बा जमीन तो कैसे चार गो जगीचिए के है पाँच पैस सकल दाई माटी
0: एक बार में बताओ सच्चे के ई बहुत एतरेसन बा अब जे एगो घर पाँच पैस पलाते में एगो छोटा कुन घर बा और जगीचिए मांडा छः सात गो बा तो कैसे पता से
1: अरे एगो फोगा मानव से स्पेशल में भी अभी बोल देगा तोरा जब ऐसा एगो एजवीज हुएला मतलब नहीं सकल दाई पताज करी नहीं नहीं अभी एक एगो चीज बोल कब ऊ नहीं हो तक मजे हिया तो सकी ए गोवा जे गिछिया बोले देख पताज नहीं सकल दाई होई अरे जे पताज नहीं सकल दाई तो के नहीं सकल दाई कोथरा बने चल समनी ला बार में डालब स लिसिटेशन एक रे नाम लिसिटेशन मस्त के आगे हुआ बेचब सब पब्लिक में जोन पैसवा मिली हुआ से और पताजे करब से पैसवा जमीन तो बेचा जाए बस के खाली थोड़ा जाए कि जी जी के देखे कि चला कैसे मस्त है कोर्ट में चहला कुमा जदमी पूछे करेला लबार में जाला तो हुआ लबार में ऐसा हुएला मैं कोनो से पूछो एजवीस हुई सखी बोली देख अरे तो हमारे भैयो है असी हमारे बहने है हमार परवा ले ले तू फिक्र नहीं करे कादू तुके कुछ नहीं बा पिए करे के तो ई भी हुएला कबू की पताज या आके सीए कर दे ओके कुमा जे ऐसने में बोले हम पछतावा तो हियाँ देखब जितना कुमा जे आकोते सकियन संगी रे ऊ पतसवा में तो हियाँ सकल लाई पताज करे मिसेल में जे जेगी छे ज्यादा होई माटी कम होई तो एजिविजियों में जे रब रहे लंसन तो कभी देखब तीन कार में जाए के चाहला लबार में हुआ बेचे के और जैसे हियाँ एगो ये सिर्फ नहीं होला कभी देखब एगो मिशे शादी कर लेबा अरे शादी कर ले बा मिसल में कोई दूसरे को मैथ्रिस बा अब मैथ्रिस वहाँ से कोई दूसरे लड़का हो गल बा तो देख ला अब ओहू लड़कुआ जो ने होल बा
0: ओकर नाम पर बा
1: हाँ ओकर नाम में बा तो ओकर तजिगिची हुई बे करी और होके नहीं सकबा कुमा जो के हई भैया लोग तो बुझे मुझे हमेशा जानत रही सर हमने चारे गो ही सर अरे देख बाप का कर ले बा कब कुमा जी जैन रहल अब हुए को कुमेकास करके आज देखते एगो दूसर भाई हमने के मिल गल तो ओकरो तो मिलबे करी कब देसी कर ले अन मन मिली ओकरो जैसे ही लोग चारों के मिला था बस कि एक गाल एक जिगी ची हमेशा एक गालीते हैं तो एक बार नहीं बोली छोकड़ी वो छोकड़ा है नहीं कानून ऐसे नहीं देखे ला सबके मेले के चाहला बराबर तो हियाँ देख लो अब का हुआ था एक बांस सिख शिष्यों जो माँ बाप एक नाम है कब मर गए लन सन पताजे नहीं कर लन तो कर लड़का लोग सिख सीधे करेला वो लोग के मिलेला वो है जमीन हुआ एक बांध देखब हियाँ बा है माटी जो माँ बाप नहीं सके पताजे कर ले अनमन छूट गल बा ऐसने अरे ओके हियाँ छोड़ दे रसा पाफे नहीं है मैं एक बार का करेला भाई बहन बोले जाने ले हमने के माँ बाप छोड़ दे ले भाई में है माटी जाए के गाड़ी भी चल हमने नोतेर के आगे नोतेर के आगे हियाँ बोलन सन सब दाखो होन सन सब पापिए मियाँ तो पहला नहीं देवा था हो नहीं दे पापी लाग देने सांस नहीं दे बाप माँ के अफिदाविद शिक्षे शो नहीं दे कुछ नहीं दे अब न कहते दाँ चीते नहीं दे कॉपी का मेम बस कि नुतेरुआ तब लेक नहीं मिली सब दुखी मवा तो वो कैसे सकी पतजुआ करे तो हियाँ देख ल सब चीज झुइया कुमा जल एन मन लड़ाई हुआ था जहाँ के बरिसन हियाँ कोतरावा छोड़ दे ले वनसन कोई नहीं जाता हुआ पताज करे एक बान है ये बोले नहीं अभी तो छोड़ दे रहे हाँ तो हम नहीं हमारे यहाँ जाने ले हई नहीं बा हम के कुमा जे

0: नहीं बा समझ है ये लेत हमारे यहाँ नहीं बा पैसा भाई ए भाई करे के एगो पताज करे के
1: चला एक साथ एक एक एगो एगो एगो एगो फोन कॉल आल बा कोई बा हमने संगे बात करे खजन हेलो नमस्ते
2: हेलो नमस्ते बहन जी प्रणाम भाई जी के भी प्रणाम थोरो भी प्रणाम करत है
0: भाई
2: जी के बहुत धन्यवाद देवत है हमेशा की तरह धान धकार बा उजाला करेलन जनता के बहुत ज्ञान देवेलन ताकि जो अपना है वो भी छुपावेला लेकिन तू नहीं छुपावेला जो सच्चा बा आगे रख देवेला तो ये बहुत भारी बात है ये बड़ी भारी पुण्य काम कैला ज्ञान बिना जीवन अधूरा बा हम बोला था हमारे सास के माँ बाप के पार बा के ओकर में कई गुजरी छे बा सात गुजरी छे बा तो उमे सब मरगल हो जा इमे जब सब कोई मरगल हो जा तो एगो मौसा सास के ओकर बेटा हाल हमके बोला था जे तोहर मामा के जब मौसी के ओकर सब फिर आप दाबित कर दिले तो हम बोली हाँ सब कर दिले है तो बोली पपेवन दिए हम जब दिमास करे मट्टी के जब तक थोड़ा बोला के हुई पैसा दे के हुई तो हम तोरा बोला हम बोली हाँ दे सब पपेवन दिमास करके दे दिली पपे लाख दे से लाफी दाबित के सब लाफे दे दिली जब वो गल दिमास करे तो हमके एक महीना के बाद आके बोला था जे जाने ले बहुत पौस बातें है कोई लाफी दाबी नहीं कर ले बा जो मौसी के बेटा भी मरल बा वो लोगों भी दाफी दाबी नहीं कर ले बा सब जगह के इतना फामी बा वो लोग नहीं कर ले वहाँ तो बहुत डिफिसिल बातें बहुत पैसा दे पौस बा तो तू हमारा को नी दे देता हमके कहाँ चला जाए कि हम कैसे करब नहीं बोला बोला ना
0: अरे पहला चीज बहन जी चाहे ना देखे के जब एगो पताश हुआ था ऐसे में नई बनल बा सब चीज मतलब कि हियाँ वो के चाहे ना है कि है सब डॉक्यूमेंट मिले के तो जाए कि तब सक बा चाहे ना लाग दे ने सांस कहते दीते अब जे हो होल बा सासूस मरगल हो या होकर है पति भी गुजर गल हो तो मटिया के पहला चाहे ना देखे को और कोतरा हमने का वकील ओला से देखेला से आगाड़ी करे कि सब इसके ओकर बाज जमीन की नहीं बा मतलब कि बा कोतरा की नहीं बा कब कोतरा
2: में बोला कौथावा ओकर एक हमार सास के एक गो भाई रहल तो ओकर ओकर बेटा लोग चार गो बेटा बा तो वो लोग सब कौथोरे का कान कटेलन सा जहाँ रहेला सो एक बीघा बा कनुआ में एक एक बीघा आधा बा तो वो लोग सब करता तब कौथा मंगबा तब बोले ला नहीं बा कौथा कहीं ने होने ने बतियाला तो नहीं देवे लोग नहीं आप सीते बा कुआ परवा दे के
0: हर की प्रॉब्लम के एगो सोल्यूशन बोली के जब तोरा नहीं देवा था ओकर से गैरम मांगे बोले चलो सही पता ताजुज करी है पपीवा देना सिपाही हाँ। तेल ओके मन नहीं बा दे के साथ हाँ। बहन जी तुम्हारा हाँ। जाए के सीजीएम लेता बीओ एंजिस्ट्रेमेंट हुआ सब कोतरा सब बा किसे लेता सिविल में लाग देने सा सब चीज तोहर बाम कब शादी कर ले हो वह सब तो हुआ मिले ला सब पपी हुआ तोहर कहते दाँ चीते लेके जइया हुआ देखी कि कुमाजा काहे आल हुआ जे जो कुमाजा जोड़ल हुआ उ जमीनवा से तो तब हुआ जइबा तोहरा सब डॉक्यूमेंट दे के कोई के सिपाहस नहीं करिय जब कुमाजिया नहीं मिले ला तो हमने तो सूच पूछा दे दे दे कहा हम जाके पैसा दे पौसे करब सब पापी निकाले के चाहे ला शुरू करबा जब ओकर मिल गड़बा कर कोतरा तोहर बड़का आदमी जो के बोल है सास ससुरवा के बगल से तो ओकर कोतवा मिल जाए ओकर लाफी दाबीद मिल जाए जे जे बा कुमा जे लैका लोग के लाग देने से सकबा निकाल जाए सकल जाए पौथा फासिल करे
2: तो भैया तो बोला थोन जा कि वो लोग आपकी दाबी नहीं कर ले मौसा के बेटा लोग मरा मौसा तो नहीं बाते लेकिन जो मरा बा लोग के लाफी दाबी नहीं बोल बा
0: हाँ तो सुनो सबके जेके मिले जमीन जैसे हमने बोली ला सर एगो आल एगो जीवी छे बात जैसे बोल से मर गल वंशन यहाँ कुछ नहीं कर लंसन तो कर लड़का बा न लड़का वा तो जीवी छे बनेला अब के नहीं सकी कि पपियो नहीं दे कुछ वो नहीं करी अब के धन दौलत ओके काल मिली मिसे म एगो के चाहेला शुरू करे के तो का हो एगो छोटा सीमा से चाहे बोल बड़का लंबा करे सीमा जाए में सैंप ओकर लाग देने सांस ओकर सब चीज मांग आली अभी तो प्रॉब्लम हो चला कभी आली एगो लाग देने सांस कैसे मांगब हौ जो अदमिया मर गल बा ओकर लड़का कैसे जनब कौन ओकर लड़का है ओकर लड़कवा के नमुआ जनब तब ना जाके लाग देने सांस निकलब यही से हमने ई प्रोग्रामवा रखल से कौन कौन प्रॉब्लम है जैसे तू एगो बोल एगो बड़ी जोली कहानी राकोते कर दे सब में कैसे एगो प्रॉब्लम एक्चुअल में तू फेस करत हुआ समझ ला
2: ना
0: ऐसा ऐसा काम है तुहरा चाहे ला एगो से मांग के जोन से तू कुमाजिया लीमन हो रिलेशन में हुआ
2: सुना ना भाई जी सब तो इसे बोली है दो तीन जना से बोली है दे के तो वो लोग बोला थोन जा ओकर ओकर गो चार तीन गो भाई मरल बा ओकर पापी नहीं बाते मौसी लोग के लड़का लोग मरल बा ओकरो पापी नहीं बा भैया तनी कॉम्प्लिकेट ना हो गए बातें बोले जितना हाँ

0: कोरेक बा सब जब हो जला तो तोरा पैसा चाहे मजे एगो है के देखे के एगो अफा एगो आवे के तो उनका एगो रिसेस करी रिसेस करी बिगो एनरेजिस्ट्रेमेंट में देखी कहाँ उकर कोंत्रवा रहल आर सिपा एगो अफिडेविट दे सक्सेशन कर ले वंसन कि नहीं कर ले वंसन जे एगोवा में खोगल हो एगो बोलिया के जेगी चेवा तो तब बोल दे कर कर कौन कौन लड़का है सब चीजों कर कहते दां चीते
1: सब डिटाइल
0: मिल जाए मैं सिलमा एगो रिसर्च कर लाई मैं आप वो भी एगो आप वो के देख के माता जी तो ओके बोला तो और कहानियां का कौनते करिए उच उलो के तक मो ही तो साकी जाके सकेला एगो रिसर्च करी कभी बिगो एनरेजिस्ट्रेमेंट भी आदमी रहेला हुआ ओके खाली एगो एगो पैसा देब बोलब ई आदमिया के नमुआ से जाके ओके मजे ओकर पपीवा निकाल उ लोग सब जानेला अब जानेला वो जमाना रहा लीव में सब ई सब रहल अब तो कंप्यूटर में है सब चीज कंप्यूटर में वो लोग जानेला रिसर्च कैसे करी
1: टाइप करब तो सब निकल जाला
0: सब मिल जाए
2: तब भाई जी सुना ना तो अभी एगो मोक्षा के बेटा बता हमर तो सब कुछ बा हम नहीं हम हम देमस नहीं करा भाई सब में नहीं परब सही में का बोलब
0: हां तो कर में कुछ नहीं मिलियो के बस की जमीनवा तो रखल तोहर बड़ा आदमी यहाँ की जैसे बोला
2: तोर
0: नमुआ से आज तक अभी लड़कुआ लोग के मिलल नहीं बा तो वो कैसे पोपीतेर हुई बड़का बड़का बात बोलता अपने से मैं ही कबो के सकी पोपीतेर बने तब नहीं सकी तो वो आदमी ऐसे बोलेला कभी तो एक दूसरा बोली जाने ले हमारे यहाँ पैसा नहीं बा दूसरा बोली हम तो ऐसे ही नहीं बा इसे उनके मन नहीं बात
2: हाँ
0: दूसरा बोली हम नहीं ऐसे बा कभी देख ले वो एगो है पति का बोलेला ओकर पत्नी के बोलेला हम तो माँ बाप के धन के मरत ही नहीं हमके नहीं चाहेला तू
2: जे जब हाँ,
0: बोली जब हम ना के इतना दिन से ये मेरा बोली जो तू दे का करबे हम नहीं कर मैं एगो चीज कर एगो आबुए के देखा एगो रिसर्च करी वो जानी कैसे कैसे तोरा एगो मिलल एगो के मिलल तो एगो लीड मिल जाए दूसर की शकल लाई दिमस करे आई बहन जी
2: हाँ बहुत धन्यवाद भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद
1: बहुत बहुत धन्यवाद चले गो और फोन कॉल वाह ले ले लिया
0: हाँ
1: हेलो नमस्ते हेलो हेलो
3: हेलो
1: हाँ जी नमस्ते नाम बताओ तो और
3: अनीता
1: अनीता जी कहिए
3: मेरे पास स्पीड अप प्रोग्राम आज है ना
1: हाँ जी आप सवाल कर सकते हैं हाँ बता सकते हैं
3: Vous savez dire, moi, moi, j'ai deux enfants, mon monsieur finit mort. Là, moi, j'ai 70 ans, là, c'est moi, nous pas encore faire peur.
0: Partage, n'est-ce pas?
3: Non, pas encore, parce qu'il y a un problème. Il y a juste des enfants n'ont pas d'accord. La cause problème peur, même, là. Il y a un Déo, un arrêt Maurice. Et là, comment dire, depuis quoi, moi, je prends plus beaucoup d'intérêt aux enfants Maurice, là, parce que vous connaissez, les enfants Maurice, la vie, comment un peu difficile, là, pour le moment.
0: Allez, vite, ça.
1: C'est
0: un problème, hein. Mata dit que Dougolaïka, bah, Dougolaïka, ma bah, ego, des, douceur, des, mais bah, ou des soirs, ou là, n'aïe, y'a signé, carré, quoi, j'ai t'as, n'aïe, comment dire, boulé, moi, intéressé, n'aïe, hein. T'as simple, hein. Ok, comme, comment dire, ou l'aïe, que, je n'aïe, bah, ou des soirs, mais, rien, je n'y a ta garoua, mais bah, garoua, qu'il y a un problème, n'aïe, bah, simple, रातेल में डाल दे ओके कि रातेल में डाल दे पहला तो चला एगो अबुआ बोका के देखियो वही तोरा बोली ऐसा एगो चीज कब एगो आदमी इ देशवा में नहीं बा सकी एगो कि रातेल में डाल के ओकर जोन भाग मिली जोन छोकड़वा हुआ नहीं है तेरे से बा थे हिया देख बा गवर्नमेंट के करे कि रातेल में रख दे हुआ जब एक दिन आई तो पोतजवा मिली तोरा खाली चाहे को अपनतेर के देख के अपनतेर के देख के कुआ जो जमीन आधा आधा तो जीवजे कर दे बा जहाँ हई भई वहा भी जोन मॉरिशस में बा ओके ले के बा ओके मिले के बा हाँ ओके दे द हाउ के परुआ रख दर पपुआ खिवा तेल में जैसे मैंने बोला सा रखी ला सा हुआ पतवाजवा तो हो ही बे करी वो खुशी रही नहीं खुशी रही पताज हो जाए आ जोन दिन ओके मन हुई अब खोजे के तो जाके खिवा तेल के पेय करी सब दीपांश जोन होल बा और कितना चीज ओके हई मांग करी तो बोली हिया पेय कर तो अब ओके मिली ओकर कोंतरा न त नहीं है मिली हुए हुए रह जाए सैप सॉल्यूशन ओके बहन जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी और फोन कॉल बा नहीं नहीं अभी नहीं बा चलो कार्यक्रम के आगे ले चलिए
0: ये इते एगो है समस्या जुड़ी जुड़ी है है
1: हां सवाल तो बहुत
0: सवाल बा मैं हमने देख लिया सा अभी तेरे बा बोली ना कभी एगो लड़का नहीं हुएला एगो कुमा जे एगो डीजेम ला लिन के अरे दिजेम लालिन के जब उकर बाप उके देखला रे हो या उकर माँ जहाँ जे गीत गैसे करे जे बपुआ देखला रे करू रहा तो उके मिलबे करी बपुआ बगल से। मैं दिजेम लालिन की बात बोत मऊआ बगल के तो मिलबे करी, तो यहाँ दोनों बगल से मिलबे करी तो ऊ भी देख

0: में जो कोनो भाई बहन जो में जो लिजिचिम होवन सन वो लोग नहीं खुशी बा बोले हमारे बापुआ का कौन कर एगे करलक जाके दूसर लड़का के दे है करल हमारे ओकर लड़कोए है कि नहीं है न देखे ला कैसे काम करलक अब ओके लगी गाड़ी दे अब ओके लगी एक बात बोले जेरी छे कि कुमा जे रोज के कहानी है तो मिसल में ओके मिली जब ओके मिलल तो हिया को अब हम नहीं देखते हैं सर जब देखब ई कुमा जा प्रॉब्लम हुआ समस्या हुआ नहीं तेमिने हुई बड़ी मुश्किल हुई पताज करे के तो चाहे ला एगो केस डाले के लाखू सुप्रीम में ई हमने बोलिया सा पताज आ ला जस्टिस यहाँ देखब मास्टर कोर्ट में हुआ पताज हुए ला तो पताज हुए ला हुआ देखी अरे यहाँ तो देख ली सा कौन कौन कुमा जे केस हुए ला जब प्रॉब्लम हुए ला वन बेचे के एजिविजियों में हुआ अब दूसरा क्वाय करेला भाई बहन ये में कब कुमा जो है एगो प्रॉब्लम समस्या जला कौन तेस्ते करेलन सन वैल्यूएशन ए वैल्यूएशन के ये सुबह दू गो घर बा या दू गो माटी बा एगो भाई बोली है जमीन वाले हम हो बोली नहीं है हम यही ले पसी काहे हो जमीन वाले वाले
1: एक एक चीज के दोनों जना झगड़ा करत हन सा कि ई हम चाहला हमके चाहला उ बेना ने हमके चाहला
0: हां आ दूसरा बोली कि ओकर वालिया ज्यादा बा पसी एक बार अभी हुकुमा जे अरे वो बोली के एगो के बोलबा तू रेजिडेंशियल में लेके तो अरे के बोलबा एग्रीकोल में बोली के कान के माटी हम ले ऐसा ही भी होएला देखबो यहाँ डाको नहीं हुआ सन अब
1: ऐसे से की हुई कि जो रेजिडेंशियल बा वो आधा आधा और जो एग्रीकोल बा वो आधा आधा सकी हुई
0: हाँ जी सकल जाए बांटे तब
1: हाँ
0: तब करे खोई तब जे नहीं सकल जाए बांटे तो होके तब मिला तो कुछ ना कुछ सेलमो के ला डिफरेंस हुआ दे के पैसा के ओकर वाले के समझल ना अब ये तो हो गल बा कभी होला पताज होला पाँच गुजरी चाहिए बा एगो माटी बा अब जीविजे कर लन सन के कहाँ मिली कौन चीज एक मिली तो हिया एगो पताज के प्रोपोजे करब कि एगो भाई वहाँ हिया तू ले ले हाउ बोली हुआ ले ले बोली अंस वो बोली नहीं कोनो एगो होला एगो में बोली नहीं हम नहीं आते कैसे हैं कि हई बुतवा हम कि हम के चाहेला हिये मिले के एक बार आदमी बोले नहीं सीमो हिया मिले के चाहेला कहूँ बोले के नहीं बात सीमा हाँ जी घर बना दिले होई उ जमीनवा में पताज के गाड़ी तो पताज कब हुए ला तो ओके बुतवा मिली हुए जहाँ बनैले बा ये घरवा तो ई देख ला ये कोरे खा अब हम एगो तुहरा एगो बड़का कहानी का कौन थी करब ई में तो जीविचे सीविचे में प्रॉब्लम हुए ला पति पत्नी
1: हाँ
0: शादी कर ले हो अनसन
1: हाँ
0: अब जो पति पत्नी शादी कर ले हो अनसन तो बड़ी तो जोली चीज है ओकर बाप या ओकर माँ बेटुआ के सिपोजो पतिया के एगो जमीन दे दिले रहल हाँ शादी के गाड़ी
1: हाँ पति घर बना
0: हाँ मैम कि कोई बिया से प्रकाशो जी बिया शादी कर ले बा कोनो लेफे नहीं बा एगो डोनेशन है एगो एरिटाज है यही एरिटाज में बताई सा अब एरिटे कर ले बा ओकर माँ बगल से पत्निया के कुछ नहीं मिली अभी लड़का के बन रही बताई सा पत्निया के कुछ नहीं मिली पसकी ए ओकर जिबिया हमने बोला सा प्रोप मतलब उकर माँ बाप के कब जिबिया मिले ला मेम की शादी कर ले बा कोई भी आए पत्निया के नहीं मिली कुछ अनमन
1: पति आज गुजर गल तब पत्नियों के सकी
0: मिले हाँ हाँ अभी हाँ। नहीं गुजर के नहीं जीते
1: वन जीते के बोला थी साहब
0: तो का होल हिया देख बा उकर पत्निया के कुछ नहीं मिली पताज में अब वो तो वहाँ मेरे दे बोल देख ला को निकालते कौन आदमी के देखे एक बार आदमी के देखे लन खुशी के मारे नहीं वो तो बोले अरे बाप वो तो मर जाए हमारे पतिया या हमारे पत्निया हम तो बड़का कप में मिली घर मिली माटी मिली लुत्तु मिली बड़ी ये खुशी से शादी कर ले बा वो तो नहीं शादी कर ले बा मजे प्यार से या मोहब्बत से यहाँ ऐसे करके आदमी कभी शादी हो जाला मैं सिलमा यहाँ भूल जाला कि ओके मा जन भी मैं सिलमा कभी मर गलत मियाँ हाँ तब ओके मिलबे करेला मत है पत्निया के या पत्निया के बस ओकर जेगीचे मत मडम हुए रहेला ना अरे ये कोरे खो गल बा इस समस्या अभियम ई में आवत है पति पत्नी लिमन से बड़ी ढेर दिन से रहलन सन जब पति पत्नी रहलन सन संगे पत्निया तो बड़का काम करे या पतिया बड़का काम करे पैसा तो मिले बोले जाने ले का करते ये घरवा जो नवी बनैले स हाँ हकमा हम बनैले चल आ सुते करी स
1: दोनों वाशो करब स रिताज डालब स
0: हईका
1: बड़ा बनाओ स गीत डालब स
0: अभिया अभिया कोतरीबिये करके घर हुआ या जमीन में खाली रहल घर हुआ अब एगो बनैलन सन दोनों काम करके अब समस्या होल भैया जीवोस होल अब जीवोसवा होल तो ये घर हुआ जो न बा प्यार से बनैलन सन एगो बोले जे मेजो दे गैव मजे मजे बनैले वन सन हिया एगो ड्रीम हाउस के अब यहाँ पता सोता

0: आप देखा कौन कितना प्रॉब्लम होवेला ऐसन में बस हमने कहा ये मैं सब डिवोर्स के कब आवेला देख बात तुम ये बता अब ना पता जुआ खो जाता पति पत्नी तो दोनों संगे काम कर ले वंशन हाँ दोनों तो दिल्ले वंशन हुए में छोटा दिल्ले हुई पैसा बड़ा पैसा दिल्ले होवेला मैं दोनों कॉन्ट्रीब्यूट करके बनाई ले वंशन घर हुआ डिवोर्स हुई तो पता जुआ कैसे हुई अब देखा कौन काका हिया होल बा
1: काका की पति की तो जमीन पहले से रहल
0: नहीं जमीनवा के को मजा कोट नहीं बा घरवा के हिया जोन बनाई ले वंशन दोनों संगे बस की जमीनवा तो घर मादी दे ले रहलो के उ तो उकरे रही मैं हिया तो अब घरवा कुमा जो के बनाई ले बा हुआ दोनों कैसे उ घरवा के कुमा जे पतजवा हुई अब एगो प्रॉब्लम होवेला जब सकी बताई कि कुमा जे कॉन्ट्रीब्यूए कर ले हो वंशन या जोन पतिया नहीं दे को जो कर पत्निया के तो पति पत्निया बताई के जाना ना देख हम काम करते लिए तेल है का मर पिछली बाएँ तेल है तेल जिसको तो हम तो दिले रहिए को पैसा 2 रुपया दे ले हो 4 रुपया दे ले हो मैं दे ले बा पैसा घरवा बनाई के ओकर हक बा उ घरवा में तो यहाँ देख ल पतजवा की विषय आई तो ऐसने होला हाँ अब जाने के चाहला उ कॉन्ट्रीब्यूशन जे कर ले बा कितना ओके कितना मिली बोल देला तू ही तो ओके कितना मिली तो इमें चाहला एगो चार्टेड सर्वेयर लेके चार्टेड सर्वेयर एगो अंपतेर नियर है अंपतेर नहीं है चार्टेड सर्वेयर वो एवैल्यूए करेला एगो घर के ओकर वाले तो सखी बोले ई घरवा में एक मजे ऐतेल के बा ऐतेल ऐतेल बा सुबुजो आके एवैल्यूए करी 2 रुपया के बा तो सब जे हियाँ कानून में बगल में 1-1 रुपया समझ लेना अब एक चार्टेड सर्वेयर लेके चार्टेड सर्वेयर आके बोली हम गईली विजिटे करे उ घरवा घरवा में देख ली सेपा कई गोला सांबा हमार देखे में 2 रुपया के वो बा एगो लेक सांप होता है तो एक रुपया के कुमा जे हियाँ हो तो ऐसे करके
1: खाली घर के बतिया थी सर जमीन के नहीं
0: नहीं नहीं नहीं जमीन वहाँ तो रही जो न मियाँ के मौवा के
1: घरवा के वाले
0: घरवा के वाले तो हियाँ कर पतजवा मिली है के ओके मदमो के या है के जितना कॉन्ट्रीब्यूट कर ले बा ओके ऐसे कैलकुलेट करी कितना लासा मुंबा सब एगो बा एगो सिफूफ डाले ला वही तो कर कम हुए एगो चौटेज से वही है तो हियाँ ओके बस पतजुआ हुई एगो भाव बोली अच्छा का करबे हियाँ ऐसन कौआ में हम तो तुके दिक्कत हैं तुके चाहे 4 रुपया और हियाँ चाह बोले हमारे यहाँ 4 रुपया नहीं बा तुके दे के तो बोले सैप हो हमारे तो पुष में बहुत पैसा बा तो बोले किन ले हमार से तो का करी पतिया या पत्निया बोली हेले पैसा वाले ले जो ओकर के ओकर शेयर के ओकर इन्वेस्टमेंट कर ले बा ओकर वाले के ओकर हक बा तो ओके मिल जाए हूँ ओकर पैसा ई दे दई अब जोड़ी चीज हो जाए ऐसन में मैं अब ओके मन नहीं बाकुमा जे है मन नहीं डाकू बा डाको नहीं बा बोले तू बोलत हुए 4 रुपया के चीज या 2 रुपया हमार देखे में तो 2 रुपया के वो नहीं बा ज्यादा वो बा आर हम तो देखते हैं तुरिया पैसा नहीं बा ना सैफ है ओकरो भी एगो सोल्यूशन बा चल ला बार में घरवा डाल दे सब बेचे के जब हुआ के कोई किन ले तो पैसा तो देवे करी ना वो घरवा के है कितना वो बा तो वो तो भूगा मटियो ले खरी जाए वो क्या एक बगल मैं हियाँ कर घरवा के ओकर वाले जुन बा जब हुआ बेचा जाए सिर्फ जो 4 रुपया के 2 रुपया तो रह भैया 2 रुपया हमारा
1: बहुत बढ़िया अब एगो और एगो सवाल करी से तो बात है जब पति पत्नी शादी कर लन जा जिवोसी हो गए सा दोनों जना मिल के घर किन ले वन सा तो बात है जब जिवोस हो जाला पत्नी अलग हो जाला तो हो जोन लैकवन की माँ लैका बा तो हो जोन घरवा बा ओकर पति आज दूसर शादी कर लेलक तो वो घरवा में ओकर पत्नी के हक रहेला ना लैकवन के घर रहेला
0: एगो जोली चीज पूछ ल एक बात जिवोस में कब होवेला तो अरे तो माँ बपुआ सिबुजो तो दोनों पता से हो गल हुआ सर जीवोस हो गल
1: मान लो पत्नी पैसा दे दिलक पति के बोला घर रख ले हम जात है
0: अरे ई तो हो गल तो हियां तोहर सवाल ह जे पतिया ओकी पे करता उ घरवा और दूसर शादी कर लेबा अब ओके मन नहीं बा जाई के हियां सिबुजो अब ओके बोले ओकर पत्नियों के जो लइको के छोड़ के जाई के लइकवा लोग भी कब जीवोस होवेला तो हियां जीज दिखेला कौन चीज कर ले हुआ तोहर लैका के विषय कैसे हमने दिखेला कभी को जीवो सोला हमने आईला से एगो पोछो दे फामी एगो मजे ए दुआ दे विजिट दुआ दे बेजम और दूसरा चीज बोले ला कि ई में उ घरवा में उ लैकुआ जाके रही बस कि चाहे एगो लैका था उ लैका है कहाँ जाके सीमा में तो नहीं सकी रहे ना, तो ओकर जिजमवा कौ जिजवा देवेला लागौ दिस ऑफ जोन आदमिया के मिलेला उही घरवा में जाके हुआ रही और मांग करता पशु करते ले मुआया नहीं वापे ये करेगी, तो मांग करी तो पतिया नहीं सकी उही

0: रुआ में शादी करके ओकर दूसरा पत्निया आन के रहे के उमे
1: घरवा में लैकुआ के दुआ
0: लैकुआ के दुआ बा आर कभी जीज देवेला एगो कुमा जे जीज म कि पत्नियों से कि घरवा में रहे आ एगो लैका से बुझो 5 बरिस के बा तो मौवा कहाँ जाके कुमा लैकुआ से कि छोड़ दे घर में
1: लैका लोग सोचला 18 साल के हो गल तब
0: नहीं कब जिजवित जी जब हुए ला तक मजे मजे कब हो जालन संसिता जी जिजवित के बाद वो कोई कानून देखेला अपन दिभुए करत हूँ हाँ जे लिखित करत हुई पढ़त हुई तो वो बोलेला कि जो एक लेकुलवा में पेय करे के चला बपुआ के चले को पशुवाली माते पेय करते जाई के मेम क्योंकि जिजवित हो गल बा मैं घर में रहे के लागत के जोन के मिलेला लैकुआ ओकर संगे लगेला आलू तो हिया तक बतिया नहीं सके आने को दूसरे को है पत्नी के और ऊ घरवा में रहे के
1: यानी कि हम जोन घरवा बा ऊ घरवा में दोनों लैका के या तीन गो लैका रही या चार गो लैका रही ऊ घरवा में हम लैकुए लोग के द्वार रहे ला रहे के
0: लैकुआ रही ऊ में ओके जे जासिया तू जिजुआ कब दे दे बेगो जिजमो नहीं सके निकाले और ऊ नहीं सके आने जे प्लास्टर नहीं बा कि कुमा जब पतिया ओकर बपुआ ओ के मन बा वही घरवा में रह के नहीं लाखू हिया दे देवला यही से कभी गो आबू का करे लगो का जीवोश के तो सब जो नुकर प्रैतवा में आबू बा ओ के लिख देवला दुआ दे बेजमो दो है पंशो अलिमते
1: आज मान ले लइकवा जोन बा अपन सुदला अपन मां लगे सास लगे छोड़ सुदला के जैसे लइकवा जोन बा ओ पतिवा जोन बा अपन मां लगे छोड़ ले बा नया शादी करके हौ घरवा में पत्नी के संगे रहता
0: ते ही बताइ ना पत्निया के अनले बार वही में रहे को जाता ओ के तो पहला चीज के निकले के चाहेला भाई पतिए के पत्निया के भूल जा भी ओ के तो दुआ ही नहीं बा मैं पतिया के सोचा तो यारी घरवा ही मार हियाँ तो लाकू दे दे बा दुआ दे विजी दुआ दे बेज में करियो दुआ दे बेज में आके ऊ घरवा में जीज डाल दे ले बा मांग कर ले बा को आबो का या आबुए कि ई घरवा शादी के बाद हम नहीं मांगत हैं सर दुआ दे बेज में कि ओकर हियाँ रही लागत जे के मिले ला ओके मिले दुआ दे बेज में ओके एक मजा के रही ऊ घरवा में तो अब कैसे पतिया ओके दुआ ही तो नहीं बा अब आन के हुआ ओकर पत्निया के आनी या ओही ओके मन बा रहे के नहीं सकी तो देखेला ई एपो उतना तो ई एगो दूसर समस्या पताज में हुएला हियाँ दूसर समस्या मेम की एगिताज में हुएला कब नहीं सोचिया कि कम का शादी कर ले वो अब जीवोश हो गल तो उस दिया था कुमा जय फिनिश हो गल कुमा जय समझ ना वो तो एग्जिस्ट ही नहीं बा तो सब जोन बा दुआ ओब्लिगेशन पति पत्नी में जोन जोन रहल खाई पियाई की फिदेलिटी सिकू असिस्टेंस कुछ नहीं एग्जिस्ट बा बस ये सब तो फिनी हो गल
1: हाँ।
0: अब तो कानून है में पति पत्नी नहीं रिको नहीं तो वेला
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो देख बा हुआ से आके कुमा जे है बपुआ नहीं सकी रहे कानून से यही कब्जाला एगो आबू एगो मिया मांग करेला एगो जीवोस तो के चाला सब ओकर आबू आबू का के बोले कि देख हम के चाला ई हम के चाला ऐतेल ऐतेल ऐतेल जिस तो तब ओकर प्लेटवा में कब द्राफ्टे करेला तो सब लिखेला और आके लाखू में बताई के चाला ओके कि चार गो लैका बा बाप और चारों गो को मजा नहीं काम करेला सन सब मिने बा हम कहाँ लेके लैकवा के जाब लाखपुर बोलिए सैन कौवा में फिक्र नहीं है सुन के पहुँचिया के देसी दे करके बोले लैका हुई घरवा में रहिया निकले के नहीं और पति के नहीं बदवा रहे के अब तो दूसरा के आना था बाप उतार कुमार जो है वो प्रॉब्लम खो जाता निकला ये कैसे कानून जैसे बनल बा जैसे कभी देखभाल लिमन से सब चीज़ जोन बनल बा ठीक हुए से बनल बा के मजा लौकता हूँ के नहीं अच्छा बा जो नदमिया के कोद बा कानून हुआ तो वो अरे से बुझो पतिया के बोले तो के दुआ नहीं बा रहे के तो बोलिए हमर घर हमर जमीन है हाँ तो शादी के बाद तो यहाँ दिखेला जेगीछिए न बा जेगीछी हुआ कहाँ जाए समझ ला ना तो यहाँ तो कर एगो प्रॉब्लम हो जाला अरे अब हम नहीं दिखेला सा पहताज पहताज के कुमा जे एगिताज के चला एगिताज हुई पहताज हुई माँ बाप हुई देई हुई लड़का हुई ओकर माँ बाप से मिली पताज चाहेला बराबर एक किताब तू एगो छोकड़ी हो वो एगो छोकड़ा हो भाई बहन हो कोनो डिफरेंस नहीं हो चाहेला पागे दे के हाँ वो जोनों के दे जम लालीन के बा ई जो ना दुखते बा सकेला को था लेका ही आदुप्ति दिख ले रही से ना जे ओके आदुप्ति कर दे ले बा कर लेका ओकर दुआ अन मन बराबर मिले के एक बार नदी बोले हाँ जे ओके मन होई कम ले के तो ही तो कर दुआ हो समझ ला ना मैं चाहे लामनी के कानून लिखल है चाहे ला हर लू हर कुमा जे जमीन हर बटवारा कब हुएला तो ओके चाहे ला अनमन बराबर दे के तुहरा चार पेस मिली तो हमरो चार पेस मिले के चाहे ला नहीं कि तुहरा कुमा जे दू पेस हमके एक पेस सिपा हमके पाँच पेस नहीं सब की चाहना अनमन बरा बरा के और जे कुमा जे हई हुवेला कोनो तर मी कह

0: रिफ्यूजे करेला ओके मन नहीं बा तो बोले अरे जिस तरह देख ली से ना बेच दे या हमके पैसा दे तो उसे केला एगो शुल्क एगो पैसा ओके मिलेला। अब हमने देखेला सा कभी बहुत सा जमीन बा मेहिया उ लाइकवा एगो मिनेर बा माँ बाप मर गल बा ये भी एगो समस्या है यो भी प्रॉब्लम है वो कैसे अपने नाम में सकी कुमार जी मटिया कोतरा सब बना दे या तो मिनेर बा तो सकेला जब एगो मिनेर रहेला एगो आदमी सकी ओकर है के एगो चितेर नियर रहे ओकर कुमार जी खड़ा हो के बनाए के अरे तू एगो मिनेर है वो हम तोर से जस्ती बड़ा है तू हमके बोला चाचा हम घर कुमार जी है बना दे और एक बार हम मिनेर हो आक्षेपते हो कि हम तोहर कुमार जी खड़ा होकर रिस्पॉन्सिबल पार्टी नियर तैगो हम एगो चितिया बन जाब कब हम चितिया बन जाब हमके उदवा मिल गल बा तोहर सब चीज जोन जोन चीज बा हम ओकी पे करब ने चितिया बोने के ऐसे करे के चाहेला कि कातिल जाए के चाहेला हर माजे जोन सुफे होवेला। अब घर हियाँ तैयार दिक्कत नहीं सब कौन समस्या है पताज में कभी तो देख बा हई पलिवा रुआ में अरे एगो भैया या एगो चचा हो या चचिया जोन के मटिया मिले के बा ओकर कपार दिमाग नहीं बा तो कैसे जाके नुतेर के आगे सीए करी पसी जो आदमी पगला माफ करिए वो तो स्वाजीजन नहीं सकेला सीए कर कुछ तो नहीं समझेला मैं पूछता हूँ यहाँ एगो जेवी छे बा ना
1: तो वो कैसे सकेला कुछ
0: अरे हाँ जब वो एगो माजे है वो सूफे होवेला एगो फैकल्टी मटाल से तो देखब ओके चाहेला एगो चितेक नोमे करे के ओकर एगो दूसरा आदमी के नोमे करे के चाहे और उन आदमिया जो कि नोमे करल जला देखल जलन सन ओकर पलिवरवा में के एगो आदमी सकी खड़ा होई
1: ओकर भाई ने तो करगो बहिन जकर संगे रहेला जे देखेला हाँ,
0: एगो आदमी के खड़ा जैसे ओकर दिसंद आसंद उ लोग स्वाजगे करेला कि कौन आदमी के ई लइकवा के सकी खड़ा होई
1: बिल्कुल तब ऊ जाके सकी
0: ऊ सकी खड़ा हो के ओकर है देखी अभी जैसे हम देख ली सब पहला माताजी टेलीफोने करलक इतराजे बा उ तो दूसर देश में बा तहिया तो समझिए बा पताज करे के तहिया देखबे को चीते चाहेला डाले के कातिल में डाले के
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल तो चला अभी हमने के और एक दुगो देताई ना रगल बा उम्मीद कर रही जाके अगले हफ्ते अजय सकब जा करे नहीं तो कर बाद में सकब सा आप तक हमने के जो कार्यक्रम बा आज की चर्चा यहाँ पे समाप्त होता है। श्रोताओं हम अपने वकील कपिल देव रघुनंदन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सभी श्रोताओं सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। एक और कार्यक्रम के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। अभी के लिए आज्ञा चाहते हैं आज के चर्चा कार्यक्रम की पूरी टीम की तरफ से नमस्ते
0: नमस्ते।

0: मिसाइल हो।
1: शुरू में आसाम से मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार।
2: नौ के दौरान मॉरिशस में 6,78,471 पर्यटक आए, ये पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 1.5% की बढ़ोतरी है। हालांकि

0: जून महीने में पर्यटकों की संख्या जून 2025 की तुलना में 8.4 कम रही है। ये आंकड़े स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस ने कल जारी किए। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था में वृद्धि का सिलसिला जारी, लेकिन इसकी रफ्तार पहले के मुकाबले धीमी पड़ गई है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा 30 जून को जारी ताजा आर्थिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 की पहली तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर 2% रही। कुछ सेक्टरों में अब भी अच्छी प्रगति देखने को मिल रही है, जबकि निर्माण और कपड़ा उद्योग जैसे सेक्टरों में गिरावट दर्ज की गई। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा 7 जुलाई को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार जून में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 111.9 से बढ़कर 112.2 अंक कर दिया गया है, यानी इसमें 0.3% की वृद्धि आई है। राज्यसभा की बैठक आज दोपहर 3 बजे फिर से शुरू होगी। इस दौरान डोमेस्टिक अब्यूज बिल पर बहसें जारी रखी जाएंगी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड पहुंचे हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ वार्ता कर व्यापार, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। न्यूजीलैंड की यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में पहली आधिकारिक यात्रा है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। पाइनवुड गार्डन वुटन में 64 साल के श्री मोदीमुथु हासन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें दासन के नाम से अधिक जानते थे और वे पहले आजसू के DCP रह चुके हैं। उनकी अर्थी आज दिन के 3:15 उन्हीं के मकान पाइनवुड गार्डन वुटन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमोतम घोष की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:15 PM। मोसल मोफिया ने रिविया दे क्रियोल में 76 साल की 76 की हनंता मुदिगादू की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी बहन सीतामा मुनिगादू के मकान मोसल मोफिया ने रिविया दे क्रियोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए परमाणुओं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। मोसलमान MDA सैकॉन्स्टेंट सैंपियामे 74 साल की 74 की द्रौपदी तिलोकी की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम बंधु, लोग उन्हें उमा के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज शाम के 4 बजे उन्हीं के मकान सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकॉन्स्टेंट सैंपिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV. 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 10:04 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में, और समस्त श्रोताओं को हम कहेंगे सादर प्रणाम और आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं। इस समय से लेकर दिन के 11 तक हम आपका साथ देने वाले हैं। कार्यक्रम है भक्ति धारा, और हमेशा की तरह हम भगवान गणेश को पूछते इस कार्यक्रम के ज़रिए। और भगवान गणेश जो है केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, बल्कि हमारी बुद्धि, विवेक, धैर्य और शुभारंभ के देवता हम उन्हें मानते हैं। और किसी भी नए कार्य की शुरुआत जो है उनके उपासना जो है उनकी उपासना हम करते हैं, और वे हमें सिखाते हैं कि सफलता केवल शक्ति से नहीं बल्कि सही सोच, विनम्रता और संयम से मिलती है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे।

0: चलिए श्रोताओ, कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे और अब आपके लाए है शास्त्र नवनीतम। ये कार्यक्रम डॉक्टर आचार्य सुनील जी की प्रस्तुति में सुन पाएंगे।
1: वेद दर्शन पर आधारित कार्यक्रम शास्त्र नवनीतम।

ओम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी श्रोताओं को सादर नमन। आज का विषय है अहंकार, एक बड़ा बाधक तत्व। महाभारत के उद्योग पर्व में महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है, अहंकारो महाशत्रुः स्वाभिमानो दुरात्मनाम तम जित्वा मुच्यते युवसौ नरो बंधनात् सुतारणवत्। अर्थात अहंकार और स्वयं पर अभिमान दुष्टों के बड़े शत्रु होते हैं। जो मनुष्य इसे जीत लेता है वह सागर को पार कर बंधन से मुक्त हो जाता है। आचार्य चाणक्य का कथन है कि अहंकारो न भर्तव्यः सर्वेषामपि देहिनाम्, अहंकारो हतः पुष्टः समूलं च विनश्यति। अर्थात किसी भी व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार में फंसा हुआ व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो अंततः नष्ट हो जाता है। मनुस्मृति में यह उल्लेख है, अहंकार वशात कश्चित् कर्मणाम इह वर्तते अहंकारस्तु दुष्टात्मा यह स वै नरकं व्रजेत्। जो व्यक्ति अहंकार के वश में होकर कर्म करता है वह दुष्ट आत्मा होता है और उसे नरक में जाना पड़ता है। स्वाभिमान और अभिमान में अंतर क्या? स्वाभिमान वह भावना है जो हमारे अंदर अपनी इच्छाओं और योग्यताओं के प्रति एक स्वस्थ और संतुलित दृष्टि उत्पन्न करती है। जब हम अपने आप को मर्यादा में रखते हैं, अपनी मेहनत की कद्र करते हैं, सम्मान करते हैं और खुद को उस तरह से स्वीकार करते हैं, यह हमारी खुद की पहचान हो जाती है और अपनी आत्मा को समझने में देर नहीं लगती। आत्ममूल्यता को समझने का तरीका है कि हमारे आत्मविश्वास को बढ़ावा देना है और अपने निर्णयों और कार्यों में निडर रहना है। अभिमान या अहंकार एक विकार है। अभिमान एक ऐसा अवगुण है जो नकारात्मक सोच और अहंकार से जुड़ा रहता है। यह हमारी भावना को इस तरह से प्रभावित करता है कि हम दूसरों से खुद को श्रेष्ठ मानने लगते हैं। जब हमें लगता है कि हम सभी से बेहतर हैं या हमारे पास कुछ ऐसा है जो दूसरों के पास नहीं, तो यही अभिमान है। अभिमान हमें दूसरों को नीचा दिखाने, उनकी असफलताओं का मजाक उड़ाने और अपनी श्रेष्ठता को साबित करने की प्रवृत्ति की ओर बढ़ाता है। किसी भी विषय तथा क्षेत्र में अभिमान हो जाने पर मनुष्य की प्रगति रुक जाती है और विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। जैसे कि विद्या का अभिमान हो जाने पर विद्या नहीं बढ़ती, वरन वह घट जाती हैं या घटती चली जाती हैं। झूठी प्रशंसा से भी अभिमान को बल मिलता है, तभी मनुष्य विकास का पथ भूल जाता है। एक बार किसी ने न्यूटन से कहा, आपने तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस पर बिना अभिमान प्रकट किए न्यूटन ने कहा, मेरे सामने ज्ञान का अथाह समुद्र फैला पड़ा है जिसके किनारे के कुछ ही कण मैं उठा पाया हूँ। जब मनुष्य अपने आप को सामान्य स्तर पर न समझकर बड़ा और विशेष समझने लगता है, तभी अभिमान का अंकुर फूट निकलता है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ विशाल रूप धारण कर लेता है। झूठी प्रशंसा, उद्दंडता,

और चापलूसी से भी अभिमान बढ़ता है। अविवेकी, अज्ञानी और मोटी बुद्धि के लोग ही अभिमान से ग्रस्त होते देखे जाते हैं। कुछ भी हो, अभिमान वह विष है जो जीवन की हरियाली को रोककर उसे सुखा देती है। अभिमान एक ऐसा विषधारी वाहन है जो अपने तथा दूसरों के जीवन को नरक में ले जाता है। अभिमान की वृद्धि के साथ ही मनुष्य का पतन प्रारंभ हो जाता है और अभिमान की पराकाष्ठा सर्वनाश करके ही छोड़ता है। रावण जब अभिमान से बुरी तरह ग्रस्त हो गया और उसने अमानवीय अमर्यादित कृत्य शुरू कर दिए, तो वह अपने परिवार के साथ विनाश को प्राप्त हुआ। अभिमानी दक्ष प्रजापति ने महादेव, जो कि उनके दामाद भी थे, उनके साथ विरोध ठान लिया। उन्हें अपमानित करने के लिए विशाल यज्ञ रचा और उन्हें तुच्छ समझकर निमंत्रण नहीं भेजा। सती के पिता अपने घर पर थे। सती के पिता के घर में बिना बुलाए चले जाने पर उनका भी घोर अपमान हुआ। सती क्रोध में आकर यज्ञ अग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया। अंततः महादेव ने यज्ञ सहित प्रजापति दक्ष को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तब के अभिमानी ऋषि दुर्वासा ने निर्दोष अम्बरीश को शाप दिया, किंतु उसका मूल्य उन्हें ही चुकाना पड़ा, जिसकी उन्हें स्वप्न में भी संभावना नहीं थी। सिकंदर, हिटलर, मुसोलिनी, नेपोलियन आदि को भी अपने बढ़ते हुए सामर्थ्य के अभिमान में पराभव और पतन का सामना करना पड़ा। अपने संग रूप, सामर्थ्य, शक्ति और कितने भी विशेषताओं का अभिमान मनुष्य के पतन का कारण बन जाता है। अभिमानी व्यक्ति को सदैव अपनी प्रशंसा प्रिय लगती है, उसे अपनी प्रशंसा करने वाले भी प्रिय लगते हैं। ऐसे अभिमानी व्यक्तियों के वातावरण में चापलूस लोगों का गिरोह इकट्ठा हो जाता है। अभिमानी व्यक्ति को अपने सामने दूसरे प्रगतिशील, उन्नति करने वाले, बढ़ने वाले व्यक्ति तनिक भी अच्छे नहीं लगते। ऐसा व्यक्ति नहीं चाहता कि कोई और भी दुनिया में ऊंचा उठे। अपनी ही उन्नति और संतुष्टि में ही उसे आनंद आता है और अकारण ही वह प्रगतिशील तत्वों से ईर्ष्या, द्वेष रखकर उन्हें हानि पहुंचाने का षड्यंत्र रचता है तथा दूसरों को दुख पहुंचाता रहता है। अहंकार एक ऐसा अवगुण है जिससे अपना आत्मिक स्तर गिरता है, परंतु स्वाभिमान अहंकार से बिल्कुल उल्टी है। स्वाभिमान एक गुण है। आत्मा की शक्ति और मन की पवित्रता पर विश्वास करना तथा कोई ऐसा काम न करना जिससे अपनी या किसी अन्य की दृष्टि में यह मूल्य घटता हो, ऐसा करना स्वाभिमान कहलाता है। बिना भय तथा प्रलोभन के कष्ट सहते हुए भी अपने श्रेष्ठ कर्म में संतोष एवं गौरव अनुभव करना स्वाभिमान कहलाता है। स्वाभिमान की रक्षा की जाती है। अहंकार के वश में होना एक दोष है। विनम्रता से अहंकार का नाश होता है। अपने दोष दुर्गुणों को दूर करना और श्रेष्ठ व्यवहार करना मानवीय कर्तव्य है। आत्मसुधार की पहली आवश्यकता है अपने दोषों एवं भूलों को स्वीकार करना। यह तभी संभव है जब मनुष्य के अंदर विनम्रता हो। अभिमानी व्यक्ति अपने दोषों को कभी स्वीकार नहीं करता। नम्रता मनुष्य को उसकी सही स्थिति का बोध कराती है। अपनी स्थिति का बोध, अपने दोषों की स्वीकृति मनुष्य को आत्मसुधार के लिए पर्याप्त सामर्थ्य प्रदान करती है। बुरे विचारों की कीचड़ में फंसा हुआ व्यक्ति अपना प्रभाव खो देता है। कुविचार और कुकर्म मनुष्य को सदैव अधोगामी बनाते हैं। मानव जीवन की सार्थकता के लिए पवित्र मन,

निर्मल विचार और पवित्र कर्म अनिवार्य है। सतोगुणी विचारों से प्रेरित मनुष्य का खान पान, रहन सहन, वेशभूषा और बोलने की शैली भी पवित्र होती है। अतएव जब कोई व्यक्ति अहंकारी हो जाता है तो वह

0: काल समुद्र के किनारे केवल कंकड़ बटोर रहे हैं। यह दृष्टांत हमें सिखाता है कि विनम्रता ही निरंतर विकास की कुंजी है। न्यूटन ने ज्ञान को एक विशाल समुद्र के रूप में वर्णित किया, जिसमें वे स्वयं को केवल किनारे पर कुछ कण खोजने वाले व्यक्ति के रूप में देखते थे। सत्यार प्रकाश के दूसरे समुल्लास में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि अभिमानम श्रियम हन्ति, अर्थात अभिमान श्री का नाश करता है। अभिमानी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और शोभा नष्ट हो जाती है। श्री का नाश करने वाला अभिमान रूपी शत्रु मनुष्य को दुखी और दरिद्र बना देता है। अभिमान मनुष्य की बुद्धि और विवेक को हर लेता है। आज के लिए इतना ही। अब हमें अनुमति दीजिए। ओम शांति शांति शांति।
1: अभी आप सुन रहे थे वेद दर्शन पर आधारित कार्यक्रम शास्त्र नवनीतम, प्रस्तुत करता डॉक्टर आचार्य सुनील।

चलिए श्रोताओं, 10:23 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। हम चला रहे हैं भक्ति धारा कार्यक्रम जन भक्ति गीत आपकी सेवा में। आज है शुक्रवार और आज का दिन हम समर्पित करते हैं माँ दुर्गा को। और आपको पता है, जब भी जीवन में कोई बाधा आए, श्रद्धा और विश्वास के साथ हम माँ दुर्गा का स्मरण जो है हम करते हैं। उनकी कृपा जो है हमें सही मार्ग चुनने का, मन को शांत रखने और हर चुनौती का सामना साहस के साथ करने की शक्ति हमें प्राप्त होती है। तो चलिए आपके लिए चरण प्यारे प्यारे भक्तिगान जो है इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे।

श्रोताओं, माँ दुर्गा के अनेक रूप यह संदेश देते हैं कि स्त्री शक्ति केवल कोमलता ही नहीं बल्कि अदम्य साहस और अटूट संकल्प का प्रतीक भी है। उनके हाथों में शस्त्र यह दर्शाते हैं कि अधर्म, अन्याय और नकारात्मकता का अंत करने के लिए शक्ति का सही उपयोग आवश्यक है। उनका सिंह पर सवार होना निर्भयता और विजय का प्रतीक है।

श्रोताओं, माँ दुर्गा की कृपा से जीवन में भय दूर होता है, मन में शांति आती है और कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की शक्ति हमें प्राप्त होती है। और जो भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं, उन्हें आत्मबल, सफलता और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस समय हम प्रसारित कर रहे हैं भक्ति धारा कार्यक्रम चैन भक्ति गीत आपकी सेवा में। और आज का जो दिन है बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। आज का दिन हम माँ दुर्गा को पूजते हैं और साथ ही साथ आज का दिन हम माँ संतोषी को भी पूजते हैं। तो बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ, विधि विधान के साथ हम माँ संतोषी की पूजा अर्चना करते हुए उनका जो है व्रत भी धारण करते हैं। तो चलिए, इस कार्यक्रम में आपके लाए हैं एक बहुत ही प्यारा सा भक्ति गान माँ संतोषी पर आधारित।

श्रोताओं, माँ संतोषी हमें जीवन का सबसे अनमोल संदेश देती है, वो है संतोष। जिस मन में संतोष होता है वहाँ शांति, प्रेम और सुख अपने आप आ जाते हैं। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन संतोष हमें हर परिस्थिति में मुस्कुराना सिखाता है। तो चलिए इस सीख को आप अपने जीवन में ज़रूर उतारें।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: जो आगे श्रोताओं, माँ संतोषी से प्रार्थना करें कि वे हमारे मन से लोभ, क्रोध और असंतोष को दूर करें तथा हमें ऐसा हृदय दे जो हर पल ईश्वर का आभार माने और हर परिस्थिति में संतोष का प्रकाश फैलाए। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम का समापन जो है हम करने वाले हैं एक आरती के साथ। आप लोगों का साथ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे कुछ ही घड़ी में 11 बजने वाले हैं और आप समाचार सुन सकेंगे। समाचारों के उस पार जो है आप उर्दू कार्यक्रम सुन पाएंगे। और हम आपको इशारा कर दें कि 2:30 बजे हमारी मुलाकात फिर से हो रही है इसी चैनल पे। हम लेकर आएंगे आपकी पसंद कार्यक्रम। तो आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिवस।

0: नमस्कार
1: नमस्कार 11 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। मॉरिशस में पर्यटकों की संख्या में इस वर्ष अब तक हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, हालांकि जून महीने में आगमन में गिरावट देखने को मिली है। जनवरी से जून 2026 के दौरान मॉरिशस में 6,78,771 पर्यटक आए। ये पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 1.5% की बढ़ोतरी है। ये आंकड़े स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस ने जारी किए हैं। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था में वृद्धि का सिलसिला जारी, लेकिन इसकी रफ्तार पहले के मुकाबले धीमी पड़ गई है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा 30 जून को जारी ताज़ा आर्थिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 की पहली तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर 2% रही। पिछले वर्ष की समान अवधि में ये 3.4% थी। कुछ सेक्टरों में अब भी अच्छी प्रगति देखने को मिल रही है। राष्ट्रसभा की बैठक आज दोपहर 3 बजे फिर से शुरू होगी। इस दौरान डोमेस्टिक अप्यूस बिल पर बहसें जारी रखी जाएंगी। मॉरिशस पुलिस के पूर्व डिप्टी कमिश्नर पुलिस मोदी मुतुगासन का कल 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत स्पेशल मोबाइल फोर्स से की थी। बाद में वे पूर्व राष्ट्रपति कसमुद्दीन के सैन्य सहायक भी रहे। उन्होंने सेंट्रल डिवीजन का नेतृत्व किया और अपने

0: कैरियर का समापन एंटी ड्रग एंड स्मगलिंग यूनिट यानी आजसू के प्रमुख के रूप में किया। उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर 3 बजे किया जाएगा। 2018 में फोंजीसाक में पिता और बेटी की हत्या के चर्चित मामले में कानूनी प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट को पहले यह तय करना होगा कि डीपीपी को उमेश कुमार बाबूलाल के बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने का अधिकार है या नहीं। इसके बाद ही मामले की आगे सुनवाई होगी। 8 जुलाई को चीफ जस्टिस बीबी रेहाना मंगली गुलबुल और 2 अन्य जजों ने इस मुद्दे पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड पहुंचे हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ वार्ता कर रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। न्यूजीलैंड की यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में पहली आधिकारिक यात्रा है। हाल ही में हुए मुक्त व्यापार समझौते के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, समुद्री सुरक्षा, शिक्षा और पर्यटन जैसे सेक्टरों में सहयोग को नई गति मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। क्रिमेशन रोड घोषणुआ में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड की अभिमन्यु इमानती की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके दामाद अनिल कपूर पादयाची के मकान घोषणुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। कोंकाहोल केन्या में 64 साल की 64 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मांती नायकू की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम सिपोसाट, लोग उन्हें नंदा के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 12 बजे उन्हीं के मकान केन्या से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट नून। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: शम्मे फरोजा।

आउज़ु बिल्लाही मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

गुम्बदे कज़रा के दामन की हवा मांगी है। गुम्बदे कज़रा के दामन की हवा मांगी है। हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। इसी नेक तमन्ना के साथ शुरुआत करते हैं मौज़े सामईन। उम्मीद है आप फ़ज़ल खुदा खैर आफियत से होंगे। इस वक्त आप समाअत फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम्मे फ़िरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ।

0: जुम्मे का मुबारक दिन है आप तमाम सुनने वालों को। हमारी जानिब से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको ऐसे हज़ारों जुम्मे नसीब फरमाए। जुम्मे का दिन है या अल्लाह, आज के दिन जितने भी हाथ तेरी बारगाह में उठे हैं, सबकी दुआएं, इल्तिजाएं और हाजात कबूल फरमा, आमीन। मौज़ सामीन, हर जुम्मे की तरह आगाज़ करते हैं सूरह अलकहफ की तिलावत से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।

सदक़ल्लाहु लज़ीम। अभी आप समाअत फरमा रहे थे सूरह अल-कहफ़ की तिलावत। ए पाक परवरदिगार, हमें हर जुम्मे को सूरह अल-कहफ़ की तिलावत की तौफीक अता फरमा, आमीन। अल्लाह ताला के सुपुर्द करना सीखें, हर चीज़ हर मसले को अल्लाह से दिल की बातें करना सीखें। जब चाहे नमाज पर बैठें तो अपने भारी दिल को हल्का करके उठें, पूरी तरह अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो के हर तकलीफ़ और परेशानी उसे बता कर उठें। जो कुछ हो रहा है वो भी उसकी रज़ा, जो कुछ होगा वो भी उसकी रज़ा, बस अल्लाह पर कामिल यकीन रखें कि वो बेहतरीन करेगा।

मौजूद सामेईन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:34 हो चुके हैं। जुम्मे का मुबारक दिन है, जुलाई की 10 तारीख है और इस्लामी साल के पहले महीने मुहर्रमुल हराम की आज 24 तारीख है। आप अपने पैगामात हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेजेस के ज़रिए भेज सकते हैं, 5251-7005। जी हाँ, 5251-7005 के ज़रिए आप अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं। आइए समाअत फरमाइए चंद ऐलानात। जुम्मा 10 जुलाई, जी हाँ आज जुम्मा 10 जुलाई, बाद नमाज इशा, बाद नमाज इशा कास्टेलिना हॉल कोचिमलिटिया मॉरिशस में मोहतरम मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी की सरपरस्ती में दावत इस्लामी की जानिब से बड़े इज्तमा का अहतमाम किया जा रहा है। ख्वातीन के लिए भी ख़ास इंतज़ाम किया गया है।

नमाज़े असर की फजीलत, जिसकी नमाज़े असर छूट गई गोया उसका घर और माल सब लूट गया। जिसने ठंडे वक्त की दो नमाज़ें वक्त पर पढ़ी यानी फज्र और असर, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। सब नमाज़ों की हिफाजत करो और खुसूसन दरमियानी नमाज की। जिसने असर की नमाज़ छोड़ दी उसका नेक अमल ज़ाया हो गया। बहावाला सही बुखारी शरीफ।

मौजूद सामईन, आइए समात फरमाइए एक और ऐलान। पीर 13 जुलाई, जी हाँ पीर 13 जुलाई सुबह 10 बजे इस्लामिक कल्चरल सेंटर हॉल पोर्ट्रिस में इस्लामिक कल्चरल सेंटर की जानिब से महफिल नात का अहतमाम किया जा रहा है। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है। इसके अलावा आइए बढ़ते हैं आपके पैगामात की तरफ। बंधु और कुमाली फैमिलीज़ त्रियोले से तमाम बहन भाइयों को जुम्मे की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और तमाम मरहूमीन के लिए दुआए मगफिरत की गुजारिश कर रहे हैं। इसके अलावा न्यूकोफ से फातिमा जुम्मे की मुबारकबाद पेश कर रही हैं और तमाम मरीज़ों के लिए गुजारिश कर रही हैं कि अल्लाह पाक तमाम मरीज़ों को शिफाए कामला अता फरमाए। और उनका कहना है कि या रब्बना कलाम उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा फिनिक्स से नाजिया, जी हाँ फिनिक्स से नाजिया एक

कलाम और दुआ की फरमाइश कर रही हैं अपनी बहन ज़ेबा और अपने भाई सऊद के लिए, इसके अलावा उनकी बहन, भांजी, भतीजी, भाई और जो राम फैमिली भी दुआएं भेज रहे हैं ज़ेबा और सऊद के लिए। ये थे चंद पैगामात।

मौजूद सामेईन, हमें चंद और पैगाम मौसूल हुए हैं जिन्हें हम आप तक पहुंचाते हैं। रशीदा आजम जो कि इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं, हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। और नुशरीन, जी हाँ, नुशरीन नानी ताहिरा खुदादीन जो कि काफ़ी बीमार हैं, उनके लिए इन दुआ शिफा की गुजारिश कर रही हैं। ए परवरदिगार ताहिरा को उस सेहत जमील अता फरमा, आमीन। इसके अलावा वजीदा और नासिर नुवेदु दे कुवैत से जुम्मे की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और अपनी वालदा जो कि पोर्ट लुइस में रहती हैं उन्हें ख़ास तौर पर ढेर सारी दुआएं और प्यार भेज रहे हैं और जुम्मे की मुबारकबाद भी दे रहे हैं। इसी के साथ थोड़ी सी देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। ऐ पाक परवरदिगार, हमारी मौत ऐसी हो कि सर सजदे में हो और जान निकल जाए, जुम्मे का दिन हो, मक्के मदीने का शहर हो, कफन जमजम से तर हो, कब्र जन्नतुल बकी में हो, जब दफनाने जाएं तो कब्र फूलों से भरी हो, हमारी कब्र में जन्नत की रोशनी हो। या अल्लाह, तू हमें ऐसा बना दे कि हमारी दुआ में, हमारे हक़ में हमारी सारी दुआएं कबूल हों, आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामेईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

महके छे मस्तानी, तू वाली फूलदानी, ब्यूटीफुल लागे जिंदगानी, तारी हाजरी मात्र थी।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: आपकी पसंद।
2: चलिए श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 2:30 बज चुके हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपके लिए आए हैं आपका ये मनपसंद प्रोग्राम आपकी पसंद। तो चलिए एक बार फिर से हमारी मुलाकात हो रही है रेडियो मॉरिशस पे, मीडियम वेव 19 किलोहर्ट्ज़ पे हमारा प्रसारण हो रहा है। एक बार फिर से हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। तो चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम 4:08:05 पे आप हमें फ़ोन कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके दिलचस्पी के लिए। और हमारा व्हाट्सअप नंबर 5251705। तो चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रही है, और ये प्यारा सा गीत जो है, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो चलिए प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के नाम हम करेंगे।

0: आपकी पसंद।
1: चलिए छोटा हुआ आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे और अगले गाने की ओर हम बढ़ने वाले हैं। हमारे साथ काफ़ी लोग जो हैं और जुड़े हुए हैं, तो चलिए अगले गाने की ओर। और हमारे साथ इस समय विश्वानी डुमन जी है। विश्वानी डुमन जो है वाकवा की रहने वाली है। और चलिए विश्वानी जी, हमारे साथ निभाने के लिए धन्यवाद। आपके व्हाट्सअप मैसेज के लिए भी धन्यवाद। तो चलिए एक प्यारा सा गीत आपके नाम हम करने वाले हैं। फिल्म का नाम बहुत ही पॉपुलर है और ये अगला गीत जो है जाने वाला है इन सभी श्रोताओं के लिए जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए। ये प्यारा सा गीत जो है जाने वाला है हमारे साथ इस समय आपकी बहनें हैं, इंदिरा शारदा, साथ में हैं आपकी सहेली और नीला, प्रतिभा, शोभा है, गीता गजाधर है। तो इन सभी लोगों के नाम जो है ये अगला गीत। साथ में हैं राधा जी, पिछवेरे सैंपिया की रहने वाली हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो इन सभी लोगों के नाम जो है ये अगला गीत हम चलाने वाले हैं। और प्यारा सा गीत ये वादा रहा फिल्म से लिया गया और ये गीत जो है इन सभी लोगों के लिए हम चला रहे हैं जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये गीत जाने वाला है गांगोप की सुनीता जी। सुनीता जी जो है हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो ये प्यारा सा गीत जो है उनके नाम भी हम करने वाले हैं। तो चलिए श्रोताओ, बहुत ही खूबसूरत सा गीत हम शामिल कर रहे हैं फिल्म ये वादा रहा से लिया गया। मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद रेडियो मॉरिशस पे इस समय से लेकर शाम के 4 बजे तक ये कार्यक्रम जो है हम चलाने वाले हैं। और 3 बज आपके लिए जो है सुपहर के 3 बजे आप समाचार जो है सुन पाएंगे। तो चलिए हम गाने की ओर बढ़ेंगे।
2: ये है रेडियो मॉरिशस।

और इसी गीत पे हम नाम जोड़ेंगे, आप है केश जी कथुबोन की रहने वाली, और ये प्यारा सा गीत आपकी दो बेटियों के लिए, नेहा नितिशा है आपकी दामाद है, एल्विन आपके सभी बच्चों के लिए भी, तो ये गीत आपके पति अनंत जी के लिए भी।

तो चलिए श्रोताओं, हमारी मुलाकात हो रही है आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे। अगला गीत जाने वाला है विद्या जी के लिए, यूनियन पार्क की रहने वाली। ये गीत जो है उनके सभी परिवारों के लिए साथ में ये गीत जाने वाला है हमारे साथ इस समय। आफेज जी है लावेनिया की रहने वाली, तो ये गीत उनके नाम जो कि सैंपिया की रहने वाली है। आफेज जी उनके सभी परिवारों के लिए, और साथ में है बसंती जी। बसंती जी है बबासा की रहने वाली। ये अगला गीत उनके समस्त परिवारों के लिए। तो चलिए हम गीत की ओर बढ़ेंगे। साथ में है लीला जी। लीला जी हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है, तो ये गीत बादशाह के रहने वाले उनके सभी परिवारों के लिए। काशी परिवार है, लोचन परिवार भी है।

चलिए प्यारी सी गजल लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे। तो चलिए खूबसूरत गीतों का ये कार्रवाई से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रफ़ीक दौलत जी है और आप लनमायों के रहने वाले हैं। अगला गीत पत्थर के सनम फिल्म से लिया गया और ये प्यारा सा गीत जो है जाएगा आपके समस्त परिवारों के लिए। साथ में है नूरजहां। तो चलिए श्रोताओं कुछ ही घड़ी में सपहर के 3 बजने वाले हैं और आप समाचार सुन सकेंगे। समाचारों के उस पार आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे इसी चैनल पे।

0: Tech, 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। राष्ट्रीय सभा के कार्य कुछ ही मिनटों में यानी दोपहर 3 बजे से जारी रखे जाएंगे। आज प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन एक बार फिर पेंशन प्रणाली में सुधार पर आधारित होगा। इस दस्तावेज के परीक्षण के लिए जिम्मेदार पेशेवरों के आयोग पर विपक्ष नेता जुलेजोंगा प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से सवाल पूछेंगे। वे जानना चाहते हैं कि इस आयोग के गठन के लिए सदस्यों के चयन को लेकर कौन सी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। आज रात 11 बजे स्पेन खेलेगा मैच बेल्जियम के खिलाफ। फीफा वर्ल्ड कप के इस क्वार्टर फाइनल्स के मैच का प्रसारण एमबीसी 11 पर किया जाएगा। इसके पहले रात 9:30 बजे से एमबीसी की ओर से स्पोर्ट्स विभाग द्वारा एक खास कार्यक्रम पेश किया जाएगा। देखना न भूलिए रात 9:30 बजे से एमबीसी के 11th चैनल पर। और फीफा वर्ल्ड कप के लिए कल रात 12 बजे क्वार्टर फाइनल्स का पहला मैच खेला गया। फ्रांस और मोरक्को के बीच स्कोर रहा 2-0। इसी के साथ फ्रांस क्वालिफाई हो गया है सेमीफाइनल्स के लिए। अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करने वाली मोरक्को की टीम की आशाएं भले ही खत्म हो गईं, लेकिन विश्व कप में उसका सफर सराहनीय रहा। विदेशी स्तर पर चीन के दक्षिण पूर्वी शहर जिनजियांग में जूतों की फैक्ट्री में भीषण आग लगी। इस हादसे में कम से कम 28 लोग मारे गए, दर्जनों घायल हुए, कई लोग इमारत की छत पर फंसे रह गए। ये इलाका चीन का शू कैपिटल कहलाता है, जहां दुनिया भर में बेचे जाने वाले 20% स्पोर्ट्स शूज बनाए जाते हैं। जिस वक्त आग लगी करीब 240 लोग काम कर रहे थे। अभी तक आग के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि इस हादसे के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चलाई जाएगी। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। मोसिलमा एमडीए सियाकोंस्टांस सेंट पियर में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती द्रौपदी तिलुकी, श्रीमती द्रौपदी तिलुकी पैदाशी नाम बंधु और जो उमा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4 बजे उनके मकान मोसिलमा एमडीए सियाकोंस्टांस सेंट पियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:04 PM। काली लेन बॉम्बू में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री धनीलाल पुराहू जो ज्ञान के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 12:30 बजे उनके मकान काली लेन बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन बॉम्बू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 8:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
3: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस, रेडियो मॉरिशस।
4: चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और

0: और आप इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोपहर के 3:03 हुए हैं।
1: आपकी पसंद,
0: चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सुदेवी जी है वाकवा की रहने वाली, हमारे साथ जुड़ी हुई है। और साथ में है कुनल और मनीषा, ये ट्विंस हैं, तो उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं समस्त परिवारों की तरफ से। ढेर सारा प्यार आशीर्वाद है मामा इंदिरा की तरफ से। बहन है अंजू, साथ है बहनोय विजयन, निसिस है वंश, वैभव, तिया, जिया, वरुण, वीर, तिमल, वर्षा, निया, सुनीता, समस्त राम रतन परिवार है, रामगुलाम परिवार है, कुआगो परिवार है, मल्लू परिवार है, निश्चय परिवार है। तो इन सभी लोगों की तरफ से, सभी परिवारों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं जो है कुनल और मनीषा के नाम। तो चलिए, बहुत ही बढ़िया सा नजाना जो है फॉर्मलिज्म से लिया गया इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं। तो चलिए, MBC की पूरी टीम की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी ढेर सारा प्यार और ढेर सारी शुभकामनाएँ इन दोनों को।

चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम की अगली भेंट में मुकेश का गाया हुआ गीत आप के नाम हम करेंगे और फरमाइश जो है करने वाले हैं हमारे साथ इस समय कुलेन जी है नुवेल फ्रांस के रहने वाले। तो चलिए उनका ये मनपसंद गीत फिल्म जागते रहो से लिया गया आप सभी सुनने वालों के लिए।

चलिए श्रोताओ, हमारे साथ इस समय अनिता जी है, त्रियोले की रहने वाली, त्रियोले थ्वा बुच्ची की रहने वाली। वैसे पूजा का जन्मदिन है, तो ढेर सारे शुभकामनाएं सासू माँ की तरफ से। साथ में है पति सचिन, वेद है, साथ में है कियांश, सिया, रेखा परिवार, जिन्या परिवार, बुरीराज परिवार, रामचंद परिवार। तो इन सभी परिवारों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, फिल्म का नाम है सुजाता और इस फिल्म का ये सदाबहार गीत सालगिरह गीत जो है हम इनके नाम कर रही है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ एमबीसी की पूरी टीम की तरफ से।

तो चलिए श्रोताओ, अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। व्हाट्सएप मैसेज पे हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। साधना है, रिवियरा क्रियोल की रहने वाली, उनका मनपसंद गीत फिल्म गाइड से लिया गया ये गीत जाने वाला है। नितिश, उनके सभी बच्चों के लिए नितिश है, कुशल, करण, सतीश, कविना साथ में है, सामहिता, अनुषा, मंशा, जिया, तेजल, गौरव, क्रियान और उनके लड्डू गोपाल भी है साथ में, है तस्विक, साधना है, देवानंद, तो समस्त जीवन परिवार है, तो जो रिवियरा क्रियोल के रहने वाली है। तो इन सभी लोगों के नाम जो है, ये बहुत ही खूबसूरत सा सदाबहार गीत जो है फिल्म गाइड से लिया गया, जो आज भी बहुत ही प्यार के साथ सब लोग जो है गुनगुनाती है। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

तो चलिए श्रोता, वो आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अगला गीत जाने वाला है हमारे साथ। इस समय काफ़ी लोग जो है जुड़े हुए हैं, तो चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। हमारे साथ इस समय जो है गीता जी है, पोंफिया की रहने वाली, उनके पति है रोहित जी, आदित्य अरब जानवी है साथ में है रोहित, उनकी बहन मीरा न्यूकोव की रहने वाली। तो चलिए इन सभी लोगों के नाम जो है ये प्यारा सा गीत हम चलाने वाले हैं।

और उनके नाम जो है शनाना की तरफ से ये गीत नाना नंजी के नाम जो कि वाकवा के रहने वाले हैं, फिल्म का नाम है मेहरबान। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा सा गीत जो है आप सुन पाएंगे, और ये प्यारा सा गीत जो है आप मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुन सकेंगे।

चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और अगले गाने की ओर हम बढ़ रहे हैं। हमारे साथ है वाक्वा की ननानंद जी है।

0: मुझे भूल जाना।
1: चलिए हमारे साथ जो है डाविशा रामफोर पोर्टोफोल की रहने वाली और उनकी शादी के मौके पर अक्षय के साथ जो कि पॉम्पलेमुसिस के रहने वाले हैं, तो ढेर सारी शुभकामनाएं जो है आई हैं डाविशा की तरफ से। साथ में कज़िन रिद्धि, हंशिका है, ये सब लोग पेंडेगोश के रहने वाले हैं। तो चलिए बहुत ही प्यारा सा गीत हाँ मैंने भी प्यार किया फिल्म से लिया गया। तो ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, एमबीसी की पूरी टीम की तरफ से।

चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम की अंतिम भेंट में ये प्यारा सा गीत हरी जी के लिए। आप बोपासा के रहने वाले हैं, फिल्म का नाम है कति पतंग। सेलू जी, समस्त पेंटाया परिवार के लिए, उनके सभी परिवारों के लिए भी, और साथ में है वैसे काफ़ी लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शानाया जी है वाकवा की रहने वाली। ये गीत जो है हम चलाने वाले हैं आपके लिए, हमारे साथ इस समय डुगोव की रहने वाली, हमारे साथ इस समय मीला जी है न्यूकोव की रहने वाली, और उनके सभी बच्चों के लिए जो लंदन में रहते हैं, और साथ में है उनकी बहन जो कि पोम्फेया की रहने वाली है, और वैसे उन्होंने नाम नहीं बताया है, तो उनकी बहन के नाम भी ये अगला गीत हम करने वाले हैं। और हमारे साथ इस समय बेगोस की रहने वाली सिमला जी है हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो इन सभी लोगों के नाम जो है ये प्यारा सा गीत हम चलाने वाले हैं। और ये गीत जो है जाने वाला है सिजल के लिए, वेदिका के लिए, और मोहताबलांश की रहने वाली माया जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो ये अंतिम गीत जो है इनके नाम भी हम करेंगे। और ये गीत जो है हमारे साथ इस समय काफ़ी लोग जो है, शीला है, बिमाना है, तो इन सभी लोगों के नाम जो है ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत संतालिंग गाया है, तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके जन्मदिन पर। ढेर सारी शुभकामनाएं उनके सभी दोस्तों की तरफ से, उनके सभी परिवारों की तरफ से। शीला है, बिमाना है, तो इन सभी लोगों की फरमाइश पे ये गीत हम चला रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा गीत है, फिल्म का नाम है कति पतंग, और किशोर कुमार का गाया हुआ गीत। आप सभी सुनने वालों के नाम, जिन लोगों को लाइन नहीं मिली, जिन लोगों को अपने नाम जो है सुनने का मौका नहीं मिला है, तो इन सभी लोगों के नाम ये अंतिम नजाना हम चला रहे हैं। और कुछ ही घड़ी में हम बढ़ेंगे अगले कार्यक्रम की ओर। गुलदस्ता उर्दू, ये कार्यक्रम निसार के साथ आप सुन पाएंगे। तो हमारी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, शुभ संध्या।

चलिए श्रोताओं, जाने से पहले आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए बेलेयर के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है Pont Laudier, Route Royale à la Lucie Belair, Morcellement la Cheminée, Belle Rose और Clémenceau के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 11 जुलाई 2026 को सुबह 8:15 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुन रहे थे।

0: वो मौलाना सालिक ने कहा कि ये मेरा नाम बताया कि ये मौलाना गुलाम मुर्शिद एक खतीब थे मस्जिद शाही के और मेरे खालाजाद भाई थे और अल्लामा साहब उनको बहुत अच्छी तरह जानते थे, इसलिए कि बाज मजहबी उमूर पर वो उनसे मशवरे करते रहते थे, तो उनके ये उनका खालाजाद भाई है और बड़ा ज़हीन शायर है। उन्होंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, बस मेरी तो गुफ्तगू वहीं ख़त्म हो गई। अलबत्ता सालिक साहब और अल्लामा इकबाल ये कोई आध घंटे तक गुफ्तगू करते रहे मुख्तलिफ मौजूआत पर, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान मरहूम के बारे में, उनकी तबीयत में जो गुलव था उसके बारे में। तो कुछ देर के बाद अल्लामा इकबाल ने उनसे पूछा, मौलाना हसरत से, कि आप क्या सोच रहे हैं बैठे हुए खामोश बैठे। उन्होंने कहा जी मैं आपके हुक्के की खुदी पर गौर कर रहा हूँ।
1: हुक्के की खुदी,
0: हुक्के खुदी, इसलिए कि हुक्का वो खुद पिए जा रहे थे और उनकी तरफ उन्होंने नहीं बढ़ाया। बहरहाल ये छोड़,
1: अल्लामा ने क्या जवाब दिया?
0: अल्लामा मुस्कुराए, कहका लगाया, उनको हुक्का उनके पेश कर दिया। तो ये मैंने अपने तासुरात अल्लामा इकबाल की मुलाकात के लिखे जब उनका इंतकाल हुआ सन 38 में। तो ये मौलाना हजरत चिराग हसन हसरत के रिसालत शिराजा उसमें शाया भी हुए और बाद में किताबी सूरत में भी किसी ने छाप दिया। अल्लामा इकबाल के अलावा वहाँ मौलाना अब्दुल मजीद सालिक, मौलाना चिराग हसन हसरत, मौलाना गुलाम रसूल मेर, सैयद अहमद शाह बुखारी, पतरस बुखारी, डॉक्टर एम डी तासीर, सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम, सैयद आबिद अली आबिद, एहसान दानिश, गरज बड़ी बड़ी शख्स, अख्तर शेरानी, इसका मैं अभी जिक्र कर चुका हूँ। सहाफत की दुनिया में तो मैं ज़रूरतन दाखिल हुआ, मुआश की मजबूरियाँ तो वो मुझे ले आई। पहले मैंने कालम लिखना शुरू किया, रोज़नामा इमरोज लाहौर का मशहूर अखबार था, तो कालम इसलिए लिखना शुरू किया कि मौलाना हसरत जो कालम लिखते थे वो इमरोज को छोड़ के चले गए थे और कोई कालम नवीस नहीं था दस्तियाब, तो मुझसे कहा गया तो मैंने लिखना शुरू किया। मैं समझता हूँ कि नौजवान अदीबों और अफसाना नगारों और नक्कादों को मुतारफ़ कराने के सिलसिले में मैंने जो किरदार अदा किया है इन 40-50 बरसों में, तो मैं समझता हूँ ये मेरा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, और मैंने वक्त ज़ाया नहीं किया बल्कि वक्त का सही इस्तेमाल किया।
2: अहमद नदीम कासमी के फनपारों की बड़ी पहचान उनकी इंसान दोस्ती, रोशन ख्याल और नेक बीनी पर मबनी पुरखलूस हमदर्दाना सच्ची तरब की इनफरादियत में है। वो सभी इंसानों के लिए खैर व खूबी के खाहां थे और हमेशा मुसबत इम्कान से वाबस्ता रहे। इंसान और इंसानियत से मोहब्बत उनके फनपारों को आफाकियत बख्शती है। अहमद नदीम कासमी ने अपनी 50 से जायद किताबें शाया की, जिनमें शायरी के 11 मजमुए और अफसानों के 17 मजमुए शामिल हैं, एक नावलट भी हैं, 2 मुकालिमों के मजमुए, जबकि तनकीद के 5 कुतुब शाया हुई। खुद नदीम के फ़िक्र फ़न और शख्सियत पर कई किताबें लिखी गईं। दुनिया के मुख्तलिफ ज़बानों में उनके फनपारों के तराजम भी हुए। नदीम के हवाले से पाकिस्तान और दुनिया के दिगर ममालिक में PhD का काम हो चुका है और आज भी जारी है।
3: कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। तेरे पहलू से जो उठूंगा तो मुश्किल ये है, सिर्फ एक शख्स को पाऊंगा जिधर जाऊंगा। अब तेरे शहर में आऊंगा मुसाफिर की तरह, साये अब्र की मानंद गुजर जाऊंगा। अब तो खुर्शीद को डूबे हुए सदियां गुजरी, अब तो खुर्शीद को डूबे हुए सदियां गुजरी, अब उसे ढूंढने में ताब सहर जाऊंगा। जिंदगी शमा की मानंद जलाता हूं नदीम, जिंदगी क्षमा की मान।

0: आनंद जलाता हूं नदीम, बुझ तो जाऊंगा मगर सुबह तो कर जाऊंगा। मुझे जमाले बदन का है इतराफ, मगर मुझे जमाले बदन का है इतराफ, मगर मैं क्या करूं कि वराए बदन भी देखता हूं। ये कायनात फकत एक रुख नहीं रखती, चमन भी देखता हूं और बन भी देखता हूं। मेरी नजर में है जब हुस्न के तमाम अंदाज, मेरी नजर में है जब हुस्न के तमाम अंदाज, मैं फन भी देखता हूं, मकरो फन भी देखता हूं। निकल गया हूं फरेबे निगाह से आगे, निकल गया हूं फरेबे निगाह से आगे, मैं आसमां को शिकन दर शिकन भी देखता हूं। वो आदमी के सभी रोए जिसकी मैयत पर, मैं उसको जेरे कफन खंदसन भी देखता हूं। मैं जानता हूं कि खुर्शीद है जलाल माप, मगर गुरूब से खुद को रिहाई देता नहीं। मैं सोचता हूं कि चांद एक जमाल पारा है, मगर वो रुख जो किसी को दिखाई देता नहीं। मैं पूछता हूं हकीकत का ये तजाद है क्या, खुदा जो देता है सब कुछ खुदाई देता नहीं। वो लोग जोक से आरी हैं जो ये कहते हैं कि अश्क टूटता है और सुनाई देता है। बदन भी आग है और रूह भी जहन्नम है, बदन भी आग है और रूह भी जहन्नम है, मेरा कसूर यह है मैं दुहाई देता हूं।
1: सामईन, अहमद नदीम कासमी को उनकी अदबी खिदमात के एतराफ में पाकिस्तान का सबसे आला सिविल अवार्ड सितारा इम्तियाज और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। बिलाखिर 10 जुलाई सन 2006 को अदबी उफक पर गूंजने वाला आफताब हमेशा के लिए गुरूब हो गया। जिंदगी शमा की मानिंद जलाता हूं नदीम, जिंदगी शमा की मानिंद जलाता हूं नदीम, बुझ तो जाऊंगा मगर सुबह तो कर जाऊंगा। सामईन कराम, अहमद नदीम कासमी के इस शेर के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। उम्मीद है इस मुख्तसर मजलिस को आपने पसंद फरमाया होगा। अब अगले जुम्मे को आपसे मुलाकात होगी। आइए आखिर में कतील शिफाई की ये खूबसूरत गजल आपकी खिदमत में पेश करते हैं। खुदा हाफिज।

सैयद अल अय्याम कुबलियत वाला दिन जुम्मे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज मुहर्रम अल हराम की 24वीं तारीख है।

सदक़ल्लाहु अज़ीम। सामीन, अभी आप सूरह अल अहकाफ की चंद आयत मुबारक की तिलावत समाप्त कर रहे थे। हम आपको बता दें कि कुरान मजीद की ये 46वीं सूरत है और ये मक्की सूरत है, यानी कि मक्कतुल मुकर्रमा में ये नाज़िल हुई थी। इसमें अल्लाह तबारक व ताला ये सबक हमें दे रहा है कि इंसान को हमेशा अपने रब पर कामिल ईमान रखना चाहिए, वालिदैन की खिदमत और एहतराम करना चाहिए और दुनिया की आर्जी ज़िंदगी के बजाय आखिरत की कामयाबी को अपना मकसद बनाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन आयतों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन थुम्मा आमीन। 4:17 हो रहे हैं सामीन। आइए, पेश खिदमत है जामा मस्जिद पोटली में आज जुम्मे के मुबारक मौके पर फरमाए गए वाज़ की सदाबंदी। हज़रत क़िबला अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहु आलिया ने आज मखदूम पाक सिमनानी रहमतुल्लाह अलैहि को अपने खिताब का मौजू बनाया। समाअत कीजिए।

ये जहन नशीन फरमा लिया कि एक है हुब्बुल इल्म लविंग द नॉलेज लविंग द रिलीजियस नॉलेज दीन के इल्म से मोहब्बत और प्यार और एक है तलबुल इल्म सीखिंग द नॉलेज सीखिंग द रिलीजियस नॉलेज दीन के इल्म की जुस्तजू दीन के इल्म की तलब और तलाश और एक है असलुल ताअ द फाउंडेशन ऑफ ओबीडियंस असलुल अमाल सालिहा द फाउंडेशन ऑफ ऑल गुड डीड्स अल्लाह जल्ला मजहू उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और ओबीडियंस इसका हर नेकी और अच्छाई के लिए असल होना हर इताअत की और तमाम नेकियों की एक असल है देयर इज ए फाउंडेशन फॉर ओबीडियंस देयर इज फाउंडेशन फॉर ऑल गुड डीड्स इताअत के लिए फरमानबरदारी के लिए एक असल है एक फाउंडेशन बुनियाद नेकियों के लिए एक सरचश्मा एक बुनियाद और फाउंडेशन जिससे नेकियां निकलती हैं नेकियों के चश्मे जारी होते हैं जिससे इताअत और इताअत का पानी जारी होता है और जिस खुशनसीब नेकियों की बुनियाद मिल गई उसे नेकियों का खजाना मिला उसे नेकियों का

और जो नेकियों की उस चश्मे से, नेकियों की उस असल बुनियाद और फाउंडेशन से महरूम हो गया, तो वो सारी नेकियों से महरूम हो गया, सारी अच्छाइयों से महरूम हो गया। अब सवाल ये है कि व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ ओबीडियंस, व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल गुड डीड्स, कि नेकियों की और इताअत की बुनियाद क्या है, उसकी फाउंडेशन क्या है, जिस पर तमाम नेकियों की इमारत खड़ी है, जिस चश्मे से नेकियों का पानी निकलता है, इताअत का पानी निकलता है, और फिर वो चश्मा सदियों तक इस उम्मत को सैराब करता है। इताअत और नेकियों का वो पानी जो सदियों से बह रहा है और सुबह क़यामत तक वो मुसलसल बहता चला जाएगा। उसका जवाब ये है कि तलबुल इल्म व तलबुहु, हुब्बुल इल्म व तलबुहु, लव ऑफ रिलीजियस नॉलेज, सीकिंग ऑफ रिलीजियस नॉलेज इज द फाउंडेशन ऑफ ओबीडियंस, इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल गुड डीड्स। इल्म की तलाश, इल्म से मोहब्बत, ये तमाम नेकियों की और हर इताअत की बुनियाद और असल है। जिसने दीन के इल्म से मोहब्बत की, जो दीन के इल्म की जस्तजू तलाश में निकला फकत अल्लाह के लिए, उसके हबीब के लिए, तो उसे नेकियों का वो चश्मा मिला जो सदियों से बह रहा है और सदियों तक बहता चला जाएगा। तिश्नगाने इल्म और तिश्नगाने तुलबाए अपनी प्यास उस आबिशरी से बुझाते चले जाएंगे। इसी तरह एक है हुब्ब दुनिया, तलब दुनिया, लव ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, सीकिंग ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, इस मादी दुनिया की मोहब्बत, इस मादी दुनिया से प्यार और इस मादी दुनिया की तलब, इसकी जस्तजू, इसकी तलाश। एक है हुब्बुल माल, तलबुल माल, लव ऑफ द प्रॉपर्टी, जायदाद की मोहब्बत, सीकिंग द प्रॉपर्टी, जायदाद और माल की तलाश और जस्तजू। सो ये हर गुनाह की असल है। लव ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, लव ऑफ द प्रॉपर्टी इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी सिन एंड डिसओबीडियंस। माल की मोहब्बत और इस मादी दुनिया की मोहब्बत, इस फानी दुनिया की मोहब्बत, ये हर गुनाह की असल है। दुनिया में जितने भी गुनाह होते हैं, आप उसकी बुनियाद को तलाश करें तो उसकी बुनियाद या दुनिया की मोहब्बत होगी या फिर दुनिया के माल और जायदाद की मोहब्बत।

सो अल्लाह पाक जिसको असलुल इताअ, द फाउंडेशन ऑफ ओबीडियंस, इताअत की बुनियाद अता फरमाना चाहता है। जब अल्लाह चाहता है कि इस बंदे को इताअत की नेकियों की बुनियाद मिल जाए, इसकी सुबह शाम नेकियों में हो, ये सालेह बने, इससे तकवा का नूर जारी हो, तकवे के चश्मे जारी हो, परहेजगारी का ऐसा चश्मा और फिर फैजान विलायत का ऐसा चश्मा जो सुबह क़यामत तक बहता चला जाए, तो अल्लाह पाक उसके दिल से दुनिया निकाल देता है, दुनिया की मोहब्बत निकाल देता है, अल्लाह उसके दिल से माल और माल की मोहब्बत निकाल देता है, और उसके दिल में दीन के इल्म का शौक डालता है, फिर शौक के बाद वो इल्म की जस्तजू में निकलता है, तलाश में निकलता है, फिर जिंदगी भर वो इल्म की जस्तजू में लगा रहता है, पढ़ने में पढ़ाने में उसकी जिंदगी सर्फ हो जाती है, सुबह शाम उससे नेकियां होती हैं, वो गुनाहों से महसूस हो जाते हैं, अगर महसूस हो जाए तो अंबिया हैं, और गुनाहों से महफूज हो जाए तो फिर औलिया हैं, उलमा, सुलहा और अहलुल्लाह, ये दो तबके हैं। ये मासूम क्यों हुए, ये महफूज क्यों हुए, इसलिए कि यहां असल इताअत की असल है, यहां असल बुनियाद फाउंडेशन नेकियों की है, और जहां इताअत की असल होती है, नेकियों की असल होती है, तो उसका समरा या इस्मत है या फिर हिफाजत है। जब ये अपने हाई लेवल पे आए, हाई स्टेटस पे आए, तो फिर आउटकम या इस्मत अंबिया की शक्ल में होता या फिर हिफाजत औलिया की शक्ल में होता। जिन औलिया को अल्लाह पाक ने इताअत की नेकियों की असल अता की, उनमें से एक अल्लाह के अजीम वली आबिद जाहिद दाई शहजादा गौसुल बरा हामिले उलूम मुस्तफा, हामिले उलूम जाहिर मुस्तफा व हामिले उलूम बातिन मुस्तफा, हामिले मारिफ मुस्तफा, हामिले मतालिब मुस्तफा, हामिले असरार मुस्तफा, कुदवतुल कुबरा सैयदुना व सनदुना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कुद्दिस सिर्रहू सानी, जिनको अल्लाह पाक ने इताअत की असल अता की, जिनको अल्लाह पाक ने गुनाह की असल से महफूज रखा, जिनसे वो नेकियां हुई मुख्तलिफ शक्लों में सूरतों में, जिसका चश्मा सदियों से जारी है और इंशाअल्लाह सदियों तक जारी रहेगा, अल्लाह पाक ने उन्हें इताअत की असल का वो खजाना दिया, इताअत की असल की वो बुनियाद अता की, इताअत की असल का वो नूर दिया, वो रोशनी अता की,

जिसने अंधेरों में उजाले किए, जिसने कायनात से गुनाहों की जुल्मत को मिटाकर उसे नेकियों के उजाले में बदल दिया। और जब इंसान दीन के इल्म की मोहब्बत अता की जाती है, दीन के जस्तजू में लगा दिया जाता है, तो फिर उसके सामने ये दुनिया हेज होती है। दुनिया की कोई वैल्यू नहीं होती, दुनिया के स्टेटस की कोई वैल्यू नहीं होती, दुनिया के मान की कोई वैल्यू नहीं होती, दुनिया की प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन शर्त यह है कि वो उस हाई लेवल पर फाइज हो, उस मुकाम रफी पर फाइज हो। सैयदना मखदूम पाक रदी अल्लाह ताला ने बादशाह छोड़ी, उसका राज फरमाया। आप जब अपने भाई से अलग हो रहे थे तो आपकी जुबान मुबारक पर यह अशआर थे जिसमें दुनिया वालों को तर्क सल्तनत का राज बताया है, बादशाहत को छोड़ने का राज बताया। आपकी जुबान पर यह अशआर थे, तर्क दुनियागीर ता सुल्तान शबीर, तर्क दुनियागीर ता सुल्तान शबीर, महरम असरार पर जाना। आपकी जुबान फारसी, फारसी में आपकी हमद भी है, नाद भी है, मनकबत भी है, और फारसी में आपने किताबें लिखी, और गालिबन उर्दू जुबान की पहली किताब तसव्वुफ की आपने लिखी। आपने फरमाया तरके दुनिया गीर ता सुल्तान शबीर, दुनिया को छोड़ दे ताकि तू बादशाह हो जाए। लोग कहते हैं आपने बादशाह छोड़ी, मैं कहता हूं नहीं, बादशाह नहीं छोड़ी, दुनिया को छोड़कर वो बादशाह वो सल्तनत इख्तियार की जो सुबह कयामत तक और सुबह कयामत के बाद अबदुल आबाद तक आपको उसका नूर उसका फैज नसीब होगा। जो दीन की जस्तजू में, महबूब की जस्तजू में दुनिया और बादशाह छोड़ता है, वो बादशाह नहीं छोड़ता, वो असल बादशाह को इख्तियार। तो अब जब ये सवाल हुआ कि दुनिया छोड़कर फिर वो बादशाह, दुनिया की सल्तनत छोड़कर फिर वो कैसे बादशाह बना, कैसे किंग बना, तो फरमाया महरम असरार पर जाना। जब इंसान दुनिया छोड़ता, दुनिया की मोहब्बत छोड़ता, दुनिया की फानी खत्म होने वाली दौलत और जायदाद को छोड़ देता है, तो फिर अल्लाह पाक उसे महबूब का राजदा बना देता है, वो महबूब का राजदा होता है, उसको फिर महबूब के राज बताए जाते हैं। और राज कब बताए जाते हैं? जब कोई इंसान किसी से बहुत ज्यादा करीब हो जाए, इसलिए कि इंसान अपना सीक्रेट अपना राज हर एक को नहीं बताता। तो जैसे आप अपना राज हर एक को नहीं बताते, अल्लाह भी अपना राज हर एक को नहीं बताता। राज हर दोस्त को नहीं बताया जाता, इसी तरह राज हर एक को नहीं बताया जाता। बारगाह इलाही और बारगाह मुस्तफवी का महरम असरार होता है, राज उसे बताए जाते हैं कि जब उसके और महबूब के दरमियान कोई पर्दा हायल ना हो, सारी दूरियां मिट जाए, सारी मुसाफतें खत्म हो जाए, बस मुहिब व महबूब में वसल हो जाए, दोनों मिल जाए, तो फिर राज के दरवाजे खुलते हैं, असरार के दरवाजे खुलते हैं।
आपने कुरान करीम का तर्जुमा फारसी जुबान में लिखा।

जो फारसी जुबान में कुरान करीम फुरकान हमीद का बेनजीर और यकता तर्जमा है। आपकी लताइफ अशरफी, मकतूबात अशरफी, रिसाला इश्क, रिसाला कबरिया, बहुत से रसाले आपने उसूल फिक्र की किताब लिखी, आपने हिदाया पिहाशिया लिखा। अलगरज आपकी किताब किसी भी एरिए में हो, उसमें महबूब के असरार होते हैं, उसमें महबूब के रमूज होते हैं, उसमें महबूब की राज की बातें होती। तो ये राज कब खुलते हैं कि जब इंसान दुनिया छोड़ दे, दुनिया की माली मादी मोहब्बत छोड़ दे, दुनिया के मालो दौलत को छोड़ दे। और ये आसान नहीं है, खिताब आसान है, तकरीर आसान है, ये कह देना कि दुनिया छोड़ने आसान है, लेकिन कोई अपनी एक टोपी भी छोड़ने को तैयार है, वो भी अगर किसी को देना हो तो उसमें भी वो सोचता कि दू या न दू। ये कब होता है? ये उस वक्त होता है जब तक इस दिल में गुनाह की बुनियाद हो, और जब ये दिल नेकियों की बुनियाद हो जाए, जब ये दिल नेकियों का सरचश्मा हो जाए, यहां से नेकियों के चश्मे जारी हो, यहां से नेकियों का नूर आ रहा, तो फिर अल्लाह पाक अपने उस बंदे को वो मुकाम अदा करता है कि उसके सामने सोना और पत्थर ये बराबर होते हैं, उसके सामने सारे जहां की बादशाहत कि कोई हैसियत और वैल्यू नहीं होती। इसलिए इन औलिया ने चटाइयों पर बैठकर खाक नशीन होकर सूखी रोटियां खाकर फाके करके गुरबत इख्तियार की, और वक्त के बड़े बड़े सलातीन और बादशाह जब इनके पास आते तो वो ये समझते हैं कि बादशाह हम नहीं हैं, ये बैठे चटाई पर हैं, बैठे जमीन पर हैं, झोपड़ियों में बैठे हैं, लेकिन शाही महल से आने वाला बादशाह अपने आप को इनके सामने फकीर समझता, इनका साईं समझता, इनसे दुआएं लेता। वजह क्या है? वजह यह है कि जहां नेकियों की बुनियाद कायम हो जाए, जहां फाउंडेशन ऑफ ओबीडियंस, फाउंडेशन ऑफ ऑल गुड डीड्स, सारी नेकियों की बुनियाद बन जाए, फिर उसके सामने न दुनिया की कोई हैसियत होती है, न दुनियादारों की कोई हैसियत होती है। अल्लाह पाक आपके मरकद मुबारक पर अपने रहमत और रिजवान की बारिशों का नुज़ूल फरमाए, आपका इल्मी रूहानी हुब्बी इश्की फैजान सुबह क़यामत तक जारी और सारी रहे। वमा अलैना।

फरमाई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान और सुन्नत की तालीमात को आम किया, मोहब्बत उखुवत और इंसानियत का दर्स दिया और सिलसिले अशरफिया के ज़रिए लाखों लोगों को राह हिदायत से रोशनास कराया। आज भी आप रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात और फ्यूज़ उम्मत मुस्लिमा के लिए रहनुमाई का सरचश्मा है, जबकि आपका मज़ार अक़दस किचौचा शरीफ उत्तर प्रदेश में अकीदतमंदों के लिए रूहानी मरकज़ की हैसियत रखता है।

आप तमाम सामीन को ये शाम मुबारक। आप साथ दे रहे हैं रेडियो मॉरिशस की लहर पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एक हसीन प्रोग्राम। जी हाँ अज़ीज़ सामीन, गीत और ग़ज़ल का ये हसीन प्रोग्राम जहां से भी आप साथ दे रहे हैं आपका खुशामदीद है। तो चलिए ये पहला तराना आपके नाम करते हैं।

सामईन ज़ौक बाज़ नगमे सिर्फ सुनने नहीं जाते बल्कि दिल की धड़कनों में उतर कर एक एहसास बन जाते हैं। जब मोहब्बत खलूस से मिलती हैं तो मौसमों का रंग भी बदल जाता है, फ़ज़ाएँ भी महकने लगती हैं और लम्हे यादगार बन जाते हैं। वक्त की मुट्ठी से हर शय फिसल जाती है मगर दिल से जुड़ी हुई याद कभी पुरानी नहीं होती। हरिहरन साहब की आवाज़ में समात फरमाइए।

वैसे तो मोहब्बत सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि एक ऐसी कैफियत है जो दिल को सुकून भी देती है और बेकरारी भी। कुछ रिश्ते लफ्ज़ों से नहीं निगाहों से जन्म लेते हैं और फिर वही निगाहें किसी की पूरी दुनिया बन जाती हैं। ये रेडियो मॉरिशस है, परवीज़ा के साथ हैं शाम के 6 बजे तक। हमारा साथ देते रहिए। मोहब्बतें किसी लताफतें, चाहतें किसी मिठास और वफा किसी खुशबू को सुरों में महसूस करते रहिए।

ये इश्क की आग है, प्रेम की अग्नि, लव एट फर्स्ट साइट, उसके बाद साइट ढूंढते रहो।

लेकिन आग ये ऐसी है आखिरी उम्र तक बुझती नहीं है। हमारे एक बुजुर्ग दोस्त हैं, शायर हैं, उन्होंने एक शेर कहा है,

वैसे तो हुस्न की तारीफ फकत चेहरे की दिलकशी में नहीं बल्कि उस मासूमियत सादगी और दिल नशी अंदाज में भी पोशीदा होती है जो किसी शख्सियत को यादगार बना देता है। ये रेडियो मॉरिशस है, परवीज़ा का साथ है। गीत और गज़लों के इस सफ़र में आँखें सिर्फ देखने का वसीला नहीं होती हैं दोस्त, बल्कि दिल की ज़बान भी होती है। आँखों की भी अपनी ज़बान होती है, खामोश रहकर भी ये दास्तान होती है।

निगाह में ऐसी कशिश ऐसी अदा मिली, हमने नज़र झुकाई तो दुनिया भुला दी। सामेईन, बाज़ गीत वक्त के नहीं एहसास के सफ़र का हिस्सा बन जाते हैं। जो मिला उस पर शुक्र, जो ना मिला उस पर सब्र, यही अंदाज़े सफ़र ज़िंदगी को हसीन बनाता है ना। पेश खिदमत है एक ऐसा नख्मा जो हमें ये पैगाम देता है कि ज़िंदगी के हर मोड़ में कोई ना कोई खैर ज़रूर छुपी होती है। सोचिए, मुस्कुराए और इस खूबसूरत नख्मे के साथ ज़िंदगी के हर रंग को मोहब्बत से कबूल कीजिए।

सामईन महतरम, मोहब्बत की दुनिया में कुछ चिलम है ऐसे भी आते हैं जब वक्त से सिर्फ एक हेलती जा होती है, ठहर जा, क्योंकि अक्सर मुलाकातें तेरी हसीन होती हैं कि दिल चाहता है वो शाम कभी ढले ही नहीं, वो गुफ्तगु कभी ख़त्म ना हो और वो साथ हमेशा कायम रहे। ज़रा सी देर ठहर जा, अभी तो बात अधूरी है, अभी तो दिल ने तेरे कुर्बती की खुशबू और ही है, कुछ लम्हे ज़िंदगी से चुरा लेने दो हमें, फिर जाने कब नसीब हो आपका ये साथ, पर क्या करें चीज़ों की घड़ी हमें आहिस्तगी से ये एहसास दिला रही है कि महफिल गीत और ग़ज़ल का मुकर्रा वक्त अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। दिल तो चाहता है कि ये खुशबू भरी महफिल यूं ही सजी रहे, मगर वक्त का भी अपना एक तकाजा है। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने प्यारों को वक्त दीजिए, मोहब्बत मानते रहे, दुआओं में याद रखिए, क्योंकि मोहब्बत की वो सरमाया है जो बांटने से बढ़ता है। परवीज़ और अंजू को इजाज़त, खुदा हाफिज़।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाते चलिए, शाम के 6 बजे हैं। इस सायंकालीन बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले पेश आज की सुर्खियां। पेंशन सुधार पर गठित एक्सपर्ट्स कमिटी

0: के अध्यक्ष या सदस्यों के कामकाज में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पाया जाता, न ही वास्तव में और न ही अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रसभा में विपक्ष नेता के PNQ के जवाब में प्रधानमंत्री ने ये बात कही। 2025 की चीनी की फसल के लिए खेतीहरों और कारखानों के मालिकों को चीनी के लिए दी जाने वाली कीमत 24,095 रुपये प्रति टन तय। मॉरिशन शक्कर के व्यापार के जिम्मेदार शुगर सिंडिकेट के अनुसार इस गिरावट के पीछे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी का ज्यादा उत्पादन माना जा रहा है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के हालिया आंकड़ों के अनुसार यौन दुराचार के हर 3 पीड़ितों में से 2 की उम्र 16 साल से कम। ये आंकड़े याद दिलाते हैं कि सबसे कम उम्र के बच्चे ही मुख्य रूप से इसका शिकार होते हैं। विदेश में दक्षिण पूर्वी चीन में जूतों के एक कारखाने में भीषण आग, कम से कम 28 लोगों की मौत। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस हादसे के पीछे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने का आदेश दिया। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब पेश समाचार विस्तार से। पेंशन सुधार पर गठित एक्सपर्ट्स कमेटी के अध्यक्ष या सदस्यों के कामकाज में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पाया जाता, ना ही वास्तव में और ना अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रसभा में विपक्ष नेता के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के जवाब में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने ये बात कही। उन्होंने एक बार फिर इन पेशेवरों के लिए अपना अटूट समर्थन दोहराया। उनको सुनते हैं।
1: I'm informed that Quantum Insurance Limited is licensed to transact only in short-term general insurance. This, Madam Speaker, is not a subject related to pension reform. As such, there is no conflict of interest, actual or perceived, for serving as chairperson of the Commission of Experts. When we returned back into government, we could not leave the NPF and the NSF, which have together more than 200 billion rupees of assets, without professional advice regarding investment. That is why the Minister of Finance proceeded with a tender exercise for investment advisory services, and Actuarics was awarded the contract on the 28th of April 2026 for an initial period of 1 year, renewable for a further period of 1 year for an amount of 3.8 million rupees. There were, I should add, 5 bidders that participated in the tender exercise. Being an advisor to the investment committee on investment does not constitute a conflict of interest in advising on pension reform. It is ironical that the sole representative of a party which has the unenviable record of having introduced the concept of institutional nepotism and turned Mauritius into a model of abject cronyism is now asking questions about conflict of interest, ethics and good governance. I'm tempted to ask him, where was he as the minister when Mr. Avinash Gopi or Mr. Sattar Haji Abdullah and one of his own colleagues, Mr. Kavi Ramanu, were engaged in blatant acts of conflict of interest?
2: Should he say that? The right to put my question when he's asking where I was. I'm here.
1: Madam Speaker. It's actual facts. I'm talking about facts. Where was the MSM when the institutions like the Bank of Mauritius and the State Bank were deeply involved in cases of conflict of interest and incestuous relationships? Vous savez, Madame la Présidente, ces fossoyeurs de la bonne gouvernance veulent aujourd'hui se faire refaire une virginité by attacking professionals who are recognized as such, both nationally and internationally. We must ask ourselves, Madam Speaker, if this is yet not another attempt to deviate attention from the decade of corrupt and despicable practices that sullied the reputation of our country on the international front. Or could it be simply a case of selective political amnesia or trying to challenge the collective intelligence of this nation? Madam Speaker, the systemic attacks on the Commission of Experts smacks of demagogy and pettiness. The campaign of innuendos and hitting below the belt demonstrates the level of cheap politics that some people in the opposition are willing to stoop to present themselves as the neo paragons of good governance, transparency, and moral authority of this country. These people do not seem to realize that this vile campaign is belittling top-notch professionals who we badly need for this country.

0: country to take it to a new level of development. Once again, Madam Speaker, I want to restate my unflinching support to such professionals.
1: 2025 की चीनी की फसल के लिए सिंडिकेट प्राइस यानी खेतीहरों और कारखाने के मालिकों को चीनी के लिए दी जाने वाली कीमत 24,095 रुपए प्रति टन तय की गई है। नॉर्शन शक्कर के व्यापार के जिम्मेदार शुगर सिंडिकेट के अनुसार इस गिरावट के पीछे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी का ज्यादा उत्पादन माना जा रहा है। पुलिस विभाग में रिक्रूटमेंट प्रक्रिया चलाई जा रही है। जो लोग भर्ती होने की इच्छा रखते हैं वे सोमवार 13 जुलाई तक अपना आवेदन जमा करा सकते हैं। इस साल एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया जा रहा है। सिलेक्शन के नियमों को में हल्की ढील दी गई है, खासकर फिजिकल और अकादेमिक आवश्यकताओं के मामले में। इसके साथ ही शुरुआती वेतन भी बढ़ाया जा रहा है। चलिए आज हम पुलिस अफसरों की ट्रेनिंग पर एक रिपोर्ट आपको पेश कराने जा रहे हैं। हमारी एक टीम ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का दौरा किया।
2: पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में पुलिस ट्रेनियों की सुबह 5 बजे शुरू होती हैं और लगभग 17 घंटे बाद यानी रात के 10 बजे जाकर समाप्त होती हैं। ये उनकी रोज की जिंदगी है। हफ्ते में 5 दिन शारीरिक ट्रेनिंग, टैक्टिकल एक्सरसाइजेस और थ्योरी क्लासेस के बीच उनका दिन काफी व्यस्त और चुनौतीपूर्ण रहता है। वे पूरी लगन के साथ ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में हिस्सा लेते हैं। ट्रेनी वुमन पुलिस कांस्टेबल बीबी स्वालिहा हिम्मत कहती हैं, मैंने ये पेशा इसलिए चुना ताकि मैं लोगों को न्याय दिलाने में मदद कर सकूं। ट्रेनिंग के पहले 6 महीने पूरे होने के बाद उनको विभिन्न विशेष इकाइयों में रोटेशन पर भेजा जाता है, जिनमें स्पेशल मोबाइल फोर्स, स्पेशल सपोर्टिंग यूनिट और नेशनल कोस्ट गार्ड शामिल हैं। ज़कारिया तूफानी कहते हैं, सबसे पहले स्पेशल मोबाइल फोर्स में मैंने ट्रेनिंग पाई और अब बोबासे के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में देश के कानून पर जानकारी पा रहा हूँ। यहाँ कई लीडरशिप स्किल्स सीखे हैं, आत्मविश्वास भी बढ़ा है। ट्रेनिंग कई चरणों में होती है। पहला चरण 9 महीने तक चलता है, जिसमें भर्ती जवान थ्योरी की पढ़ाई और मैदान में व्यावहारिक प्रशिक्षण के बीच अदला बदली करते हैं। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में SP सदानंद तोकोगी कहते हैं, इस प्रशिक्षण के बाद वे पुलिस स्टेशन में जाते हैं। 1 महीने के दौरान वे काम की वास्तविकता को जानते हैं, शिफ्ट पर काम करते हैं और ट्रेनिंग का समापन एक अंतिम परीक्षा से होता है। इस साल 367 लोगों ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में प्रवेश लिया है, जिनमें 117 महिलाएं और 112 रोड्रिक्स से हैं। उम्मीदवारों के चयन के बाद हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। दिन ब दिन इनकी संख्या कम हो रही है। साथ ही नए पुलिस भर्ती अभियान के लिए आवेदन की भी मांग की गई है। उम्मीदवारों की उम्र 18 से 32 साल के बीच होनी चाहिए। अन्य बदलावों में शारीरिक मानकों में ढील दी गई है। पुरुषों के लिए न्यूनतम लंबाई अब 1.68 मीटर कर दी गई है और महिलाओं के लिए 1.61 मीटर। एक और अन्य बदलाव ये है कि अब शरीर के किसी दिखाई देने वाले हिस्से पर टैटू की अनुमति होगी, बशर्ते कि ये आपत्तिजनक या आक्रामक न हो। शुरुआती वेतन अब 27,905 रुपये प्रति महीने कर दिया गया है। रुचि रखने वाले उम्मीदवारों के पास अपना आवेदन भेजने के लिए सोमवार 13 जुलाई तक का समय है।
1: चीन में रोजमर्रा की जिंदगी में चाय की अहम भूमिका है और लोग दिन भर चाय का सेवन करते हैं। ये एक आम उपभोग से बढ़कर एक रीति रिवाज की तरह है। चीन से चाय की कला के कुछ माहिर मॉरिशस आए हुए थे। इस परंपरा को आगे बढ़ाने के प्रयास के रूप में उन्होंने मॉरिशनों के बीच इस संस्कृति की विशेषताएं बांटी। सुनिए,
2: चाय समारोह यानी टी सेरेमनी की शुरुआत चीन में सोंग वंश के दौरान आज से 1000 साल से भी ज्यादा समय पहले हुई थी। इस समारोह की बारीकियों में निपुणता हासिल करने के लिए सालों की प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ताकि सबसे बेहतरीन सुगंध और स्वाद निकाला जा सके। इसके लिए पानी के तापमान, चाय को पकने के समय और चाय डालने की विधि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सिर्फ एक पेय पदार्थ से कहीं बढ़कर

0: समुदाय ज्ञान सम्मान और सामंजस्य का प्रतीक हैं।
1: 其实做茶和做茶道是有方法的。
0: चाय बनाने की कला की एम्बेसडर वांग फेई कहती हैं, चाय बनाने के लिए तैयारी और इसके सेवन के कई लाभ होते हैं। जो व्यक्ति चाय बनाता है उसे बहुत ध्यान देना चाहिए और इसका सेवन करने वाले को भी। चीन की एक और प्रसिद्ध मंच कला है मास्क बदलने की कला। सिचुआन के ओपेरा आर्टिस्ट वांग पानपान कहते हैं, मास्क बदलने का मंचन चाय कला से सीधे तौर से जुड़ा हुआ है। हर एक मास्क व्यक्ति की विभिन्न भावनाओं को दर्शाता है। ये खुशहाली फैलाने का एक अच्छा साधन भी है। इस समारोह में उपस्थित चीन की राजदूत वांग शिफांग ने चाय के प्रति मॉरिशस और चीन के प्रेम को उजागर किया। इस शाम का एक और मुख्य आकर्षण था सिचुआन के कलाकारों का प्रदर्शन, जिन्होंने चाय की फसल के समय चाय उगाने वाले किसानों की खुशी को दर्शाया।
2: मॉरिशस में बच्चों के साथ यौन हिंसा और यौन शोषण एक चिंताजनक वास्तविकता बनी हुई है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के हालिया आंकड़ों के अनुसार हर तीन पीड़ितों में से लगभग दो की उम्र 16 साल के कम की है। ये आंकड़े याद दिलाते हैं कि सबसे कम उम्र के बच्चे ही मुख्य रूप से इसका शिकार होते हैं, इसीलिए सभी का सतर्क रहना बहुत ही ज़रूरी है। 1.5 साल तक राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने के बाद लिनियो मोरिस फिर से वापसी कर रहा है। पार्टी के नेताओं ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां आधिकारिक तौर पर फिर से शुरू करने की घोषणा करने के लिए शुक्रवार को एबेन के निसीपाक होटल में प्रेस से मुलाकात की। इस दौरान देश के हालत पर भी चर्चा की गई। और स्थानीय स्तर पर ही आज लगे प्रेस सम्मेलन के दौरान समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभो ने पेंशन प्रणाली में सुधार पर ज़्यादा स्पष्टीकरण दिए। उन्होंने कहा कि 60 साल की उम्र वालों का पेंशन बरकरार रखा जा रहा है, उसे रोकने का सवाल खड़ा नहीं होता। 60 साल के हर एक व्यक्ति को पेंशन मिलेगा, लेकिन एडजस्टमेंट के साथ। इसके अलावा मॉरिशस पेंशन फंड भी वापस कायम किया जा रहा है, जिसे अब MPF 2.0 से जाना जाएगा। विदेश की खबरों में दक्षिण पूर्वी चीन में जूते के कारखाने में भीषण आग लग गई। कम से कम 28 लोगों की मौत हुई है। आग पर काबू करने के लिए 500 से ज्यादा दमकल कर्मी तैनात हुए। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस हादसे के पीछे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने के आदेश दिए हैं। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
3: चीन के दक्षिण पूर्वी इलाके में जूते के कारखाने में आग लगने से कम 28 लोग मारे गए। फुजियान प्रदेश में जिनजियांग के हुईटेंग कारखाने में ये हादसा पेश आया। अधिकारियों के मुताबिक दिन के करीब 12 बजे आग लगी। राहत कार्रवाई के लिए 500 से अधिक दमकल कर्मियों को तैनात किया गया। हादसे की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वहां फंसे लोगों को बचाने के लिए सभी साधन तैनात कर दिए। साथ में हादसे के कारणों का भी पता लगाने के लिए आदेश दिए गए। कई घंटों के अथक प्रयासों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हादसे के वक्त स्थल पर 237 कामगार थे और अन्य दो लोग। कुल 213 लोगों को हटाया गया। इनमें से दो की मृत्यु अस्पताल में हुई, जबकि लापता 26 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जिससे कि मृतकों की संख्या 28 तक पहुंच गई। कंपनी के उच्चाधिकारी तथा इस मामले में संलग्न अन्य लोगों के साथ पूछताछ की गई और कंपनी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। अधिकारियों की ओर से दुर्घटना की परिस्थितियों का पता लगाने के वास्ते जाँच शुरू की गई।
2: फुटबॉल की बात करते हैं। स्पेन और बेल्जियम के बीच का मैच आज रात 11 बजे से शुरू होगा। इसका सीधा प्रसारण MBC स्पोर्ट्स 11 पर होगा और स्पोर्ट्स डेस्क की तरफ से इससे पूर्व रात 9:30 बजे से एक विशेष प्रोग्राम पेश किया जाएगा। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
4: स्पेन की टीम ने अब तक कमाल किया है। ग्रुप एच में पहला स्थान लिया, ये तो मामूली बात थी, लेकिन अभी तक एक गोल भी किसी ने उस पर स्कोर नहीं किया। ये एक

0: रिकॉर्ड हैं। स्पेन ने अपना पहला मैच ड्रॉ किया था, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया था बेस्ट ऑफ 16 में और पोर्टुगल को एलिमिनेट किया था 1-0 से। ये लोग आगे जाना चाहते हैं, लेकिन इनके रास्ते में बेल्जियम होगा और गोलकीपर जो है उनई साइमन अभी तक रिकॉर्ड बना चुका है और वो इस रिकॉर्ड को बरकरार रखना चाहेगा। 609 मिनट हो गए जब से उस पर गोल स्कोर नहीं किया गया है इस वर्ल्ड कप में, तो अब देखना है लाहौर कितना आगे जाएगा और बेल्जियम की टीम जो है इसमें अनुभवी खिलाड़ी है, अपने ग्रुप में ग्रुप जी में पहले स्थान पर आए थे और जाबलो रूज सेनेगल को 3-2 से हरा पाए थे और अंतिम मैच में यूएसए को हरा पाए थे 4-1 से। धीरे धीरे इस टीम ने रफ्तार पकड़ा है और अब रिगासिया की टीम में जो अनुभवी खिलाड़ी है उनको दिखाना है गोल्डन जेनरेशन, ऐसे ही उनको नहीं कहा जाता, कुछ साबित करके दिखाएंगे कि ये जेनरेशन वर्ल्ड कप जीत सकता है। इसीलिए लाहौर के लिए आसान मैच नहीं होगा। ये मैच आज 11 बजे खेला जाएगा। इससे पहले एमबीसी स्पोर्ट्स डेस्क की ओर से एक स्पेशल प्रोग्राम ऑन रूट वेयर न्यूयॉर्क।
1: फ्रांस के रेगुलर टाइम में मोरक्को को हराकर सेमीफाइनल्स में जगह बनाई। मैच का फाइनल स्कोर 2-0 रहा। सेकंड हाफ में किलियान एम्बापे और उस्मानी देम्बेले ने मोरक्को के दफेके को भेद कर फ्रेंच टीम के लिए लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की की। जरा विस्तार से बोलते हैं।
0: बड़े बड़े मैचों में बड़े बड़े खिलाड़ियों द्वारा पेनाल्टी मिस करना अब आम बात हो गई है। मेसी ने पेनाल्टी मिस की और यहाँ पर किलियान एम्बापे भी पेनाल्टी स्कोर करने में नाकाम रहा, लेकिन इसके बाद जो ये लोग करते हैं अपनी टीम को जितवाते हैं। किलियान एम्बापे फ्रांस का टॉप स्कोरर सेकंड हाफ में आकर अपना पहला गोल स्कोर करता है। बुनू जो गोलकीपर है उसने बहुत कोशिश की, इस वक्त तक उसने अपनी टीम को संभाल के रखा था, लेकिन कितना बच पाता एम्बापे के सामने।
2: Jouer une demi-finale de Coupe du Monde, c'est exceptionnel. C'est la troisième de suite avec l'équipe de France depuis que je suis en sélection. Et voilà, je suis très heureux de cette qualification. Alors, on savait que le Maroc, c'était un match difficile. On est avec des joueurs de qualité, mais on est resté concentré dans ce match. Même après le pénalty loupé, on a voulu rester concentré. Voilà, on est heureux de cette qualification.
0: Mbappé, qui est ce goal, qui est un peu plus Dembélé, goal score, qui ये एम्बापे के पास पर एम्बापे के असिस्ट काफ़ी है। गोल्डन बूट के लिए ये काम आएगा क्योंकि वो अभी लियोनेल मेसी के बराबर है 8 गोल के साथ।
3: On est en demi-finale, on est très content, il y a encore un long chemin et on est conscient que ce qui nous attend est encore plus dur que ce qu'on a passé mais on est prêt à tout affronter et on va tranquillement récupérer.
0: वर्ल्ड कप के फाइनल्स में डीजे देशांस 20 मैच जीत चुका है ले ब्लू के साथ 25 मैचों में और इस बार कोच के रूप में चैंपियन बनना चाहेगा।
4: C'est trois consécutives, donc déjà ça c'est bien, mais ça semble logique et naturel, mais il faut y arriver. Ouais, évidemment, j'ai des super joueurs, autrement on n'arrive pas là, mais c'est bien, c'était compliqué parce que aujourd'hui, en ratant le penalty, les occasions qu'on met pas, mais bon, quand c'est Kylian. Pas de souci, il doute jamais, même s'il a eu une occasion avant de marquer aussi. Donc, c'est super, on est là où on voulait être.
0: लेकिन आगे चलकर उसके रास्ते में कौन होगा, स्पेन या बेल्जियम, ये आज रात को पता चलेगा।
1: चलिए जानते हैं मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की सी सामान्य हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे, कल दिन के दौरान धूप खिली रहेगी, हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, प्रवाह रेखा के परे 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है, खासकर कल दोपहर बाद से। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 15 से 17, अधिकतम 20 से 24, तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 22, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 7:45 बजे, शाम को सूर्यास्त 5:44 पर होगा।

0: देश विदेश की इन खबरों के साथ बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे न्यूज विभाग और तकनीकी पर डोमिनिक का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। राय रोड एनएस फ्लोरेंस में तिरसठ साल के 63 ईयर्स ओल्ड के श्री जयराम सिंह बृहस्पतिया की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके मकान राय रोड एनएस फ्लोरेंस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। कॉम्बे लैंड ग्लैन पॉगवाकवा में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री अनंद हरिलाल जो विदान के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनके बेटे रागेश अनंद के मकान कॉम्बे लैंड ग्लैन पॉगवाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थामामेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 9:30 AM। न्यू रोड होशनुआ में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के श्री धर्मराज हरलोल जो धर्म के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उनकी पत्नी माला हरलोल के मकान न्यू रोड होशनुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11:30 AM। कालीमाई पालमाकाथोबोन में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड के श्री जसोनाथ भैरू जो चिबाई के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पूर्व सीएनटी के पूर्व ड्राइवर थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी रविवार को दिन के एक बजे उनके मकान कालीमाई पालमा काथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थामामेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन संडे एट 1 PM। एवेन्यू डे लेस्पेरेंस पीटों में 72 साल की 72 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती शांति देवी शंभू पैदाशनाम बद्री और जो बसंती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह साढ़े नौ बजे उनके बेटे रामचंद शंभू के मकान एवेन्यू डे लेस्पेरेंस पीटों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9:30 AM। क्रिमेशन रोड होशनुआ में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड के श्री अभिमन्यु इमामजी जो राम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके रिश्तेदार अनिल कपूर पादियाची के मकान क्रिमेशन रोड होशनुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचुया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। वाल्टो मुताइलोंग में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड के श्री सत्यानंद एतवाहा जो अजीत के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनकी पत्नी बबीता एतवाहा के मकान वाल्टो मुताइलोंग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमो शांतियारूज की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 9:30 AM। मोसेलमा बुले रूज फ्लैक में विनर्स सुपरमार्केट के पीछे मोसेलमा बुले रूज फ्लैक में विनर्स सुपरमार्केट के पीछे 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री करण गजाधर

जो सुरतम और पिपे के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, पहले गांधी रोड लालमाटी रहा करते थे और पूर्व कॉर्पोरल थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दोपहर 2 बजे उनके मकान मौसलमा बुले रूज फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ब्रह्मस्थान की शमशान भूमि

प्लिमुसिस में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री प्रेमानंदा मंगापति, श्री प्रेमानंदा मंगापति जो नांदो के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी रविवार को सुबह 9 बजे उनके मकान नंबर 9 मोसेलमो माउंट पॉम्प्लेमुसिस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन संडे एट 9 AM। रॉयल रोड खेफगया में, रॉयल रोड खेफगया में 66 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मेधा धनु पैदाशी नाम बर्टन और जो मेधा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी और फॉर्मर एक्टिंग डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ एसोसिएशंस थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके पति साम्राज सिंह धनु के मकान रॉयल रोड खैफगया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। काली लेन बॉम्बू में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री धनीलाल पुराहू जो ज्ञान के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 12:30 बजे उनके मकान काली लेन बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 12:30 PM। आले भैयों वाकवा में 85 साल की 85 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुभावती पैसान पैदाशी नाम शिवनाथ और जो साबित के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9:30 बजे लाशा पेलोदों डेलियन सन्स रॉयल रोड बुबासा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले भैयों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 9:30 AM। नंबर 21 एवेन्यू लुवे कैथरबोन में 87 साल की 87 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती वार्ता कुमारी गुराना पैदाशी नाम वेंकिया और जो दीवा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 10:30 बजे उनके मकान नंबर 21 एवेन्यू लुवे कैथरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा कैथरबोन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10:30 AM। कोंकारोल केन्या में 64 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मानती नायको पैदाशी नाम से प्रसाद और जो नंदा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12 बजे उनके मकान कोंकारोल केन्या से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 12:00 PM। मोंटेक्यू रोड रियांबेल में 60 साल की 60 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुभावती दुखराज की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 9 बजे उनके पिता ज्ञानी दुखराज के मकान मोंटेक्यू रोड रियांबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुयाक की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 9 AM। पायोंकू रोड मोसेलमो सेंट अंतोन गुडलैंड्स में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती जगवंती राजकुमार पैदाशी नाम जुदवा और जो इंद्रानी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे विमल राजकुमार के मकान पायोंकू रोड मोसेलमो सेंट अंतोन गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहुची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

0: रेडियो मार्शल्स पर लाइव प्रसारण जारी है। आइए अभी के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से कुछ विज्ञप्तियां हम सुनते हैं। कैटबोर्न के रहने वालों को, खासकर ये जो इलाके है एवेन्यू क्वेसी के कुछ हिस्से, हिलारी ब्लड, लुइनेलॉ लेन, कॉन्डोस लेन, लालवीज एवेन्यू, राउल रिवे एवेन्यू और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जा रहा है कि कल शनिवार 11 जुलाई 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 2:30 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली में कटौती लाई जाएगी। अब सुनिए दूसरी विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ही। मोसलमो सेफलैंड फिकॉन्फ्लैक के रहने वालों को और ये जो इलाके हैं एवेन्यू डे पेरुश, Avenue de Mel, Avenue de Cresserel, Oasis, Avenue de Payanque, और वहाँ के सभी रहने वाले जो हैं उन सभी को सूचित किया जा रहा है कि कल ही शनिवार 11 जुलाई 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक बिजली में कटौती लाई जाएगी। अब सुनिए तीसरी विज्ञप्ति। नुवेल डिकुवेट के रहने वालों को, खासकर बर्मा रोड, राजा बाली रोड, बिलाओ रोड, रॉया रोड, नुवेल डिकुवेट, स्कूल लेन, शिवाला रोड, शिमेला प्लेन और स्पीड लेन के रहने वालों को कल सूचित किया जा रहा है कि शनिवार 11 जुलाई 2026 को कल सुबह के 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3:00 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली में कटौती लाई जाएगी। तो उन सारी जगहों पर मरम्मत कार्यों की वजह से ही बिजली में कटौती लाई जाएगी और जैसे ही मरम्मत कार्य पूरा हो जाएंगे तो बिना पूर्व सूचना दिए बिजली को फिर से चालू कर दी जाएगी। ये थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से कुछ विज्ञप्तियाँ।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस।

0: This is Radio Marxist.
1: 您好
2: ，Assalamualaikum.
3: Kim to Mauritius.
4: Namaskar.
5: Shudrandiriki hrudaya purvaka namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum vanakkam.
7: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
8: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
9: बजले प्रभु का नाम। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को रात्रि शुभ हो। लेकिन कैसे रात्रि शुभ होगी यदि प्रभु से नहीं जुड़े तो ना जाने सपने में क्या क्या देखते रहेंगे। और कभी कभी तो कुछ इतना डरावना होता है कि हम आँख खोलते हैं तो पसीने से भरे होते हैं। तो क्यों ना उस प्रभु के नाम का जप करते हुए, उसका भजन करते हुए सोने को जाएं, ताकि आज की नींद हमारी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। आइए इस भजन को सुनते हैं।

जैसे जैसे मनुष्य की अवस्था बढ़ती है, विभिन्न अवस्थाओं में वो संसार के झंझटों में फंस जाता है। केवल एक काम करना वो भूल जाता है, वो है भगवान का नाम लेना, हरि का सुमिरन करना। तो किस अवस्था में कौन कौन से झंझट हैं जिनमें मनुष्य फंस जाता है, उन्हीं का वर्णन है इसमें।

श्रोताओं, जिनको नींद अच्छी नहीं आती उनको अनेक बीमारियां घेर लेती हैं, लेकिन वे प्रभु के साथ नहीं जुड़ते हैं। इसीलिए भज ले प्रभु का नाम। वह जो प्रभु है ना, वह दिखता नहीं, महसूस किया जाता है, और जब महसूस करते हैं तो उसकी अनुभूति होती है। जरा नाम जप के तो देखिए, उसके बाद जो नींद आती है मानो आप स्वर्ग के बिस्तर पर सो रहे होते हैं। तो आइए इस भजन को सुनते हैं और फिर नींद की

श्रोताओं जो ईश्वर का नाम भजते हैं वे धीरे धीरे संसार के झगड़े, मोह, ईर्ष्या इससे दूर होने लग जाते हैं, क्योंकि उनका मन स्वच्छ होने लगता है, क्योंकि प्रभु निर्मल है, और जो निर्मल प्रभु से जुड़ता है उसका मन भी मल रहित हो जाता है। वह किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहता, सबको खुशी देना चाहता है। आइए इस भजन का आनंद लेते हैं।

और अंत में श्रोताओं, प्रभु का नाम जपते जपते, उसका भजन करते करते, उसके भजन सुनते सुनते, बस यदि हम उसके गुणों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन के कार्यों को पूरा करने लग जाएं, तो साधना आगे बढ़ने लग जाती है। तो श्रोताओं, क्यों ना हम सब मिलकर उस प्रभु का भजन करें। तो आइए इस भजन को सुनते हैं और उसी के साथ अलका धनपत और शिव को अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, शिवरात्रि।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: मीडियम वेव 819 किलो हर्ट्ज पर ये रेडियो मॉरिशस है। परवीज आपसे मुखातिब है। उम्मीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन और नबी रहमत शफाए महशर मालिक दो जहां जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्य के आप तमाम सामीन खैर व आफियत से हैं। जहां से भी आप हमारे साथ निभा रहे हैं, आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। तो आइए मज़ीद सामीन, उर्दू नशरियात बनाम महफिल शब का आगाज़ करते हैं एक खूबसूरत हमद कलाम के साथ, जो हमारे दिलों को रूहानियत और सुकून से भर दे।

तेरा करम तेरी अटा तेरा ही है आसरा, हर घड़ी हर एक पल तू ही हमारा रहनुमा। तेरी हम्द सना से दिल को सुकून मिलता है, तेरा जिक्र पाक ही जिंदगी का सरमाया है। सामईन कराम, अहले बैत अथा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की अजमत व मोहब्बत ईमान का वो रोशन चिराग है जो सदियों से दिलों को मुनव्वर करता आ रहा है। ये वो मुकद्दस हस्तियों हैं जिन्होंने अपने किरदार, अपने अखलाक, अपनी इबादत और अपनी बेमिसाल कुर्बानियों से इंसानियत को जीने का सलीका सिखाया।

ये रेडियो मॉरिशस है, परवीज़ा का साथ है उर्दू नशरियात महफिल शब में रात के 9 बजे तक। शामिल महतरम, पहले बेटे अथार रिदवानुल्ला अलैहिम अजमाइन का जिक्र महज तारीख का बयान नहीं, बल्कि ये इश्क, वफा, सब्र और ईसार की एक ऐसी दास्तान है जो हर दौर के इंसान को हक और सदाकत का रास्ता दिखाती है। या अल्लाह, हमारे दिलों को अहले बैते अथार रिदवानुल्ला अलैहिम अजमाइन से मुनव्वर फरमा, हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमारे वालिदैन, असातिज़ा, अज़ीज़ व अक़ारिब और तमाम मरहूमीन की कामिल मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत के बाग़ों में से एक बाग बना दे। या रब्बुल आलमीन, हमारे वतन को अमन व सलामती का गहवारा बना, बीमारों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, परेशान हाल लोगों की परेशानियां दूर फरमा, बेरोज़गारों को हलाल और बाबरकत रिस्क अता फरमा, और हम सबको दीन इस्लाम की सही समझ और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अहले बैत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है मेरा रिश्ता यही, उनकी चौखट पर झुका रहता है मेरा सर सदा। इसी दुआ और अकीदत के साथ अपने मेज़बान परवीज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अंजू की तकनीकी मदद रही है, मशकूर व ममनून है हम। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: भोजपुरी तड़का।
1: नमस्ते हमने के सब श्रोतालु के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में तो हर स्वागत करत है जहाँ हम है सुरेखा तोर साथ देवत है भोजपुरी तड़का में। भोजपुरी के गीत वन चला मिलजुल के सुनी जा और हमने के भोजपुरी के संगीत के खूब लाजवाब समय बिताएला जा। अभी हमने के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम शुरू कर ली जा और अकेले के चलब जा 11 बजे अभी 9:08 होल बा और संगे संगे रहिए जाए 11 बजे हमने के और टेलीफोन तक करिए जा हमने के 4020885 पर मिसाज भी भेजे खोज बता भेजिए जा 5251700005 पर तो चले हमने ये दोनों नंबर पर तोहर संगे मिलजुल के बातचीत करब जा। और अभी चला सुनी जा हमने गीत गवाए हो लगाना चला आज सुखे रात बा चला गीत गवाए में चले के बाद चला जा श्रोता लोग और ये गाना हमने बजाओ था जा साधना जी खातिर पिछित भैया के साधना जी गाना मंगले हवन। बेशक बिजमावती संपत जी की आवाज़ सुन बजा अभी

चलो भोजपुरी के धमार करते चली जाओ। और भोजपुरी में एगो गाना बजन सुनीता ननकू जी गैले हवन साजन के साड़ी, बाप रे बाप, ये गाना था हमने के श्रोता लोग बड़ी पसंद करेला। जा चला ये गाना हमने सुनीता ननकू जी के गावल ललिता जी के फरमाइश पर बजवाएला जा। तो ये से ललिता जी गाना मंगले हवन बहिन सुदेवी ज्ञानी देवयानी खातिर, छोटी जी प्रभावती जी हरी जी आत्मा राम जी खातिर, सुखलाल मौसी माला राम जवन और खुशनुआ के उमा गुरबीन जी खातिर।

और चला जन्मदिन के बधाई दे लाजा हमनी सुनीता जी बगल से गाँव गोप के सुनीता जी अपन भौजी के जन्मदिन के बधाई देवत हवन। उनकर भौजी गीता के जन्मदिन रहल काल उनकरा जन्मदिन के शुभकामना। उनकर पति अजय बगल से, उनकर बेटा आनिश, उनकर ननद सुनीता और अमृता बगल से। और यही गाना सुनीता जी अपन बहिन विमाला के नाम करत हवन कुंगुमा के। संजय गोविंद जी की आवाज़ के गाना सुनी जा।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का तड़का,
2: भोजपुरी तड़का, तोहर नाम, तोहर नाम से गाना चलाओ अब जा, तोहर पसंद के गाना चलाओ अब जा, चला अभी उमा जी के पसंद के गाना चलाए जा। उमा जी मंगले हवन, संतोष महादेव जी के गावल, पियर पियर उठिया के हरियर नग।

0: कैसन मजा लगेला हो
1: तचन जिसेल कलोरी और जिसेल पीमा के बारे में सुनी जा हमनी बहल गौरी से सुनीता जी गाना मंगले हवन पे चित्रकृत से ये गाना अपन सब संगत यालो के नाम करत हवन।

अब चला तनी दल पिठा खाई के बंदोबस्त करी ला जा। अभी गाना हमने सुनब जा भोजपुरी पचा बाजे बॉयस के कलाकार लोग के ही आवाज़ में ये गाना हमने बजावत है जा साजिद जी खातिर। रोज दिल से साजिद जी गाना मंगले हवन कनाडा के अपन सहपाठी सरोवर जी खातिर। और यही गीत हमने बजवाई ला जा बहन भाई खातिर। महेन जी गाना मंगले हवन पालमा से। और बेल बेल दे मौसी दलपीठा पकाई नानी गाना गाते गाते चले हमने दलपीठा के स्वाद के मजा ले ला जा।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का
2: और चला चमेली चमेली गाना सुनी जाए। हमने सुनीता ननकू जी के गावल चमेली चमेली, चला सुनी जाए गाना हमने अमृता जी के पास इन पर पीतों से। अमृता जी मंगले हवनी गाना पूरा गणेश परिवार खातिर, अपन नातिन सोनिया और परी खातिर, बेटी पूनम, बेटा विशान और बहू मीनाक्षी खातिर।

चला अभी कुछ रिव्या जी रोंप पहुँचाए ला जा हमने के गाना रिव्या जी रोंप से वैशाली जी मंगले हमन अपन मामा बिंदिया और अपन पापा रविन के नाम ई गाना संजय हरिचरण जी के गावल।

अब चली जा मैं पसंदराज जोलीम जी के गावल गाना सुनी जा। आज के भोजपुरी तड़का में कल्याणी जी महिबग से माईबू से गाना मंगले हवन अपन भगिनी गायत्री जी खातिर जो नुवेल फ्रांस रहेलन और उनकर बेटा अजय खातिर। चला सुनी जाए गाना हमने पसंदराज जोलीम जी के गावल।

और भोजपुरी तड़का में अभी हम नितल के सुनवाओ अब जा भोजपुरी बॉयज वे के कलाकार भोजपुरी बजा बजा बॉयज के कलाकार लोग के कावल गाना और ये आज के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में ये गाना मंगले हो वन साबित जी थ्रियले से गाना मंगले हो वन अपन पति धर्मेंद्र जी खातिर तो चला सुनी जाए गाना अभी 10:01 होल बा

यह अमित गिरजानंद जी के गावल गाना और गाना हमने बजावत है जहाँ नंदिता जी का तीर प्लेन मायों के नंदिता जी गाना मंगले हवन अपन बहन सुविधा के नाम।

आगे बढ़ी जाओ और ये अनिरुद्ध भोजनाथ जी के गावल कामियोलू तो सुनी जा, और कामियोलू तो में हमने सुनी जा कितना तरह से हमने के झेला सावधानी बरते के हमने के रास्ता पर हमने के सड़क के सुरक्षा पर कितना ध्यान चाहिए रखे कि चला सुनीता जी के नाम करी जाए गाना। सुनीता जी हमने से कौफ खो से गाना मंगले हुआ अपन पूरा परिवार खातिर।

और चला गायत्री जी के पास इनके गाना, गायत्री जी ने फौसे मंगले हवन कैसे बनी, ये मली बिना चटनिया कैसे बनी, अब दारद बीजन जी के गावाली गाना और ये गायत्री जी मंगले हवन गाना बन बेटा अजय खातिर, फिर मायबू के मामी कल्याणी मोहन खातिर और लॉन्ग माउंटेन से अपन भाभी शकुंतला जी खातिर।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का
2: छलकुनाल बाबूलाल के आवाज में तड़का लगाएला जा अभी कुत। और ये गाना हमने नया सीरे गाना नाम करे थे जा सरिता जी के, कहा था बोन से सरिता जी गाना मंगले हवन। चला सुना सरिता जी तोहर पसंद के गाना।

चला जन्मदिन के को गाना सुनब जा लीलो माथुर सुकन जी के गावल और ये गाना हमने बजाओ थे जा माला जी खातिर। माला जी के जन्मदिन बा और उनकर पति राजन लक्ष्मण जी उनका जन्मदिन के ढेर मंगल कामना भेजले हवन। उनकर बेटी प्रार्थना प्रगति उनका ढेर प्यार दिले हवन, ढेर मंगल कामना दिले हवन। मानती जी भगिनी उर्मिला तुलसी जी और पूरा लक्ष्मण परिवार मिल के माला जी के जन्मदिन के शुभकामना देवत हवन। जन्मदिन अभिनंदन।

विवेक जी के पास इनके गाना हरम हराम तो हर जी के गावल जुबेदा जिन हर एक जश्न में बजेला। तो चला ये गाना हमने विवेक जी बगल से उन गरबा ही न सुनीता के जन्मदिन के अवसर पर बजावत है जा।

छोड़ के मोरी स्वाद चला हमने आतिज भगीरथी जी से सुनी जाए गाना। मानव जी प्लंडी पपाई से गाना मंगले हो वन अपन दादा दादी के नाम और अपन चाचा के नाम, उनका चाचा रहे लन उंगले ते हमें तो उनका नाम करते वनी गाना।

यादव जी मंगले हवनी गाना ऐसे तो उनकरा पिति पिति छोकरी गाना सुने के रहल, बकिर ई गाना में पिति पिति छोकरी भी और शहर की छोकरी भी के संगम बा। चला सुनी जाते सुदेश बोईजू जी के गावली गाना यादव जी के फरमाइश पर। यादव जी गाना मंगले हवन पर पिताजी खातिर, अपन माता जी खातिर और नानी माँ खातिर।

अविनाश लचन जी की गावरी गाना सुनब जा, पानी बरसेला पनिया बरसेला और बरसते बरसते जाला। चला ही गाना के संगे संगे समाप्त हो जाए आज का हमें भोजपुरी तड़का कार्यक्रम। उम्मीद करे थे जा कि भोजपुरी तड़का के गाना तो लोग पसंद पड़ल हो आवत हला। फिर मिलब जा अभी थोड़ा घड़ी में सुनिए जा आज के हमने के सुनहरे पल कार्यक्रम। और सुनहरे पल कार्यक्रम पुराना गीत के कार्यक्रम है। ये गाना सुनिए जा और ये कार्यक्रम सुनिए जा गिनीशा की प्रस्तुति में। उम्मीद करते हैं कि इतने लोग के रात्रि बहुत शांति से गुजरी आवत रहा। फिर शुभ रात्रि, नमस्ते।

सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ फिर से एक बार अग्निश आ गई है आप लोगों का साथ देने के लिए सुनहरे पल में। जी हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार और हमारा प्यार भरा प्रणाम आप स्वीकार कर लीजिए। वैसे देखा जाए तो वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन कुछ गीत कभी नहीं बदलते। उनकी जो मिठास है ना, आज भी उतनी ही गहरी है। तो आइए उन अमर गीतों का लुफ्त उठाते हैं सुनहरे पल में रेडियो मॉरिशस पर।

हर गीत के पीछे छुपी होती है किसी ना किसी की मुस्कान, किसी की मोहब्बत और किसी की कहानी। और आज उन सब कहानियों को फिर से जीते हैं पुराने बॉलीवुड गीतों के साथ। पुराने गीत बिल्कुल सिर्फ सुने नहीं जाते हैं, उन्हें महसूस किए जाते हैं। हर सुर दिल को छू जाता है और हर लफ्ज एक नई याद दे जाता है। स्वागत तो हमने आप सभी लोगों का कर लिया और बस उम्मीद करते हैं कि हर एक गीत को आप दिल से महसूस करेंगे आज।

आज की रात होगी यादों के नाम, उन गीतों के नाम जो हर जेनरेशन को एक साथ जोड़ के रख देते हैं। तो चाय की एक प्याली ले लीजिए और शुरू कीजिए यादों का सफर सुनहरे पल के साथ, रेडियो मॉरिशस पर गिनिशा के साथ।

मोहम्मद रफी की आवाज, लता मंगेशकर की मिठास, किशोर दा की शरारत और मुकेश दा का दर्द, सब कुछ मिलेगा आज सुनहरे पल में। बिल्कुल जी, यादों के इस पितारे को खोलने का वक्त आ गया है। हर गाना आपको ले जाएगा बचपन, जवानी और जिंदगी की हसीन लम्हों तक। तो बस यूं ही हमारा साथ देते रहिए ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: पुरानी फिल्में, पुराने गीत और वो सुकून जो आज भी दिल को छू लेता है, इसी खूबसूरत सफर में हम सफर बनिए सुनहरे पल के साथ। वैसे कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते हैं, वो हमारी जिंदगी का

हर सुर में है मोहब्बत, हर लफ्ज में है जज्बात, और हर गीत में है सुनहरी कहानी। बस इसीलिए तो है सुनहरे पल। रोज रात को 11 बजे से लेकर 12 बजे तक हम लोग आपका साथ देने आ जाते हैं ऑन रेडियो मॉरिशस, ताकि आपकी यादों का खजाना फिर से हम खोल दें और आपकी होंठों पर मुस्कुराहट ले आए। तो चलिए जी, ये अगला नगमा खासकर हमारी तरफ से आपके नाम।

0: क्यों?
1: इसलिए कि शर्मा न जान।
2: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

टाइम इतने जल्दी जल्दी बीत जाता है कि हमें अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गिनिशा टू से गुड बाय टू यू. बिल्कुल जी, जाने का वक्त जो हो गया है. तो बस अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और हमें इजाज़त दीजिए. शुभ रात्रि, शब्बा खैर.

0: एनबीसी रेडियो हर पल आपके साथ।
1: ये गुलशन फूल कलियां बहार वादियां, ये मौसम खेत हरियाली पहाड़ बर्फ, ये कायनात कुछ भी नहीं,
2: कुछ भी नहीं,
1: कुछ भी नहीं। गरन में वो नहीं,
2: वो है कौन?
3: कप्तान साहब, उस लड़की का कोई नाम तो होगा।
1: नाम?

0: आजा आजा, give me a kiss.
1: Na na na na, till I'm a mess.
0: आजा आजा, give me a kiss.
1: Na na na na, till I'm a mess.
2: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो